0: साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं, उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है। यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में, हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी, दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था।
1: Moving on, after influencer Swatantra Bhardwaj boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to political links, he has now been arrested and sent to one-day police custody. This has once again reignited the debate over involvement of anti-social elements in the CJP protest. Take a look at this report.
2: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj posted about assaulting a protester's father during CJP stir. These claims backfired and now he is behind bars, remanded to one-day police custody. Hours after, CJP workers, youth Congress leaders and opposition MPs protested outside Parliament Street police station demanding his arrest.
3: Delhi Police, haste ho!
4: Haste ho! Haste ho!
3: Nyay tumko dena hoga!
4: Dena hoga! Dena
5: hoga! Papa aage gaye aur unhone video banana start kiya aur papa ne meri taraf angle kiya to unko aisa feel hua कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बट बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा, उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा, तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेधार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पर मार दिया।
2: Swatantra now faces multiple charges including provisions under POXO Act and SCST Act. He also faces charges of criminal intimidation, online threats, hurt and wrongful restraint.
6: ये बहुत strange और surprising hearing था। हम लोग court में इंतजार कर रहे थे। हमें बताया गया था कि जज साहब नहीं हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उसे पेश किया जाएगा। बाद में हमें कोर्ट से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीसी के थ्रू लीगल एड काउंसिल को कनेक्ट करके जो कि उसके तरफ से पेश हुए और दिल्ली पुलिस ने उनको जज साहब के घर पे पेश किया और एक दिन की पुलिस कस्टडी दी गई।
2: डिस्पाइट बीइंग बिहाइंड बार्स, स्वतंत्र भारद्वाज कंटिन्यूज टू गेट सपोर्ट ऑफ राइट विंग ग्रुप्स। A massive protest was organized outside Parliament Street police station where Swatantra Bhardwaj has been lodged.
7: even though it is pouring over here in the national capital, but still there is a crowd of at least 25 to 30 people who has gathered over here. A delegation of 5 members from the representatives have in fact gone inside the Parliament Street Police Station, where they have gone ahead and given a letter of their demands. Their basic demand continues that the manner in which the SCSC Act that has been imposed against Swatantra Bharadwaj, that should be withdrawn. Apart from that, the attempt to murder, sections of attempt to murder that has been added, that should be removed.
8: Demand ye thi ki jo kal ek rajneetik dabaab banaya gaya Chandrasekhar aur uski party ne, ki jis tarah se sanatan virodh sanatan dharmiyon ke khilaf ek jo ye sadyantra racha ja raha hai yahan pe aaye ki bhai unke khilaf जब लड़की से वो टच तक नहीं हुआ पोस्ट को क्यों लगाया गया, एस सी एस टी एक्ट क्यों लगाया गया। लेकिन डीसीपी साहब ने खुद हमें बताया है, डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने, कि इस तरह का कल कोई भी अमेंडमेंट और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वो लोग आए जरूर थे, लेकिन इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
2: In the viral video, Swatantr bragged about his political links and connections with senior cops. This has snowballed into a massive political storm. One of the names mentioned in the viral video was that of Union Minister Chirag Paswan, who has now distanced himself from Swatantra, saying his name was misused and filed a complaint against the goon.
9: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
2: Meanwhile, opposition leaders have called the delay in action an evidence of political protection.
10: दबाव ना होता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती, डिटेंशन ना होता, लेकिन ये अपने आप में सबक है कि हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति कुछ भी बोल के निकल जाए और तमाम रसूखदार लोगों को अपना बड़ा भाई बताए। ये बड़बोलापन है या पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ये पुलिस की तहकीकात का विषय है।
2: The arrest of Swatantr Bhardwaj has once again reignited the debate over presence of anti-social elements amid the CJP protests in the national capital. With Anshul Singh, Bureau Report, India Today.
1: After bulldozer action on a mosque in Uttar Pradesh's Saharanpur, the issue has snowballed into a massive political storm. The structure inside the collectorate complex was brought down after a court upheld the order declaring it illegal, but the action has triggered fierce opposition. Ikra Hassan claims house arrest. Owaisi has accused the Yogi government of conspiracy, while Congress MP Imran Masood has called it a violation of the constitution. Take a look at this report.
11: The bulldozer rolled in, the gates were sealed, and Saharanpur erupted into a political storm. A mosque inside the collectorate complex was demolished after a court order declared the structure illegal. But the demolition has now opened a much bigger battle. But the operation was carried out under a massive security blanket. All 5 gates sealed. RAF and PAC deployed, and the collectorate turned into a fortress.
12: इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
13: जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
14: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है।
11: And then came the political war of words. Samajwadi Party MP from Kairana, Ikra Hassan, claimed she was put under house arrest when she tried to travel to Saharanpur, a claim that has pushed the controversy beyond the demolition site.
15: जिस तरीके से इस कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके से हमारे संविधान की, कानून व्यवस्था की इस देश में, इस प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। तमाम तौर तरीकों में क्विक जस्टिस को अपनाया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप अदालतों के ताला लगवा दीजिए।
11: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has invoked the Hindu philosophy of Vasudev Kutumbakam, saying a true Hindu respects every faith.
16: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज, पूरा धरती एक परिवार है।
11: Other opposition parties have also refused to back down. MIM chief Owaisi has slammed Yogi government, saying that he does not believe in courts and carried out the bulldozer action as part of a conspiracy.
17: ये आदेश भी और ये ध्वस्तीकरण भी, दोनों के दोनों असंवैधानिक है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया गया।
18: इतनी जल्दी क्या थी? हायर कोर्ट्स में जाते, हायर कोर्ट्स में ये लोग अपनी बात रखते। पूरा नाकाबंदी करके मस्जिद को शहीद कर देना, ये साबित करता है कि बीजेपी की योगी गवर्नमेंट हायर कोर्ट्स के पास ये मामला नहीं जाना देना चाहती थी, क्योंकि वो गलती पर है।
11: A mosque demolished, an MP allegedly in house arrest, the opposition up in arms. Saharanpur now finds itself at the center of a political showdown. With Rahul Kumar and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: A major political battle is taking shape in Tamil Nadu over who could emerge as the opposition alliance's prime minister face for 2029. As the rising Vijay for Prime Minister chorus causes growing discomfort within the Congress, the ruling TVK has convened an alliance meeting on 9 September. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will chair the meeting and hold discussions with leaders of the Congress, IUML, VCK and MDMK on formalizing the post-poll alliance with a new name. The alliance partners meeting comes at a time when the Congress has reiterated that Rahul Gandhi is the PM candidate for 2029. Tamil Nadu Congress Chief Manikam Tagore has once again asserted that Vijay should fulfill his duties in Tamil Nadu, adding that both the Chief Minister as well as Tamil Nadu ministers are clear on Rahul being the prime ministerial face.
19: Rahul Gandhi Tamil Nadu Congress எங்களை பொறுத்த மட்டும் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக திரு விஜய் அவர்கள் இருக்கணும். தமிழகத்தை அவருக்கு மக்கள் கொடுத்த வாக்குக்கு இணங்க அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தும் இப்பொழுதுதான் செய்ய தொடங்கியிருக்கார். முதலமைச்சர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காரு, அமைச்சர்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க, மற்ற எல்லாரும் பத்திரிகையாளர்களும் மற்ற நண்பர்கள் தான் இதுல ரொம்ப ஆர்வமாக
20: இருக்கு.
19: முடிச்சுக்கிறப்பா பத்திரிகையாளர்கள் சிலரை பொறுத்த சில ஒரு குழுமங்கள் வந்து இது இப்படி போன்ற விரிசல்களை மதசார்பற்ற கூட்டணிகளுக்குள்ள உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக பல வகையில பாடுபடுறத நம்மளால பார்க்க முடியும்.
1: TVK ministers have repeatedly said in recent weeks that their leader Vijay will become prime minister in the future, emphasizing that Talapathy will rule India one day. Listen in.
21: Tamil Nadu aalugira sakthi mattumalle edhirkaala indiyave aalakoodiya sakthiyaga vilangakoodiyavar dhaan tamilaga vetti kalagathudaiya thalaivar nammudaiya Talapathy avargal. Naan idhai kurippiduvadharku kaaranam தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் மட்டுமல்ல, ஒரு வார காலத்திற்கு முன்னாலே வட மாநிலத்திலிருந்து சில பேர் என்னை சந்தித்தார். நான்கு சகோதரிகள் அவரோடு நான்கு சகோதரர்களின் இல்லத்திலே சந்தித்தார். உங்கள் முதலமைச்சரை போல எங்களுக்கு எப்படி முதலமைச்சர் கிடைப்பார் என்று சொன்னார்கள். ஏன் என்று சொன்னால் வட மாநிலங்களை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடைய தளபதியை தவிர எவராலும் இல்லை என்ற வரலாறு படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
22: இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தலைவர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நேஷனல் லெவல்ல ஒரு லீடர் உருவாகிட்டு இருக்காரு. வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான், நம்ம அண்ணன் தான். அது இப்பயே வந்து வெரி கிளியரா ஒரு மேண்டேட். அனதர் 2 இயர்ஸ், 2029 பாருங்க எப்படி கேட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு பாருங்க.
1: Amidst all the devastation due to flash floods at the Nepal-China border, there is glimmer of hope for the rescue team. Two more people have been rescued from the jaws of death. Even as more than 5,000 are missing, we are getting you this special report on how Nepal is slowly but steadily trying to get back on its feet.

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी तो लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।
2: बेंच, टाइल्स, फ्लावर पॉट्स, ऑल दिस हैज बीन मेड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। The brains behind this initiative are Sonal and her husband Vaibhav. Their startup, E-Conscious, recycles plastic waste into products suitable for public spaces.
3: हम लोगों में एक ऐसी हैबिट लेके आना चाहते हैं जो नॉट जस्ट रिसाइकलिंग बस रीड्यूस और रीयूज के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके आए। सो हमने ई कॉन्शियस लिया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको कॉन्शियस जो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, फेंकना हो, हम उसको कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस के साथ में लेके चले।
2: While Sonal has specialized in environmental engineering, Vaibhav is an electronics and communication engineer. The couple launched their business during COVID-19 pandemic when massive amounts of plastic waste were being generated due to PPE kits, masks and other single-use plastic items.
4: इसके पीछे का हमारा थॉट था कि अब जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या इस टाइप के कोई और इवेंट है जहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अब वो उसको हम मतलब किसी तरीके के वो इकट्ठा करके उनको ही कन्वर्ट करके हम कुछ स्कूल के बेंचेस हम बनाए, वहाँ के लिए पार्कों के लिए बेंचेस बनाए।
2: E-Conscious produces benches for parks and schools. It also makes dustbins, paver blocks and various customized products. With Manisha Ladda, Bureau Report, India Today.

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. What happens when two cops see justice through completely different eyes? Starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran's Daira explores this clash through a gripping investigative thriller inspired by true events. As a shocking crime sparks nationwide outrage, two contrasting approaches to law and justice collide, raising difficult questions about duty, punishment, and the system itself. Take a look.
1: इधर क्यों लाए सर?
2: बताता हूँ क्यों लाए इधर।
3: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है।
2: एक्यूज़ ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की।
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
4: ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था।
5: What happens when two officers wear the same uniform but see justice through completely different eyes?
6: Accused दो साल से इसी रूट पर था।
3: दो साल, 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं।
7: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर।
2: और वो एक बार फिर से एक फैमिली ने अपनी बेटी खोई है। फिर से
5: Meghna Gulzar's Daira explores this question through a gripping investigative crime thriller that brings Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran together as two senior police officers caught on opposite sides of a complex
8: case.
3: It
9: may get slippery, Raman.
5: Inspired by true events, the film unfolds in the aftermath of a shocking crime scene that sparks nationwide outrage.
2: Unki story over hai.
10: Kaha over? Court kachehri ke chakkar, hamara vakil, unka vakil. Abhi to shuruaat hai.
5: What follows is a chain of events and two investigations that force the officers to confront difficult questions about law, duty, justice and punishment.
2: Escape karne ki koshish ki.
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
4: सर क्या ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था?
5: करीना प्लेज डीसीपी अजूनी कोहली व्हाइल पृथ्वीराज पोर्ट्रेज डीसीपी रमन कुमार।
7: घर वापस आ जाती है सर
2: और वो एक बार
5: ऑल्दो बोथ सर्व द सेम सिस्टम देयर कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू जस्टिस सून पुट देम एट ऑड्स।
3: 17 साल का होने वाला था 4 महीने बाद।
9: इट मे गेट स्लिपरी रमन।
2: पता ना अपनी माँ को क्या किया तुमने।
5: इंटरेस्टिंगली Daira also brings the complicated issue of juvenile justice into focus.
2: एक अक्यूज तो पतली गली से निकल गया।
3: वो पतली गली नहीं, जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ है।
2: जुवेनाइल जो रेप और मर्डर कर सकते

0: are watching India Today.
1: Good morning, you're watching India Today and I'm Anisha Mathur. The headlines at this hour. Prime Minister launches scathing attacks on opposition, says Dimaghi Naxal remark was like a homeopathy dose for opposition. Compares opposition sulking like a naraz bhupa. Takes a dig at Mai Baap culture, says India's truth will trump over jhoot ki goonj. Opposition accuses PM of doing PR.
2: दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं, दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं।
1: वन डे पुलिस रिमांड ऑफ राइट विंग इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज एंड्स टुडे टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। टीम प्रोटेस्टर क्लेम्स स्वतंत्र सपोर्टर्स हैव बीन अब्यूजिंग एंड थ्रेटनिंग हर। अनदर कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट विक्टिम एंड टीम प्रोटेस्टर अलेजिंग इंसल्ट टू हिंदू गॉड्स। Punjab police transfers DSP and shifts three other officers after Sikh youth alleges he was tortured in custody for waving a black flag near Chief Minister Maan's program in Sangrur. LOP Rahul speaks to victim. Maan government rejects allegations. BJP calls incident a display of Hitler-like dictatorship. Nepal continues to battle the aftermath of devastating flash floods. Five workers still trapped inside a tunnel at flood-affected Upper Trishuli 1 hydropower project. Chinese national rescued from a tunnel. US-Iran trade retaliatory attacks on ships in latest round of strikes. US forces hit three Iranian oil tankers near Iran's key oil export hub. Kharg Island. Strikes after Iran launched ballistic missiles at two U.S. Navy ships.

0: Breaking news coming in. The U.S. has struck three Iranian oil tankers. U.S. forces have hit three Iranian crude oil carriers. This is coming from the U.S. CENTCOM, which has said that three Iranian oil tankers have been hit off Iran's Kharg Island. These strikes come after Iran attack on two U.S. Navy ships. In fact, the U.S. has made a statement. The U.S. CENTCOM has said Iran will pay a higher economic cost. And U.S. has said we will destroy Iran oil tankers if our ships are hit. Rafi Hegseth has said we'll destroy and sink Iran's oil tankers. Meanwhile, Iran has said four U.S. missiles hit a tanker near Kharg anchorage. No casualties reported. Tanker crew have been evacuated. The U.S. CENTCOM has claimed that no American personnel were harmed in these strikes. This is breaking news that's coming in about the exchange of fire between U.S. and Iran. But the big news is that three Iranian oil tankers, crude oil tankers, have been hit while at Kharg anchorage. And while Iran says no human costs have been paid, the U.S. CENTCOM has and the Defense Secretary have clearly said that they will continue, that they will destroy and sink Iran's oil tankers. Ashraf Vani is joining me on the phone line on this story. Ashraf, once more, there has been an exchange of fire between Iran and the U.S. and now oil tankers being hit at the Kharg port hub. What more can you tell us?
1: Anisha, actually, this escalation started for last four consecutive days. We are seeing that it was started by the America when they targeted different locations in the southern part of Iran and alleged that the Iranians IRGC is ready to plant the mines inside the state of Hormuz, and that is why they have targeted it. And we have seen on each and every strike there is a response from the Iran and IRGC. They are targeting the U.S. bases not only in the Jordan but also in the UAE as well as in the in Kuwait. But yesterday's escalation was something bigger because it was initiated as per the U.S. by the Iranians. They had targeted the two ships of the U.S. where in the response, three vessels of the Iran had been shot by the U.S. Army and the U.S. Air Force. Both were claimed and counterclaimed, but one thing is clear that the biggest hurdle in this escalation and in this war is the state of Hormuz. The U.S. President Donald Trump many times at many occasions said that there is full control of the state of Hormuz by the U.S. Army and U.S. Navy, but here we are seeing that the U.S. is not able to make the state of Hormuz free, which has been completely kept in control by the IRGC. That irritates the U.S. and the ships which are violating the IRGC guidelines, they are being targeted by the IRGC. That is why these fresh strikes has been initiated under the new sanctions, where the U.S. not only wants to attack the U.S. Iranian army and IRGC, but also their economic interests.
0: All right, Ashravani, stay on with me. We're getting some more breaking news coming in on this story. Iran retaliates after U.S. hits three oil tankers. As my colleague Ashravani was saying, tensions are escalating with exchange of fire. The IRGC has claimed three unauthorized vessels at Strait of Hormuz. Three unauthorized U.S. vessels at the Hormuz Strait were hit, according to Iran. Missiles fired at U.S. aircraft carrier. The IRGC Navy has said it targeted three vessels on unauthorized route through the Strait of Hormuz. And it says that they attacked U.S. vessels in other areas, but the U.S. is yet to confirm this. Iran has in fact claimed several ballistic missiles were fired at U.S. aircraft carrier and a Navy destroyer. Ashraf Vani continues to be with me on this story. Ashraf, now Iran is also saying that they have been firing ballistic missiles at the U.S. aircraft carrier and naval destroyer on three vessels who they say were unauthorizedly entering the Strait of Hormuz. As you were saying, we are seeing an escalation of these attacks over the last two or three days. And this is the latest in this series. Why are we seeing this more intense phase? Why are we seeing such intense military activity? What are you picking up from your sources?
1: Anisha, actually, the frustration is with the U.S. Army as well as the U.S. Navy, as well as with the U.S. President Donald Trump, because whatever he claims that becomes and that comes untrue. That is why they are starting, because we have seen few days back, the U.S. President Donald Trump said they are going to push very harsh sanctions on the Iranians and on the Iran so that it would collapse itself. U.S. has not achieved any goal so far, because this war started 6 months back on 28th of February. Then it was expected and it was stated by the U.S. President that probably in the week they are going to finish the Iran. But the way Iran is responding and standing with this aggression as well as attacks by the U.S., it clearly shows that they have the potential. They are being backed by maybe some friendly countries, and they are not allowing the shipping movement in the Strait of Hormuz. It has become a choke point in this conflict between U.S. and Iran. So the one thing what is being completely being followed by the IRGC and Iran is that they are doing hit for that each and every time when they are being hit, they respond immediately. It has been done yesterday also when their three ships were targeted. They only targeted the three U.S. vessels today, what they are claiming, and is to be responded by the U.S. But also they are now attacking for last 48 hours on the U.S. warships as well as the U.S. carriers. That is something which clearly shows that the Iranians did not want any presence of their troops or their navy in the Strait of Hormuz. That is why they have initiated this fresh escalation in this war. And now it is very interesting to see what will be the response of the U.S. Because when the U.S. President Donald Trump was asked yesterday in the briefing that whether it is a full-fledged war with the Iran or it is just for some kind of a control, he said that it is a small potato. We are just dealing with it, and whenever we need, we will attack, but it is not a war. There is also pressure on U.S. because midterm polls are going to be held in the month of November. Before that, those midterm polls, there is some kind of a pressure on Donald Trump that he should come out from the war. They are not only they are getting the critics criticized from the own population, but even the veterans from the U.S. are saying that this is an unwanted war, not only for the U.S., but also for the economic interests of U.S. That is why but we have seen earlier also when somewhere this conflict starts, it is very difficult to get out of that conflict. Also stated earlier in the war by the Iran that this war has been initiated.
0: All right, Ashrafani, thank you very much for bringing us that perspective of what is happening in West Asia and the larger political issues surrounding it. But moving on, we have some more breaking news coming in. An F-4 Phantom jet has crashed during an air show in Greece. Two pilots have been killed as Greek F-4 fighter jet crashes. It has crashed near spectators plummeting to the ground during an air show. Visuals show black smoke billowing as the F-4 crashes at Tanagra Airport. Airbase. This is a two-seater F-4 Phantom that has crashed in Greece, killing both pilots. This was during an air show in Tanagra Air Base in Greece. Loudspeakers can be heard urging spectators to evacuate after crash in the video that is now on your screens right now, viewers. This plane crashed just hundreds of meters from the spectators who had gathered to watch the air show. This is a tragedy that has happened at the Athens Flying Week with both pilots killed during this crash.
2: Mom! Dad! Dad! Dad!
0: And our big story at this hour, the Prime Minister's address at the centenary celebrations of the SRCC, the Shriram College of Commerce. The address came with big attacks on the opposition. Prime Minister Modi said that the recent Dimagi Naxal remark was like homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Phufa. Prime Minister Modi further took aim at what he called my bap culture and said New India's truth will trump over jhoot ki goonj. The Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 when he gave his previous address at SRCC and where India stands now in 2026. He pointed out that today India is not only growing at 7.8% but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were killed along the LOC, whereas today, India enters Pakistan and destroys terror. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister failed to address student concerns in his address and did not even speak on the police action on students during the Jantar Mantar protests.
3: आपको दो तरह के लोग मिलेंगे. एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं. दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं. उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना. इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है. इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है. जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है. हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है. हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाई यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है. हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है. हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है. हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी. लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया. जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता. अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा. ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था. होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से. और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी, दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी।
4: इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर हियरिंग हिम, सो इट फेल्ट दैट ही इज अ लीडर हु कनेक्ट्स विद द पीपल।
5: आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण पहली बार, अब दूसरी बार 2013 के बाद अब आए हैं, कैसा लगा उनका भाषण, क्या खास लगा?
6: सो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम हियरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस दैट hearing such a big dignitary in our college and it was a very great experience.
7: It was a great moment. उन्होंने बताया कि 2013 में भी वो आए थे और अब वो सीधा 13 साल बाद आए, क्या differences देखने को मिला, कैसे हम development के बारे में सोच पा रहे हैं because of मोदी सरकार. It was a great experience.
8: बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री जी ने. आज as a Gen Z I feel like वो बहुत connect कर पाए हमारे साथ, उनको सब पता था हमारे बारे में and उन्होंने अपनी aura बहुत अच्छे से दिखाई.
9: काफी अच्छा स्पीच था, काफी रेलेवेंट स्पीच थी. मोर ओवर जो एजेंडा था टू आउटरीच Gen Z पीपल, सो मोर ओवर ही यूज टर्म्स मोर ऑफन यूज इन Gen Z लैंग्वेज, सो उन्होंने वो वाली चीजें भी यूज करे एंड इट वॉज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू शेयर अ कॉमन रूम विद सच बिग डिग्निटरीज.
5: सर, प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी जो आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करा?
9: उनके Gen Z टर्म्स जो उन्होंने आज यूज किए, जो उनका मतलब एजेंडा था Gen Z आउटरीच के लिए, तो वो चीज काफी अच्छी सबको ही लगी है. वो टर्म्स का उनका यूज करना।
7: ओवरऑल तो काफी अच्छा था और जिस तरह उन्होंने सब कुछ रिलेट किया जनजी को, मतलब सामने रखते हुए उनके वर्ड्स को, तो दैट वाज ऑल गुड।
5: प्रधानमंत्री की स्पीच में पॉलिटिकल चीजें बहुत आती है, लेकिन इस पूरे स्पीच में कहीं भी पॉलिटिकल नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमला लगता है कि किया विपक्ष पर।
8: हाँ 100% मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी एस्पेक्ट्स एड्रेस करे हैं जो एक्चुअल में उन्होंने पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज करी, विच इज अप्रोप्रिएट बिकॉज दिस इज अ कॉलेज, बट आई थिंक कि उन्होंने काफी हद तक हमला करा है ऑन ऑल ऑफ द फूफाज हु लाइक टू क्रिटिसाइज द कंट्री नो मैटर व्हाट।
10: उनके ऊपर पैलेट गन चला करके, उनके ऊपर गोला और जो है बंदूक चला करके विद्यार्थियों के बीच में जो है विकसित भारत का सपना बेचने के लिए गए थे। मोदी जी आप अशिक्षित रह गए, दुख है इस बात का, देश अशिक्षित नहीं रहेगा और शिक्षित भारत से विकसित भारत बनेगा। फेल विद्यार्थी को बढ़िया टीचर बोल देने से पीआर हो सकता है, उस टीवी कंपनी को सरकार की तरफ से कुछ प्रचार मिल सकता है, एड मिल सकता है, देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा जब इस देश के विद्यार्थी आत्महत्या करना बंद करेंगे, इस देश के किसान आत्महत्या करना बंद करेंगे।
0: And let's take a look at what the Prime Minister has said as he took on the UPA era during his speech to the SRCC students. Attack number one, the scams and corruptions that were unchecked till 2013. Attack number two, growth was at rock bottom till 2013. That's what the Prime Minister has said. Prime Minister also said that hopelessness and policy paralysis was there till 2013. Pakistan terror was uncontrollable till 2013, which is when the Modi government took over. Soldiers were killed along the LOC till 2013. Inflation at 10% was headline in 2013. Only rupees 600 to 700 crore defense exports were there in 2013. There was nothing to celebrate till 2013. That is what the Prime Minister has claimed before the students, that there was nothing to celebrate till 2013 and rampant atrocities across the country were going on. Attack number 10. India was part of the fragile five economies in 2013. Big attacks by the Prime Minister comparing the UPA era to today's economy and today's political space that India occupies. But moving on to our next big story, right-wing influencer Swatantra Bhardwaj, who boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to his political links, has been arrested and sent to one-day police custody. His police remand ends today and he will be produced before court again. The teen protester has said that she's thankful for the action that was finally taken against Swatantra, but she added that his supporters have been abusing and threatening her. Meanwhile, a complaint has been filed with the Delhi police against the victim herself, alleging that she insulted Hindu gods through malicious posts. The complainant has accused the protester and her father of hurting religious sentiments.
11: उसे कस्टडी में रखा गया है ना, अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं, तो रियली थैंकफुल है उन लोगों का कि उन्होंने एटलीस्ट इतना तो किया। बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहाँ गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहाँ पर FIR करवाने की कोशिश की, एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल तो, बट उनसे मेरे को डर है, खतरा है, क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं DMs में, और अभी भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी फ़िलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए, कुछ पता नहीं।
12: बताइए, जब आप थाने पहुँची तो आप लोगों की मेन डिमांड क्या थी, क्या रिटर्न में लिख के ले गए थे?
11: देखिए, हमारी डिमांड ये थी कि जो अब तक पुलिस जिसको डिले करते आ रही थी, जिस चीज़ पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्रिमिनल के अगेंस्ट जिसने पापा के ऊपर हमला किया, उनका सर फोड़ा, तो हमारी मांगे ये थी कि आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, वो खुलेआम घूम रहा है, लोगों को धमकियाँ दे रहा है और कितना प्राउडली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी मांगे यही थी कि आप इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, ऐसे लोग खुलेआम नहीं घूमने चाहिए, ये कब हम पर हमला कर दें और लोगों पर हमला कर दें कुछ पता नहीं।
13: हम लोग सब कोर्ट में थे, वेट कर रहे थे कि हियरिंग होगी। बाद में पता चला कि वीसी से लीगल एड काउंसिल को जोड़ करके अक्यूज्ड को जज साहब के घर पे पेश कर दिया गया और एक दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई। इतने सीरियस ऑफेंस, एक दिन की पुलिस कस्टडी, कौन से चार्जेस ऐड हुए, एफआईआर में क्या एडिशन किया, इन सब की कोई जानकारी हमें भी नहीं मिली है। मुझे पता नहीं क्या छुपाया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कौन से चार्ज लगाए गए, मीडिया हमें बता रही है कि ये धारा लग गई, वो लग गई। पुलिस ने अभी तक, दिल्ली पुलिस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कौन से एडिशन किए हैं चार्जेस के।
14: देखिए, सुंदर भारद्वाज ने जो एडमिट किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि अब दूसरा एक काउंटर भी आ रहा है कि वहां पर जिस प्रकार से उसकी पिटाई भी हुई, उसने उसके रिएक्शन में कुछ किया, हालांकि जो उसने बोला है वो बहुत चिंताजनक है और वो एक कास्ट को लेकर इस प्रकार से बोला वो भी चिंताजनक है, परंतु फिर भी जाँच होनी चाहिए। जाँच के बाद अगर वह दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
0: With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. For more news and updates, you can log on to indiatoday.in. You can also download our app.
15: You are watching India Today.

0: coming in on this story. Iran retaliates after US hits three oil tankers. As my colleague Ashravani was saying, tensions are escalating with exchange of fire. The IRGC has claimed three unauthorized vessels at Strait of Hormuz. Three unauthorized US vessels at the Hormuz Strait were hit, according to Iran. Missiles fired at US aircraft carrier. The IRGC Navy has said it targeted three vessels on unauthorized route through the Strait of Hormuz. And it says that they attacked the US vessels in other areas, but the US is yet to confirm this. Iran has in fact claimed several ballistic missiles were fired at US aircraft carrier and a Navy destroyer. Ashraf Ghani continues to be with me on this story. Ashraf, now Iran is also saying that they have been firing ballistic missiles at the US aircraft carrier and naval destroyer on three vessels who they say were unauthorizedly entering the Strait of Hormuz. As you were saying, we are seeing an escalation of these attacks over the last two or three days. And this is the latest in this series. Why are we seeing this more intense phase? Why are we seeing such intense military activity? What are you picking up from your sources?
1: Anisha, actually, the frustration is with the U.S. Army as well as the U.S. Navy, as well as with the U.S. President Donald Trump, because whatever he claims that becomes and that comes untrue. That is why they are starting, because we have seen few days back, the U.S. President Donald Trump said they are going to push very harsh sanctions on the Iranians and on the Iran so that it would collapse itself. U.S. has not achieved any goal so far, because this war started 6 months back on 28th of February. Then it was expected and it was stated by the U.S. President that probably in the week they are going to finish the Iran. But the way Iran is responding and standing with this aggression as well as attacks by the U.S., it clearly shows that they have the potential. They are being backed by maybe some friendly countries, and they are not allowing the shipping movement in the Strait of Hormuz. It has become a choke point in this conflict between U.S. and Iran. So the one thing what is being completely being followed by the IRGC and Iran is that they are doing tit for tat each and every time when they are being hit. They respond immediately. It has been done yesterday also when their three ships were targeted. They only targeted the three U.S. vessels today, what they are claiming, and is to be responded by the U.S. But also they are now attacking for last 48 hours on the U.S. warships as well as the U.S. carriers. That is something which clearly shows that the Iranians did not want any presence of their troops or their navy in the Strait of Hormuz. That is why they have initiated this fresh escalation in this war. And now it is very interesting to see what will be the response of the U.S., because when the U.S. President Donald Trump was asked yesterday in the briefing that whether it is a full-fledged war with the Iran or it is just for some kind of a control, he said that it is a small potato. We are just dealing with it, and whenever we need, we will attack, but it is not a war. There is also pressure on U.S. because midterm polls are going to be held in the month of November. Before those midterm polls, there is some kind of a pressure on Donald Trump that he should come out from the war. They are not only they are getting the critics criticized from the own population, but even the veterans from the U.S. are saying that this is an unwanted war, not only for the U.S., but also for the economic interests of U.S. That is why but we have seen earlier also when somewhere this conflict starts, it is very difficult to get out of that conflict. It was also stated earlier in the war by the Iran that this war has been initiated.
0: All right, Ashraf Ghani, thank you very much for bringing us that perspective of what is happening in West Asia and the larger political issues surrounding it. But moving on, we have some more breaking news coming in. An F4 Phantom jet has crashed during an air show in Greece. Two pilots have been killed as Greek F4 fighter jet crashes. It has crashed near spectators plummeting to the ground during an air show. Visuals show black smoke billowing as the F4 crashes at Tanagra Airport. Air base. This is a two-seater F4 Phantom that has crashed in Greece, killing both pilots. This was during an air show in Tanagra Air Base in Greece. Loudspeakers can be heard urging spectators to evacuate after crash in the video that is now on your screens right now, viewers. This plane crashed just hundreds of meters from the spectators who had gathered to watch the air show. This is a tragedy that has happened at the Athens Flying Week with both pilots killed during this crash. And our big story at this hour, the Prime Minister's address at the centenary celebrations of the SRCC, the Shriram College of Commerce. The address came with big attacks on the opposition. Prime Minister Modi said that the recent Dimagi Naxal remark was like homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition's sulking like a Naraz Phufa. Prime Minister Modi further took aim at what he called my bap culture and said New India's truth will trump over jhoot ki goonj. The Prime Minister drew a sharp contrast between India of 2013 when he gave his previous address at SRCC and where India stands now in 2026. He pointed out that today India is not only growing at 7.8% but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. Prime Minister also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were killed along the LOC, whereas today, India enters Pakistan and destroys terror. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC into an election platform. The Congress has said Prime Minister failed to address student concerns in his address and did not even speak on the police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: आपको दो तरह के लोग मिलेंगे. एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं. दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं. उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना. इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है. इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है. जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है. हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है. हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है. हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है. हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है. हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे, और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था। बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे, लेकिन ये मोदी है माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गुंज टिक नहीं सकेगी।
3: इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर हियरिंग हिम, सो इट फेल्ट दैट ही इज अ लीडर हु कनेक्ट्स विद द पीपल।
4: आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण पहली बार, अब दूसरी बार 2013 के बाद अब आए हैं, कैसा लगा उनका भाषण, क्या खास लगा?
5: So it was my first time hearing the Prime Minister of India and it was a very great experience that hearing such a big dignitary in our college, and it was a very great experience.
6: It was a great moment. उन्होंने बताया कि 2013 में भी वो आए थे और अब वो सीधा 13 साल बाद हैं, क्या differences देखने को मिला, कैसे हम development के बारे में सोच पा रहे हैं because of मोदी सरकार. It was a great experience.
7: बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री जी ने. आज as a Gen Z I feel like वो बहुत connect कर पाए हमारे साथ. उनको सब पता था हमारे बारे में एंड उन्होंने अपनी ऑरा बहुत अच्छे से दिखाई.
8: काफी अच्छा स्पीच था, काफी रेलेवेंट स्पीच थी. मोर ओवर जो एजेंडा था टू आउटरीच Gen Z पीपल, सो मोर ओवर ही यूज टर्म्स मोर ऑफन यूज इन Gen Z लैंग्वेज, सो उन्होंने वो वाली चीजें भी यूज करे. एंड इट वॉज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू शेयर अ कॉमन रूम विद सच बिग डिग्निटरीज.
4: सर, प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी जो आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करा?
9: उनके Gen Z टर्म्स जो उन्होंने आज यूज किए, जो उनका मतलब एजेंडा था Gen Z आउटरीच के लिए, तो वो चीज काफी अच्छी सबको ही लगी है, वो टर्म्स का उनका यूज करना.
10: ओवरऑल तो काफी अच्छा था और जिस तरह उन्होंने सब कुछ रिलेट किया Gen Z को, मतलब सामने रखते हुए उनके वर्ड्स को, तो दैट वाज ऑल गुड.
4: प्रधानमंत्री की स्पीच में पॉलिटिकल चीजें बहुत आती है, लेकिन इस पूरे स्पीच में कहीं भी पॉलिटिकल नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमला लगता है कि किया विपक्ष पर.
5: हाँ, 100% मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी एस्पेक्ट्स एड्रेस करे हैं जो एक्चुअल में उन्होंने पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज करी, विच इज अप्रोप्रिएट बिकॉज दिस इज अ कॉलेज. बट आई थिंक कि उन्होंने काफी हद तक हमला करा है ऑन ऑल ऑफ द फूफाज हु लाइक टू क्रिटिसाइज द कंट्री नो मैटर व्हाट.
11: उनके ऊपर पैलेट गन चला करके, उनके ऊपर गोला और जो है बंदूक चला करके विद्यार्थियों के बीच में जो है विकसित भारत का सपना बेचने के लिए गए थे. मोदी जी, आप अशिक्षित रह गए, दुख है इस बात का. देश अशिक्षित नहीं रहेगा और शिक्षित भारत से विकसित भारत बनेगा. फेल विद्यार्थी को बढ़िया टीचर बोल देने से पीआर हो सकता है, उस टीवी कंपनी को सरकार की तरफ से कुछ प्रचार मिल सकता है, एड मिल सकता है. देश का भला नहीं होगा. देश का भला होगा जब इस देश के विद्यार्थी आत्महत्या करना बंद करेंगे, इस देश के किसान आत्महत्या करना बंद करेंगे.
0: एंड लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड एज ही टुक ऑन द यूपीए एरर ड्यूरिंग हिज स्पीच टू द एसआरसीसी स्टूडेंट्स. अटैक नंबर वन, द स्कैम्स एंड करप्शंस दैट वर अनचेक्ड टिल 2013. अटैक नंबर टू, ग्रोथ वाज एट रॉक बॉटम टिल 2013. दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड. Prime Minister also said that hopelessness and policy paralysis was there till 2013. Pakistan terror was uncontrollable till 2013, which is when the Modi government took over. Soldiers were killed along the LOC till 2013. Inflation at 10% was headline in 2013. Only rupees 600 to 700 crore defense exports were there in 2013. There was nothing to celebrate till 2013. That is what the Prime Minister has claimed before the students, that there was nothing to celebrate till 2013, and rampant atrocities across the country were going on. Attack number 10. India was part of the fragile five economies in 2013. Big attacks by the Prime Minister comparing the UPA era to today's economy and today's political space that India occupies. But moving on to our next big story, right-wing influencer Swatantra Bhardwaj, who boasted about assaulting a protester's father at Jantar Mantar and escaping jail due to his political links, has been arrested and sent to one-day police custody. His police remand ends today and he will be produced before court again. The teen protester has said that she's thankful for the action that was finally taken against Swatantra, but she added that his supporters have been abusing and threatening her. Meanwhile, a complaint has been filed with the Delhi police against the victim herself, alleging that she insulted Hindu gods through malicious posts. The complainant has accused the protester and her father of hurting religious sentiments.
12: उसे कस्टडी में रखा गया है और वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो ऑल टाइम मांग रहे हैं. तो रियली थैंकफुल है उन लोगों का कि उन्होंने एटलीस्ट इतना तो किया. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहाँ गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहाँ पर FIR करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल तो, बट उनसे मेरे को डर है, खतरा है, क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं. उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में, और अभी भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी फ़िलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए, कुछ पता नहीं।
13: बताइए, जब आप थाने पहुंची तो आप लोगों की मेन डिमांड क्या थी, क्या रिटर्न में लिख के ले गए थे?
12: देखिए, हमारी डिमांड ये थी कि जो अब तक पुलिस जिसको डिले करते आ रही थी, जिस चीज पे कार्रवाई नहीं कर रही थी क्रिमिनल के अगेंस्ट, जिसने पापा के ऊपर हमला किया, उनका सर फोड़ा, तो हमारी मांगे ये थी कि आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए। वो खुलेआम घूम रहा है, लोगों को धमकियाँ दे रहा है, और कितना प्राउडली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी मांगे यही थी कि आप इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, ऐसे लोग खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। ये कब हम पर हमला कर दें और लोगों पर हमला कर दें, कुछ पता नहीं।
14: हम लोग सब कोर्ट में थे, वेट कर रहे थे कि हियरिंग होगी। बाद में पता चला कि वीसी से लीगल एड काउंसिल को जोड़ करके अक्यूज्ड को जज साहब के घर पे पेश कर दिया गया, और एक दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई। इतने सीरियस ऑफेंस, एक दिन की पुलिस कस्टडी, कौन से चार्जेस ऐड हुए, एफआईआर में क्या एडिशन किया, इन सब की कोई जानकारी हमें भी नहीं मिली है। मुझे पता नहीं क्या छुपाया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कौन से चार्ज लगाए गए, मीडिया हमें बता रही है कि ये धारा लग गई, वो लग गई। पुलिस ने अभी तक, दिल्ली पुलिस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कौन से एडिशन किए हैं चार्जेस के।
15: देखिए, सुंदर भारद्वाज ने जो एडमिट किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है, और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि अब दूसरा एक काउंटर भी आ रहा है कि वहां पर जिस प्रकार से उसकी पिटाई भी हुई, उसने उसके रिएक्शन में कुछ किया, हालांकि जो उसने बोला है वो बहुत चिंताजनक है, और वो एक कास्ट को लेकर इस प्रकार से बोला वो भी चिंताजनक है, परंतु फिर भी जाँच होनी चाहिए। जाँच के बाद अगर वह दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
0: With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. For more news and updates, you can log on to indiatoday.in. You can also download our app.
16: You are watching India Today.

0: And breaking news coming in on a major Congress organizational reshuffle. Congress shifts Bhupesh Baghel from Punjab. Baghel appointed now as the Assam Congress in charge. Is this a Congress bid to placate the Channi faction? Remember, Channi faction had seen Baghel as close to Waring. Sachin Pilot has been named new Punjab Congress in charge. Punjab Congress infighting triggers this organizational change. Randeep Surjewala has been named the Gujarat Congress in charge, and he will also retain Karnataka charge. Congress has tweaked state leadership ahead of the coming polls. It's a big reset as the party shuffles state in charges. Anmol Bali is joining me on this story. Anmol, the Congress party doing a major rejig of state in charges ahead of polls coming in and several states in the next few months. What more can you tell us?
1: Just ahead, few months ago, the Punjab Vidhan Sabha election, we have seen that Congress has made a major rejig in its leadership. They have changed the Congress in charge, which was earlier Bhupesh Baghel, which has now been assigned to the Assam Congress. But on the other hand, Rajasthan's fiery leader, Sachin Pilot, has been assigned with the Punjab duty just before, few months before the election, because we were seeing infighting in between the Punjab Congress, where various of the camps have been accusing each other, where Rajavading camp and Charanjit Channi camp have been locking their horn. Amidst this, we have seen a big change where Sachin Pilot has been given this duty, because it comes from a neighboring state of Rajasthan, which shares border with Punjab. Even Sachin Pilot's mother is Punjabi, so the Congress party leaders, we have talked with the sources, have said that he can understand Punjabi very well. And this has just also came a few weeks ago, Congress party's Punjab Bachao Yatra, where Rahul Gandhi will be traveling around the Punjab from Amritsar to the various parts of the Punjab just before the Punjab Vidhan Sabha election. And not only in Punjab, we have also seen changes on the top leadership in various other states, where Sukhdev the Bhagat has been made in charge of the Chhattisgarh, Srivela Prasad has been made in charge of Maharashtra, Randeep Surjewala has been given General Secretary in charge duty of Gujarat. So various changes have been made in top brass of the Congress party leadership as the various state units are looking at the upcoming state elections and Vidhan Sabha elections. Anisha.
0: All right. Thank you very much for that perspective. Big rejig in the Congress as infighting continues. But moving on now to our next big story. Prime Minister's address at the centenary celebrations of the Sriram College of Commerce came with big attacks on the opposition. Prime Minister Modi said that the recent Dimagi Naxal remark was like a homeopathy dose for the opposition. He also compared the opposition sulking like a Naraz Bhupa. Prime Minister Modi further took aim at what he called my baap culture and said New India's truth will trump over jhoot ki goonj. The PM drew a sharp contrast between the India of 2013, when he gave his previous address at the SRCC College, and where India stands now in 2026. Modi pointed out that today, India is not only growing at 7.8%, but also creating employment opportunities despite wars and global disruptions. He added that those responsible for pushing the economy into the fragile five cannot digest it. He also said that in 2013, Pakistan-sponsored terror was uncontrollable and soldiers were killed along the LOC, whereas today, India enters Pakistan and destroys terror. The opposition has, however, hit back, accusing the Prime Minister of doing PR and turning SRCC, the college, into an election platform. The Congress has also said that Prime Minister failed to address student concerns in his address, did not even speak on the police action on students during the Jantar Mantar protests.
2: आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं, दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? ये हर फूफा का परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाई यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया कि जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया, जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे थे। लेकिन ये मोदी है, माय बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है। साथियों, पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं, मुझ में हिम्मत है, इसलिए मैं उस दिन कई बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गुंज टिक नहीं सकेगी।
3: It was a great pleasure hearing him. So it felt that he is a leader who connects with the people.
4: आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री का भाषण? पहली बार, अब दूसरी बार 2013 के बाद अब आए हैं, कैसा लगा उनका भाषण, क्या खास लगा?
5: So it was my first time hearing the Prime Minister of India and it was a very great experience that hearing such a big dignitary in our college and it was a very great experience.
6: It was a great moment. उन्होंने बताया कि 2013 में भी वो आए थे और अब वो सीधा 13 साल बाद आए, क्या differences देखने को मिला, कैसे हम development के बारे में सोच पा रहे हैं because of मोदी सरकार. It was a great experience.
7: बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री जी ने. आज as a Gen Z I feel like वो बहुत connect कर पाए हमारे साथ, उनको सब पता था हमारे बारे में एंड उन्होंने अपनी aura बहुत अच्छे से दिखाई.
8: काफी अच्छा स्पीच था, काफी रेलेवेंट स्पीच थी. मोर ओवर जो एजेंडा था टू आउटरीच Gen Z पीपल, सो मोर ओवर ही यूज टर्म्स मोर ऑफन यूज इन Gen Z लैंग्वेज, सो उन्होंने वो वाली चीजें भी यूज करे एंड इट वॉज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू शेयर अ कॉमन रूम विद सच बिग डिग्निटरीज.
4: प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी जो आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ?
8: उनके Gen Z टर्म्स जो उन्होंने आज यूज किए, जो उनका मतलब एजेंडा था Gen Z आउटरीच के लिए, तो वो चीज काफी अच्छी सबको ही लगी है, वो टर्म्स का उनका यूज करना.
6: ओवरऑल तो काफी अच्छा था और जिस तरह उन्होंने सब कुछ रिलेट किया Gen Z को, मतलब सामने रखते हुए उनके वर्ड्स को, तो डेट वॉज ऑल गुड.
4: प्रधानमंत्री की स्पीच में पॉलिटिकल चीजें बहुत आती है लेकिन इस पूरे स्पीच में कहीं भी पॉलिटिकल नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमला लगता है कि किया विपक्ष पर.
5: हाँ, 100% मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी एस्पेक्ट्स एड्रेस करे हैं जो एक्चुअल में उन्होंने पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज करी, विच इज अप्रोप्रिएट बिकॉज दिस इज अ कॉलेज, बट आई थिंक कि उन्होंने काफी हद तक हमला करा है ऑन ऑल ऑफ द फूफाज हु लाइक टू क्रिटिसाइज द कंट्री नो मैटर व्हाट.
4: क्या ये कनेक्शन होना, ये कनेक्ट होना कि बाकी जरूरी है आज सरकार के बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में और न्यू जो जनरेशन है, Gen Z है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी बहुत जरूरत?
9: जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफी जरूरत है और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो लोग आए और मोदी जी ने हमारे इस कॉलेज के 100 साल की सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन करा और उन्होंने काफी बताया कि कैसे इस कॉलेज के एलुमनाई बहुत मतलब बहुत अच्छी जगहों पे है,
10: अच्छी पोजीशन पे है
9: और वो उन्होंने हमें मोटिवेट करा कि हम भी कैसे देश के लिए काम कर सकते हैं आगे जाकर.
10: बहुत ही अच्छे Gen Z वर्ड्स याद करके आए थे.
4: कौन से?
10: जैसे ओजी, क्रॉस
9: रोड.
10: हाँ, क्रॉस रोड्स बहुत सारे
9: अंदर भी है. हाँ, उन्होंने कहा ऐसा
10: वो तो हमें साथ ही साथी करके बुला रहे थे तो लाइक कनेक्ट कर पा रहे थे हम लोग, सच्ची
9: में रिलेटेबल बन पा रही थी स्पीच और बिल्कुल बोरिंग.
10: और जो फूफा जी का एग्जांपल दिया था वो तो बहुत अच्छा एग्जांपल था. फूफा जी का एग्जांपल दिया था उन्होंने, एक नाराज फूफा जी का.
4: आपने सुना था वो?
11: मैं वेट कर रहा था कि वो हेलो फ्रेंड्स बोले, उन्होंने वो नहीं बोला. मैं वेट कर रहा था पूरे टाइम, वो हेलो फ्रेंड्स बोलते थे रील पे, उन्होंने बोला था.
4: लेकिन के बीच आकर के उन्होंने हेलो फ्रेंड्स की जगह कुछ और ही बोला.
11: मैं साथियों बोला, मैं बहुत वेट कर रहा था लेकिन उन्होंने बोले Gen Z वर्ड्स. मजा आया लेकिन स्पीच में,
9: दोनों तरफ से जो बात संबंध होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा. जैसे कि आज हमने सिर्फ उनकी स्पीच सुनी जो बहुत अच्छी थी, जो फर्स्ट स्टेप था इस कनेक्शन के लिए. उसके बाद आगे जाके उन्हें हमारे साथ बैठ के हमारे साथ बात करनी चाहिए जिससे और वो कनेक्शन बढ़ेगा और उन्हें हमारी भाषा भी और समझ में आएगी.
4: क्या ये रिपोर्ट कार्ड से आपको लगता है कि वाकई ये रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने अपने काम गिनाया, किस तरीके से उन्होंने 40 देश के साथ अब कनेक्ट किया है, बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी लगातार डेवलप हो रही है, इसको लेकर के क्या कहें?
12: इस पे देखो फैक्ट्स हैं ये, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ कुछ कुछ ग्रोथ आर्टिफिशियली भी इन्फ्लेट होती है एंड हमें इफ वी रियली लुक एट द फैक्ट्स तो हमें ऐसा देख सकते हैं हम कि कुछ ग्रोथ ऑन ग्राउंड अलग होती है एंड ऑन पेपर अलग होती है क्योंकि जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इंडिया हैविंग सच अ पॉपुलेशन हम सिर्फ.
4: सबसे बेस्ट क्या लगा?
12: बेस्ट सही था, मतलब सब बढ़िया था.
4: कनेक्ट कर पाया?
12: हाँ जी.
4: ये SRCC के कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्पीच जो है वो सुनी और उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यूथ से जो है वो कनेक्शन वो बांधने की पूरी कोशिश करी और कनेक्शन भी जो है वो नजर आया। कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
13: उनके ऊपर पैलेट गन चला करके, उनके ऊपर गोला और जो है बंदूक चला करके विद्यार्थियों के बीच में जो है विकसित भारत का सपना बेचने के लिए गए थे मोदी जी, आप अशिक्षित रह गए। दुख है इस बात का, देश अशिक्षित नहीं रहेगा और शिक्षित भारत से विकसित भारत बनेगा। फेल विद्यार्थी को बढ़िया टीचर बोल देने से PR हो सकता है, उस TV कंपनी को सरकार की तरफ से कुछ प्रचार मिल सकता है, एड मिल सकता है, देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा जब इस देश के विद्यार्थी आत्महत्या करना बंद करेंगे, इस देश के किसान आत्महत्या करना बंद करेंगे।
14: हमने देखा कि मोदी जेंजी के लोगों से मिला श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो धक्का पहुंचा CJP का आंदोलन के बाद, जहां उनको शिक्षा मंत्री का पद तक लेने पड़ा। मेरा लगता है कि जेंजी सारा देश में BJP के सरकार का खिलाफ है, दो बार मिलने से ये मेकअप नहीं होगा।
0: The Prime Minister is giving his political communication in a distinctly Gen Z makeover. From dropping terms like flex and OGs at the SRCC to embracing selfie reels and the viral get ready with me trend, Modi's digital outreach is increasingly speaking the language of younger audiences. Take a look.
15: Forget political speeches. Prime Minister Narendra Modi's political playbook just got a total Gen Z makeover. From late night selfie reels on Instagram to dropping viral campus lingo, PM Modi's aura is a hit with the Gen Z. The Prime Minister dropped terms like flex and OGs in his SRCC speech.
2: DU में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो SRCC कहना ही, SRCC कहना ही अपने आप में ही एक फ्लैक्स होता है।
15: No cap, the Prime Minister kept the high energy going.
2: SRCC के एल्यूमनाई भी बहुत स्पेशल रहे। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के एल्यूमनाई OG है।
15: And the students were locked in.
2: SRCC के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है। धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है।
15: After listening to PM Modi's speech, SRCC students called the address exciting and inspiring, saying his vision for a developed India gave them a fresh perspective.
7: बहुत अच्छा बोला प्रधानमंत्री जी ने आज। एज अ जेन ज़ी आई फील लाइक वो बहुत कनेक्ट कर पाए हमारे साथ, उनको सब पता था हमारे बारे में एंड उन्होंने अपनी ऑरा बहुत अच्छे से दिखाई। सो आई फील लाइक PM मोदी इज द बेस्ट एंड इट वाज एन अमेजिंग इवेंट, इट वाज रियली नाइस।
16: देश ने चेंज किया है पास्ट 10-15 ईयर्स में खुद को, तो हाँ देखने को मिलता है कि काफी रियल चेंजेस हुए हैं कंट्री में उनके टेन्योर में।
7: जेंजी का लिंगो यूज किया गया, OG, फ्लेक्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। पार्लियामेंट में भी पहले इस तरीके से हम जनरेशन जेड से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, विच इज कूल कि फाइनली एटलीस्ट हमारी तरीके से सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं वो।
15: बट दिस इज इन मोदीज फर्स्ट टाइम वूइंग द जेंजी। सिंस जुलाई द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन स्टेडिली टर्निंग अप हिज इंस्टाग्राम गेम। July 23rd, amid the NEET paper leak controversy, a late-night selfie reel promising strict action and tougher anti-leak laws.
2: Friends, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए
17: बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे.
15: July 24th, another reel. This time thanking young viewers and asking for their suggestions.
17: Thanks to everybody. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा.
15: Then came more videos on educational reforms, youth issues and forgiveness towards protesters after Jantar Mantar showdown.
17: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है और इसलिए मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं.
15: Even when the protest noise peaked, Modi chose not to crash out, choosing forgiveness over hostility.
17: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है. हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है.
15: PM Modi jumped onto the Get Ready With Me trend for National Handloom Day. The packaging of PM's messages were unmistakably Gen Z. From high friends to flex and OGs, PM Modi's digital pitch to Gen Z is clear. Speak their language. Bureau Report, India Today.
0: Breaking news coming in on the trouble mounting for former DNK Minister K.N. Nehru. Tamil Nadu Vigilance Department files FIR against K.N. Nehru over tender irregularities in Water Supply Department. Nehru, remember, was MWAS Department Minister in the DNK regime. The case against Nehru is under the Corruption Act. This is an update coming in on the raids that happened just yesterday at K.N. Nehru's residence, as the DVAC, the Department of Vigilance, has filed an FIR now against DMK's former minister. Let's listen in to what is being said.
18: ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்களா? எந்த அளவுக்கு
19: நாங்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம் புதுசா, நீங்க வந்து எது வேணா பார்த்தோம். அவங்க சொன்ன மாதிரி டெண்டர் விஷயமா நான் யாருகிட்டையும் பேசுறேன். அவங்க அது விஷயமா ஒரு நான் ஏற்கனவே இதுக்கு நான் உடனே இடி கேஸ் ஒன்று கோர்ட்ல வச்சிருந்ததுனால புதுசா ஒரு கேஸ் போட்டாங்க. புதுசா கேஸ்ல போட்டு பார்த்தாங்க. எந்த எடுத்து எடுக்கல. அது ஆபீசர்ஸ்
0: Anagha Keshav is joining me on the phone line on this story. Anagha, raids yesterday, FIR today. This is a scam involving water. What can you tell us about this details? The details. This was about tenders in the water supply department, wasn't it?
20: No, that's right. In fact, the allegation, the complaint against former Minister K.N. Nehru is that when he was a minister in DMK regime, there were violations in tender norms in the NWAS department, the Municipal Administration and Water Supply Department. There were irregularities when it comes to tender. And therefore, a complaint, an FIR, has been filed against K.N. Nehru under Sections of Prevention of Corruption Act. Further, we also know that there were raids conducted in 30 places in Chennai, Coimbatore, Trichy, Erode and Tirupur. All of these locations are linked somehow to K.N. Nehru. Even his brother Ravichandran's house was also raided. His personal assistant's house was also raided in this matter. And what we're learning further is that in the search, 241 incriminating documents relating to the irregularities committed in the tenders has been seized by the DWAS department, including electronic evidence. So we need to wait and watch how this case is really going to pan out further, because last time when such an FIR was registered against K.N. Nehru, the matter ended up in court and the case is at the moment stalled. So this is a fresh case that has been leveled against him. So whether more skeletons will tumble out of the closet and whether there will be a final decision on this matter is yet to be waited and watched out for.
0: All right. Thank you very much for that, Anugrah Keshav. We're getting some more breaking news coming in. Let's move on to that. And in Telangana, Chief Minister Revanth makes a big attack on former Chief Minister KCR. Revanth throws open challenge to K. Chandrasekhar Rao. The challenges him ahead of the 29 assembly polls. Revanth says Congress will dig your grave on this very land. If seats rise, will win 117, otherwise 90. Revanth Reddy has said that Congress will form government again in 2029 and the next 10 years will belong to the Congress. In fact, he claims two terms of Indiramma Rajyam from

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेतागिरी कर रहे हैं, मिले होंगे उनसे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: bench, tiles, flower pots. All this has been made from plastic waste. The brains behind this initiative are Sonal and her husband Vaibhav. Their startup, E-Conscious, recycles plastic waste into products suitable for public spaces.
1: हम लोगों में एक ऐसी हैबिट लेके आना चाहते हैं जो नॉट जस्ट रिसाइकलिंग बस रीड्यूस और रीयूज के कॉन्सेप्ट को भी हम आगे लेके आए. सो हमने ई कॉन्शियस लिया. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको कॉन्शियस जो हमें बताता है कि हमें हर एक चीज, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो, फेंकना हो, हम उसको कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस के साथ में लेके चले.
0: While Sonal has specialized in environmental engineering, Vaibhav is an electronics and communication engineer. The couple launched their business during COVID-19 pandemic when massive amounts of plastic waste were being generated due to PPE kits, masks and other single-use plastic items.
2: इसके पीछे का हमारा थॉट था कि अब जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या इस टाइप के कोई और इवेंट है जहाँ पे इस टाइप का प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अब वो उसको हम मतलब किसी तरीके के वो इकट्ठा करके उनको ही कन्वर्ट करके हम कुछ स्कूल के बेंचेस हम बनाए, वहाँ के लिए पार्कों के लिए बेंचेस बनाए.
0: E-Conscious produces benches for parks and schools. It also makes dustbins, paver blocks and various customized products. With Manisha Ladda, Bureau Report, India Today.

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: The Kokro Janta Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahmbhatt has now floated the Kokro Janta Party Democratic. Brahmbhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dipke-led camp Team Kejriwal.
1: आज हम कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्यों करनी पड़ी? आंदोलन देश का आंदोलन था, लोगों ने अपना खून पसीना बहाया तो आंदोलन सफल हुआ, पर आंदोलन सफल होने के बाद इसका सौदा हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
0: दीपके हाउएवर हैज हिट बैक।
2: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
0: Brahmbhatt says CJPD will take on corruption irrespective of which party is in power. The CJP began as Dipke's satirical online movement before evolving into a youth-led platform that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.

0: So beginning this school year, we will implement a one-year moratorium on generative AI for students in 2K through 8th grade. I want to thank Governor Hochul for helping pave the way with our efforts to ban cell phones and social media platforms in our schools. This moratorium is a commitment to getting the future right. A six-year-old child is too young to slice an onion, to fry an egg, or to use a stove safely. But once that child is 16, that knowledge becomes something they are mature enough to learn. That same principle applies to AI. In high school, we will teach our students about AI, its opportunities and its pitfalls, its building blocks and its biases. And we will pilot 5 rigorously vetted educational AI programs that teachers have vouched for, like the programs that I just had the pleasure of trying alongside students here at Brooklyn STEAM. But I want to be very clear, in no way...
1: are watching India Today.
2: कानून के दायरे में रहकर कि कोई उत्सव मनाता है तो उसको सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको समर्थन करे, उसको प्रोत्साहित करे. और ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी आयोजन भी था. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को मैंने कहा भी हर थाने में करो, हर जेल में हम आयोजन करो, हर महत्वपूर्ण स्थल पर होना चाहिए. आप रोकेंगे क्यों और कैसे रोक सकते हैं? हमारे कान्हा तो यहां पे कंसी की ही जेल में पैदा हुए थे, तो क्या उसको हम भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे. कभी वो जेल थी, आज हमारे लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली है. और श्री कृष्ण जन्मस्थली देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु आया हुआ है. पिछली सरकारें उसको समझ नहीं पाई थी, उन भावनाओं को सम्मान नहीं दे पाई थी. और जनता जनार्दन की भावनाओं को जो भी सरकार कुचलने का कार्य करती है, लोकतंत्र उसको कुचल कर रख देता है, उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा कर देता है. और यही इनकी दुर्गति का कारण है. इन्होंने यूपी की इस विरासत को अपमानित किया, इन्होंने अयोध्या को भी अपमानित किया, इन्होंने हमारी इस पावन ब्रजभूमि को अपमानित किया, इन्होंने काशी को भी अपमानित करने का काम किया था. और यही कारण है कि यूपी इन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करने वाला है. यूपी का व्यक्ति अब कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण का अभ्यस्त हो चुका है. अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है. और इस चंगापन को लेकर के अब वह पूरे उत्साह के वातावरण में डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दिए जा रहा है. ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन उसी बदलाव का परिणाम है जो चुनौती से भागता नहीं, उन चुनौतियों में संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है. जो लोग चुनौती को समस्या मानते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू ग्रस्त बनाया था, दंगा ग्रस्त बनाया था, अराजक बनाया था, उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था. जिन लोगों ने चुनौती को एक संभावना के रूप में लिया, उन्होंने उन संभावनाओं में सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित

0: स्थापित भी किए और वही प्रगति आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको दिखाई दे रही है। 2017 के पहले जन्माष्टमी के आयोजन को थाने यानी एक ही आयोजन होता था जो थानों में होता था और जेलों में होता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बैन कर दिया था, कावड़ यात्रा को रोक दी थी, जन्माष्टमी के आयोजन को इन्होंने रोक दिया था। मैं 17 में जब आया तो मैंने पहले देखा कि कावड़ यात्रा, मैंने पूछा भाई कावड़ यात्रा क्या तैयारी है, जब हमारे अधिकारी अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि 5 राज्य उसके साथ जुड़ते हैं, यूपी के साथ, उत्तराखंड भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, सभी जगह के श्रद्धालु आते हैं, तो इनके साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक भी होती है, इंटर स्टेट जो बैठक होती थी उसमें हमारे अधिकारी गए थे। मैंने कहा क्या तैयारी है, उन्होंने कहा जो गत वर्ष का जियो है हमने उसको ही जारी करने के लिए कहा। मैंने कहा क्या है गत वर्ष का जियो, उन्होंने कहा साहब डीजे नहीं बजेगा, घंटा संघ घड़ियाल ये सब नहीं बजेंगे। भाई हमने कहा तो फिर क्या है, ये शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा निकल रही है। मैंने कहा बैठक मेरे सामने कराओ। मैंने अगले सप्ताह बैठक करवाई, सभी राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा भी देखो यूपी के अंदर डीजे भी बजेगा, संघ घड़ियाल सब बजेंगे, हाँ कावड़ की एक ऊंचाई हम सुनिश्चित कराएंगे, हम सुविधा देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे और भक्तिमय माहौल में कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए, जो सुविधा चाहिए हमसे लो। अधिकारी मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे साहब उपद्रव हो जाएगा। हमने कहा भी कोई उपद्रव नहीं होता है, मैं जानता हूं कौन उपद्रवी है और उपद्रवियों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं। इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालु थे कावड़ यात्रा में, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच, एक ही उसमें 5 करोड़ श्रद्धालु कावड़ यात्री थे। रोहिलखंड का दूसरा है, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर वाली तीसरी यात्रा चलती है, प्रयागराज से काशी की चौथी चलती है, बुंदेलखंड की अलग है, मैं इनकी काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन क्षेत्रों में केवल एक ही कावड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, एक भी जगह कोई उपद्रव नहीं था, कहीं अव्यवस्था नहीं थी, हर व्यक्ति खुशी के साथ आगे बढ़ रहा था। आप लोगों के उत्सव के इस आनंद को भी छीनना चाहते थे, हमने इसको फिर से पुनर्बहाल कराया, कहा नहीं इसको रोका नहीं जा सकता है। अब यूपी बीमारू नहीं है, अब वो यूपी नहीं है जिसकी पहचान गड्ढा युक्त सड़कों से होती थी, वह यूपी नहीं है जिस यूपी की पहचान होती थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधकार प्रारंभ हो जाए, वह यूपी का सीमा है। अब यूपी की पहचान देश के अंदर एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी राज्य के पास है तो वह यूपी है। 60% एक्सप्रेस वे हमारे पास हैं यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा सबसे ज्यादा सिटी के अंदर चलने वाली है वो यूपी के अंदर, 7 सिटी में वर्तमान में हम मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा संचालित कर रहे हैं। भारत की पहली रैपिड रेल यूपी में, भारत की पहली इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी से प्रारंभ हुआ। एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नेटवर्क किसी के पास है वो यूपी के पास, 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ आज यूपी इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र आवागमन के लिए माध्यम नहीं है, ये केवल हमारी गति को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी गति के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी एक नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य इस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूपी के अंदर किया है। जिले 25 हैं, लेकिन आज के दिन पे मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर आप हम लोग 79 यहां के प्रोडक्ट हैं जिसको हम जीआई टैगिंग कर चुके हैं, यानी वह ग्लोबल मार्केट के लिए अब वह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। और यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त की है। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के लिए बेहतरीन अवसर है हमारे यहां नौजवानों के लिए। हर जनपद में हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इन सभी पे हमारे हर जनपद में इसकी ट्रेनिंग की बेहतरीन सुविधा, हमारी वोकेशनल एजुकेशन में भी और टेक्निकल एजुकेशन में भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी हमने अपने छात्रों के लिए यह सुविधा माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उसको एक आज की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसे कार्य किया है। यह नया भारत का नया यूपी है, यह अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तो आधुनिक विकास को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलता है। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी इतिहास प्रसिद्ध वे घटनाएं होती हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम भी किया था, ये वही धरती है। लेकिन उस धरती के सामने आजादी के बाद जो संभावनाएं आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए थी, उन संभावनाओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तिलांजलि देकर के कुंद किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। यहां के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के रूप में बदलने की बजाय उसे प्लानवादी बनाने का प्रयास किया गया। दुष्परिणाम क्या था, दशकों तक यूपी के सामने बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान को छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। यहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का व्यापारी अपनी पहचान को छुपाता था, यहां का हर नागरिक जब यूपी के बाहर जाता था तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। गलती उस युवा की नहीं थी, गलती उस बेटी की नहीं थी, गलती उस व्यापारी और उस उद्यमी की नहीं थी, बीमार यूपी नहीं था, यूपी में तो सब कुछ था। यहां संभावनाएं थी, यहां विरासत थी, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि थी, सबसे अच्छा जल संसाधन था, लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था। बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं था, बीमारू व मानसिकता थी जो 2017 के पहले यूपी में शासन कर रही थी। वह बीमारू थी, वह बीमार थी, इसलिए उसने यूपी को बीमारू बना दिया। उनकी नीति बीमार थी, उनके क्रियाकलाप बीमार थे, इसलिए यूपी बीमारू बना। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यूपी अब बीमारू नहीं है। यूपी भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमने यूपी को बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे याद है प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं एक बार दिल्ली के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा था, उस समय समाजवादी पार्टी के शिक्षा मंत्री अचानक आ गए, तो हम लोग एक ही जो उनका रिटर्निंग रूम था उसी में बैठे थे। तो उसी दिन वे गोरखपुर के एक कार्यक्रम में थे। गोरखपुर आप जानते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदानी भूमि भी है। गोरखपुर में ही गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे एक पार्क का उद्घाटन था, तो पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री। और जब उनको भाषण देने के लिए वे गए तो उन्होंने मंच से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात को कहा कि साहब मुझे बिस्मिल्ला साहब के जन्मदिन पर आकर के खुशी हुई। मंच से एक सज्जन ने कहा कि भाई ये बिस्मिल्ला साहब नहीं है, ये सहनाई वादक के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब नहीं है भाई, ये तो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तुम भाजपाई हो इसलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे हो। ये उस समय के शिक्षा मंत्री बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सहनाई वादन के उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के नाम में ही जिनमें अंतर महसूस न होता हो, वे उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा को कहाँ ले गए होंगे आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हर नौकरी में सेंध लगाना भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको उन्होंने अपने कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया था और इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। सुशासन जहां से प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है कि कानून का राज कैसे होता है, उस बेटी से पूछिए किराना की, यानी जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता उन लोगों से। और इसीलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि नहीं, इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ इसने खिलवाड़ किया है तो इसको जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना जरूर है, क्योंकि ये इसका हकदार है, क्योंकि इसने जुर्म किया है। वह जुर्म किया है जो किसी अपराध से बड़ा अपराध है, और इसीलिए उस अपराध को सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है। आज मुझे प्रसन्नता है किराना में प्लान नहीं है, और कुछ लोग दुस्साहस किए थे, अभी आपने देखा होगा लोगों ने प्रयास किया था कि अन्य जगह जैसा अपराध कर लेते हैं वैसे यूपी में कर सकते हैं। गलत फहमी के शिकार थे, ये यूपी है, नए दौर का यूपी है, ये बोलता नहीं है, प्रणाम देता है। कोई ताकत अजमा के देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके रख देगा यूपी। यूपी पीछे हटने वाला नहीं है, हर उसको जवाब देने की सामर्थ्य रखता है। और कुछ लोगों ने जो जरूरत की थी अभी हाल ही में उसी केराना की भूमि पर, तो उसका जवाब मिल चुका है, इससे ही बड़ा जवाब मिलेगा। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है, अपने विरासत भी और विकास की यात्रा के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस आनंद का अनुभव मुझे लगता है कि कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा युवा भी कर सकता है। आधी आबादी बहनें और माताएं भी कर सकती हैं, अन्नदाता किसान भी कर रहा है, हमारा हस्तशिल्पी कारीगर और वह गरीब भी कर रहा है, जिसको राशन भी मिल रहा है, जिसको आयुष्मान की सुविधा भी मिल रही है, जिसको बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, स्कूली शिक्षा भी मिल रही है और स्किलिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। 9.5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में इतनी नौकरी कभी नहीं। और यहां पे अभी सुश्री अंजना ओम कश्यप जी जो बात कह रही थी कि पर्चा लीक और पर्ची लीक, जो लोग पर्ची लीक कराते थे वही पर्चा लीक भी कराते थे। अब यूपी में पर्चा लीक नहीं होता है क्योंकि पर्चा लीक करने वाले को मालूम है कि तो जेल तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवा करके सड़कों पे कटोरा लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने 2020 में ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी पर्चा लीक के इस अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा उसको आजन्म कारावास के लिए जेल के अंदर सड़ाएंगे, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। और ये कार्रवाई यूपी के अंदर हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, तब हम यूपी के अंदर बिना भेदभाव के आरक्षण की नीति को पालन करते हुए 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में हम लोग सफल हुए हैं। यही कारण है जब सरकार की नीयत ठीक होती है, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल होता है। हमने 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो एक वातावरण दिया, 65 लाख नौजवानों को इसके माध्यम से उन्हीं के जनपद या उसी के प्रदेश में हमने उसे नौकरी दी है। और एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमने यूपी के अंदर 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं किसी भी क्षेत्र में हम आज जाएंगे, यूपी के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, पिछली सरकारों ने जनसंख्या को एक चुनौती माना। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य वैसे ही नहीं बना है, क्योंकि यहां जनसंख्या सबसे बड़ी थी, कृषि का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, आबादी बड़ी है तो युवा बड़े होंगे, सबसे ज्यादा युवा आबादी यूपी के पास, इतिहास और संस्कृति की सबसे समृद्ध परंपरा यूपी के पास, धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए समृद्ध जो पर्यटन के केंद्र हैं उसकी असाधारण क्षमता भी उत्तर प्रदेश के पास, और देश का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद था। हमारे पास वह सब कुछ था जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर केवल जनसंख्या की दृष्टि से ही नंबर एक बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता था, हर दृष्टि से वह यूपी को नंबर एक पर करने की सामर्थ्य रखता था। लेकिन जिन लोगों ने इस चुनौती को समस्या माना उन्होंने उत्तर प्रदेश की दुर्गति कर दी, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस चुनौती में संभावनाएं देखी उन्होंने सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित किए। हम लोगों ने उन संभावनाओं को आज एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। आज हम मानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी या हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में उपयोगी है।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: this is because rains wreaked havoc in Delhi again, and a building has now collapsed in Satyaniketan. People are feared trapped under this. Fire teams and local police teams have reached on the spot, and we're also learning that this was possibly a hostel building. So it was a student area where this incident has taken place, and so far we do not have an exact number of how many people are trapped under the debris, but you can see a lot of locals also coming in to help with the rescue and relief efforts. We're seeing that the police
1: जो है मलबे के नीचे इस वक्त दबी हुई है, जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल सामने थी. तो यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं. लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत डरावना है. अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग हो सकते हैं जो इसमें दबे हो. तो एक तरीके से जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये ब्लाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतने बड़े इलाके में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग दबे हुए हो सकते हैं, और उन्हीं जगह पर स्पेसिफिकली ध्यान देकर के जो खुदाई का काम है, मलबा हटाने का काम है, वो किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा एक बार फिर से दिल्ली में हुआ है. कितने लोग अभी इस मलबे में दबे हुए हैं, इस पे अभी तक किसी भी तरह की जो क्लैरिटी है वो हमें नहीं मिल पाई है. प्रशासन ये अभी जो प्रशासन बता रही है हमें, जो फोकस है उनका ये सुनिश्चित करने में है कि जो ये जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जल्दी से जल्दी किया जा सके, और ताकि जो लोग इस मलबे में दबे हैं, जिनको हो सकता है अभी काफी गंभीर चोटें भी आई हों, उन्हें सावधानी से निकाला जा सके, उनकी जान बचाई जा सके. लेकिन काफी ज्यादा जो है यहाँ पर माहौल जो है अफरा तफरी का इस वक्त दिखाई दे रहा है. एनडीआरएफ की मैं आपको दिखाऊं तो अब एनडीआरएफ के जवान भी जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं, और मौके का जायजा लेकर के अपने ऑपरेशन कैसे करना है इसको अब प्लान करना शुरू करेंगे. तो काफी जो सेंट्रल सपोर्ट है वो भी यहाँ पर आ गया है, लोकल पुलिस भी यहाँ मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है, और जैसे जैसे ही लोग निकल रहे हैं पैरामेडिक की टीम उन्हें तुरंत निकाल करके यहाँ से एम्बुलेंस में ले जा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर रही है. लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने लोग इस मलबे में दबे हैं, और क्या पहले से इसकी जानकारी थी कि जो बिल्डिंग की हालत है वो झरझर हालत में है, और अगर ये जानकारी थी तो कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, किसकी लापरवाही की वजह से ये जो बिल्डिंग है कोलैप्स हुआ है, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पे बाद में जांच होगी. लेकिन इस वक्त जो प्रशासन का फोकस है, जो पुलिस का फोकस है, जो फायर डिपार्टमेंट का फोकस है, वो ये सुनिश्चित करना है कि जो भी लोग इसमें दबे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, और जल्दी से जल्दी उन्हें मेडिकल सहायता दिलाई जा सके, ताकि कम से कम जो जान और माल का नुकसान है वो हो. लेकिन अगर आपको और तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि
0: and this is India Today reporting from the ground. We are the only channel on the ground present. They are reporting this from the ground, where you are also seeing now the NDRF teams have reached there. Our reporter from the ground is getting these exclusive visuals for you. And a lot of people are there in the cramped area of Satyaniketan. It's a student area wherein a lot of students reside. We're learning this building collapsed there. Still, we do not know how many people could be trapped under this. There's no count for the casualties of those people who are injured. We can also see that now the locals are being turned away from this area, because this could possibly be also harmful for the locals to be there while the rescue teams are trying to clear the debris.
2: यहाँ पर अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं जो यहाँ पर पीजी में रह रहे थे. बिल्डिंग वो कोलैप्स कर गई है, और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है. अभी दो बच्चों को निकालकर एनडीटीआरएफ और एमसीडी और सभी पुलिस के डिपार्टमेंट ने उनको लेके गए हैं, उनको अभी अस्पताल भेजा है, और बच्चे अंदर से, बल्कि कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं अंदर से, और अभी बच्चे काफ़ी, ऐसा लगता है कि बच्चे अंदर भी हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, भगवान से भी प्रे कर रहे हैं. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरी टीम भेज दी है, माननीय सांसद जी, माननीय हर्ष मल्होत्रा जी लगातार फ़ोन पे टच में हैं, वो पूरी सरकार इसकी से संवेदनशील है, इसको देख रही है कि कैसे भी करके बच्चे बचाए जाएँ, पहला हमारा टारगेट ये है.
3: क्या मान लें, क्या बात?
2: अभी ये पूरी जांच का विषय है, पूरी जांच की जाएगी कि क्या विषय है, पर अभी ये है कि बिल्डिंग गिरी है और बच्चे उसमें, वो बहुत दुखदाई है कि बच्चे उसके अंदर दबे हुए हैं, अभी की लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन है।
0: That was Anil Sharma, the local MLA from RK Puram. He's reached the site as well. He's confirming now that there are students who are trapped under the debris. Yet there is no exact count of how many people we fear are trapped under this. But he has confirmed that there are students who are trapped under the debris. He's saying that an investigation is further underway to find out exactly what all is happening there. But you can see these visuals of NDRF also reaching the spot. Earlier, we also saw a visual of a cat which we spotted in the debris as well. So it's a loss of life there as well. We're seeing that the building collapsed within probably minutes or seconds, with sparing no time for anyone to escape. Right now we know that there are students who are possibly trapped under this, and we do not know how many people would be trapped. This is a mammoth challenge, also an uphill task for the rescue teams, because they would have to spot exactly where the missing people are. The time is running out. The building collapsed at 1:30 p.m. So now we're seeing that canine squads have been called in. In fact, ground machines have been called in, which can help in spotting where the missing individuals would be under the trapped debris. We're seeing a lot of fire teams and police people have also reached the spot. India Today has been reporting on this incident from the ground. So these are the visuals that we're getting in from our reporter as well. There are ambulances who have also reached. And before this, you just heard RK Puram MLA Anil Sharma, who confirmed that there were children who are trapped under this debris. He's in fact gone on to say that investigation is also underway to find out what exactly happened.
1: ये गाड़ियां भी पूरी तरीके से जो है मलबे के नीचे आ गई हैं। अब भारी मशीनों से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो जितना भी मलबा है, जितना भी लोहा यहाँ पे पड़ा है, उस लोहे को हटाया जाए और जल्दी से जल्दी निकाला जाए जो भी फंसे। आप देखें, एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये NDRF के जो अधिकारी हैं, ये नीचे झुक करके सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीचे से किसी तरीके की आवाज आ रही है तो उसे जल्दी से जल्दी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और जल्दी से जल्दी हटाया जाए। तो कहीं काफी ज्यादा जो है तनावपूर्ण अभी यहाँ पे माहौल बना हुआ है, काफी ज्यादा अफरी तफरी है, काफी कंफ्यूजन भी है लोगों में कि आखिर।
0: सो दोज वर द विजुअल्स दैट वी आर गेटिंग इन। इन फैक्ट यू कुड सी एन NDRF पर्सनल kneeling down and trying to hear if there are any sounds which are coming from particular spots from the debris, to find any signs of life, to find if any people are trapped under there. So there's a lot of confusion and chaos also happening at the spot, because there are a lot of people there. These are this is an area which is in near closer to DU as well. So you have now the confirmation from RK Puram MLA Anil Sharma, who spoke to India Today earlier and confirmed that there are students trapped under this debris. No count of them as of yet, but you could also see how it's a challenge to find missing people there.
4: चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे, तो उनके चांस मुश्किल है, बट उनकी सांसें चल रही हैं। और अभी भी इस मलबे के अंदर से आवाज आ रही है बच्चों की, बचाओ बचाओ। और ऊपर से अभी दो तीन बच्चे निकाले हैं, और अभी भैया कह रहे हैं JCB आ जाती, तो अगर JCB आ जाए सारा मलबा हटा देना तो ये बिल्डिंग और गिरने के चांसेस है, इसलिए वो सारा मलबा हटा नहीं रहे। और सारे पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे सबने, और सब बच्चों ने मिलकर यहाँ पे।
3: कितने लोग अंदर फंसे हैं?
4: कम से कम देखो 25-30 बच्चे थे, क्योंकि देखो संडे का टाइम है, सब बच्चे घर गए हुए थे। जो आसपास के बच्चे हैं ना, वो जो दूर दूर के बच्चे हैं वो संडे को घर नहीं जाते, जो आसपास के वो चले जाते हैं। तो और बॉयज PG था, साथ में गर्ल्स PG है, मतलब रेस्क्यू 4-5 बंदे करे हैं और 2-3 डेड बॉडी निकली है और बाकी अभी और निकलेंगे। ये कहता हूँ किस चक्कर में गिरा है, एक तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग लीज पे दी हुई है, और ये नीचे बेसमेंट बना रहे थे। अब बिल्डिंग ऊपर से तो मजबूत कर दी इन्होंने, नीचे पिल्लर वगैरह सारे कमजोर हैं, वो अपने रेंट की आमदन के लिए कि नीचे हम बिल्डिंग रेंट पे दे देंगे, उसके लिए उन्होंने मतलब बिल्डिंग वो कर रहे थे रेनोवेट, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरी है। और नीचे सारे मजदूर वगैरह काम कर रहे थे, वो सारे नीचे दबे हैं। और उसके बाद यहाँ पे शिव मंदिर है, उसके बाहर इस बिल्डिंग।
0: So that was a student's bite you heard, and you can see these visuals also of the moments from when the building collapsed. You can see that there's a lot of soot here from after the building collapsed. You can see people rushing out from the spot, and these are moments from right when the building had collapsed at 1:30 p.m. in the student area as well. And this is what we're getting in from the eyewitnesses from there. And there was a boys PG nearby which also captured this moment. So you can see after the building collapsed, there was a lot of smoke and suit which came in from the collapsed building. Dust, which you can see has been there, and people are trying to escape this. This is one of the moments that we're getting in from when the building had collapsed. One person is seen visibly rushing out, but you can see the amount of dust which came down heavily, because this was a building reportedly of 2 to 3 floors. It was a hostel where students used to reside. And a lot of students would be possibly inside the hostel today, given it was a Sunday. So no classes were going on at the moment. And this is the visual which is which we've got on India Today. And this is exclusive visual that we're getting in from the moment that the building collapsed happened at 1:30 p.m. And you can see how one person is running out of the building. But you can see the amount of smoke and the kind of dust that was in the area after the building had collapsed. Now, one of the students... previously, you could hear how he was alleging that there was also a basement which was being built in this very building and which weakened the possible foundation of the building, because of which we saw this collapse happen. But this is right at the moment the collapse took place of this building. And when we see that people are rushing out, there's a lot of dust which came in the area as the building came heavily down. And this is from one of the eyewitnesses who was living in the PG there, in a boys' hostel PG there. This was apparently a co-ed hostel. And before this, we also saw visuals of how the NDRF has now reached this spot. In fact, one of the eyewitnesses there mentions of how there are still sounds coming in from the debris of students shouting and crying for help. So there are people and students who are still stuck under the debris, and a lot of people are trying there to help these people as well. We also heard from the local MLA of RK Puram, Anil Mishra, confirming that students are in fact trapped under the debris. The exact count is not yet known, but in fact one of the eyewitnesses described how 2-3 people had been rescued, and he also mentioned that there were dead bodies seen in this area. These are all the details that are yet to be confirmed, but this is what the eyewitnesses from the area are telling us. India Today has been reporting on this right from the site with our reporters there on the ground, so we could get more details for you soon. But these are the visuals that are playing of the moments right from when the building had collapsed, and you can see that smoke came in. And before we show you more of what's happening on the ground, listen into what Anil Mishra, the local MLA, said.
2: बच्चे यहां पर अलग-अलग जगह से पढ़ने आते हैं जो यहां पर पीजी में रह रहे थे. एक बिल्डिंग वो कोलैप्स कर गई है और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है. बल्कि कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं अंदर से, और अभी बच्चे काफ़ी ऐसा लगता है कि बच्चे अंदर भी हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, भगवान से भी प्रे कर रहे हैं. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरी टीम भेज दी है, माननीय सांसद जी, माननीय हर्ष मल्होत्रा जी लगातार फ़ोन पे टच में हैं, वो पूरी सरकार इसकी से संवेदनशील है.
0: So that was the RK Puram MLA who's reached the spot, and he's saying that there are students who are trapped under this debris. In fact, one of the eyewitnesses mentioned of how we could still hear cries of students begging for help from when they are under this debris as well. This was a student area. This building collapsed near Shiv Mandir in Satya Niketan, Moti Bagh. The fire department then received an alert at 1:33 p.m. The building collapsed happened at around 1:30, and 12 fire tenders then rushed to the spot. And these are also the moments that we're showing you of when the collapse happened. You can see that the dust cloud is rising. People are attempting to run away from the site as well. And now rescue operations are underway.
1: पेरीमीटर बनाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हर आदमी जो यहाँ पे फंसा है, जो हर आदमी जो यहाँ मदद के इंटेंशन से भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटेंशन सिर्फ साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी रेस्क्यू में जो फोकस है वो आइडेंटिफाई करना लोकेशन और रेस्क्यू करना लोकेशन है. अभी देखिए एक एक एक बॉडी निकाली गई है, एक एक बॉडी यहाँ से निकाली गई है. अगर आप तस्वीरों में देखें यहाँ पे, अगर आपको ये तस्वीरें मिल रही हैं, तो एक बॉडी इस वक्त यहाँ से निकाली गई है और ये बॉडी को लाकर के सीधा यहाँ एम्बुलेंस में लोड किया जा रहा है. रहा है बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में जो बॉडी है वो है, हम शायद अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक एक और बंदे को, एक और आदमी को अभी यहाँ से रेस्क्यू किया है, लेकिन ये किस हालत में है, कि ये जिंदा है या इनकी मौत हो गई है, इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी अस्पताल जाएंगे, फिर अस्पताल में डॉक्टर जांच करके बताएंगे कि आखिर एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। तो आप देखिए कि कितना अफरा तफरी का और कितना
0: visuals that we're also getting in of the rescue. You could see that one person was being rescued there, but the visuals are horrifying, and the kind of visuals that we're getting in from the spot. But rescue operations are underway. Multiple people are now being removed from under the debris, and then they are being sent straight to the hospital so that they can be attended to. But so far,
1: क्योंकि एक ही ऐसे एक ही लॉन्ग वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड में कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने घर चले जाते हैं, आसपास के राज्यों से आते हैं, तो 3-4 दिन की छुट्टी थी। जो
0: then rescued at least 3 people. Some of the visuals that we've also been showing you, eyewitnesses say more people have been pulled out, but according to the fire department, we are saying that 4 stories high building collapsed.
1: लाजमी सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में जो आम जनता का गुस्सा होता है, वो गुस्सा जो इमोशन होते हैं वो काफी हाई चल रहे होते हैं, गुस्सा काफी ज्यादा होता है। खुद काम करके ये चाहते हैं कि लोगों को निकाला जाए, लोगों को निकाल सके, इनकी मदद कर सके, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी मदद होगी यहाँ पर जो NDRF की या रेस्क्यूअर्स की यहाँ के आम जनता कर पाएगी, वो ये है कि इस जगह को खाली छोड़ दिया जाए ताकि आराम से ये काम किया जाए। लेकिन बेचैनी है लोगों में, ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिर उनके दोस्त किस हालत में है, क्या उन्हें निकाला भी गया है अभी तक यहाँ से या नहीं निकाला गया है, कहाँ कहाँ फंसे हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने बच्चे थे, वार्डन था और अन्य कितने लोग थे। तो ये काफी बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई किसी भी तरह की जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो नहीं मिली है। आपको मैं दोबारा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि आप देखिए, अब जो ड्रिलिंग मशीन से हाथ से ड्रिल करके जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जो मेटल के पीसेस हैं उन्हें काटा जा रहा है, हथौड़े की मदद से भी उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो काफी तेजी से जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन लोकल्स का ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस को आने में काफी समय लगा, फायर डिपार्टमेंट को भी आने में काफी समय लगा, और अब JCB भी अभी पहुंची है जिसने थोड़ा बहुत आगे से मलबा हटाया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पे ये जो कार्रवाई है ये करके ये सुनिश्चित कर पाए कि अगर कोई इस मलबे में अभी फंसा है तो उसे सुरक्षित और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालकर अस्पताल में एडमिट किया जाए।
0: So now we're seeing that JCBs have reached the spot. There's also manual drilling being done to take out any people who've been trapped under the debris here. But horrifying visuals coming from the spot where at least 2 to 3 people would have been rescued so far, and even some dead bodies being spotted according to eyewitnesses. In fact, the RK Puram MLA has said that students who've been trapped inside the debris are making phone calls from beneath the debris. And multiple disaster management teams, MCD and police are right now leading the rescue efforts. The MLA also says that the administration's top priority is to rescue all trapped students inside the building. So we are now learning that this is the information. With that, it's time for a short break. We have much more of these visuals coming in, so stay tuned.
5: You are watching India Today.

0: एक भी बात उन्होंने ना अच्छी कही है और बड़े अदब से कहूंगा ना सच बोला है। उन्हें ऐसा एहसास है कि आज देश का माहौल उनके खिलाफ है। हिंदुओं को मुसलमानों को यह एहसास हो गया है कि वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके का भाषण दिया कि हमारे खिलाफ जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया और मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या काम किए हैं। इस तरीके का भाषण था लोगों को गुमराह करने वाला।
1: हमने देखा कि मोदी जेन जी के लोगों से मिला श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो धक्का पहुंचा सीजेपी का आंदोलन के बाद, जहां उनको शिक्षा मंत्री का पद तक लेने पड़ा। मेरा लगता है कि जेनजी सारा देश में बीजेपी के सरकार का खिलाफ है। दो बार मिलने से ये मेकअप नहीं होगा।

आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो, व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सबको हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सबको हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर जल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।

0: welcome. You're watching Pollution Car Solution on India Today's campaign, where we are looking for an innovation that has the capability to change the fate of Delhi's air. Because we believe in finding solutions rather than lamenting over and over on the problem. So we say, Delhi aapki, solution bhi aapka. The story so far, we invited Delhi's Environment Minister and Honorable Chief Minister in the presence of our esteemed jury to launch our campaign against Delhi's air pollution crisis. And since then, we haven't looked back. We have been flooded with responses. Hence, we decided to share some of them with our audiences today. To begin with, most of us believe that air pollution is entirely about what comes out of the vehicle's tailpipe. But did you know that tire and brake wear also generate significant particulate matter that is usually ignored? Now, well, not all of us were unaware of this. Anvi Singh, 13-year-old student from Navi Mumbai, who's proposed something called tire particle collector that can be fitted near the wheels of the vehicles. This device would use the airflow around the moving wheel to guide some of these particles into a smaller filter. To keep it low cost, we can use stainless steel mesh as the first layer to catch bigger particles and a reusable fine filter as the second layer so that local residents can clean and reuse it multiple times. While she got us all thinking with her idea, we came across a scientist based in Delhi, Mirza Arif, whose innovation Polred claims to capture even these non-exhaust vehicle pollution.
1: मैं एक इनोवेटर हूँ. मेरे 16 आविष्कार हैं. मेरा 16वां है, 16th invention है. और पिछले तकरीबन 14-15 साल से मैं एयर पोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. दिल्ली की आबादी रोज बढ़ती जा रही है. 18 लीटर को एक आदमी CO2 ही रिलीज कर देता है इतनी आबादी में. इसलिए बहुत सारी चीज ऐसी, और एयर पोल्यूशन कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है कि आपने खूब मारी और वो खत्म हो जाएगा. एक डिवाइस बनाई मैं पॉलरेड के नाम से. टाइटल इसका रखा हमने प्रोडक्ट नेम पॉलरेड, पॉल्यूशन रिडक्शन डिवाइस. वैसे इसका पूरा नाम है मल्टीपर्पज एयर पॉल्यूशन एंड हीट रिड्यूसर डिवाइस. इसमें बात क्या है कि जो पार्टिकुलेट मैटर वो किसी भी किस्म का हो, चाहे मड हो, सॉइल आई मीन मट्टी है, धूल है, राख है, या सिगरेट के बॉड्स है, या कोई चीज बाहर सड़क पे हमने फेंकी है, मेटल पार्टिकल्स हैं, या जो हमारे व्हीकल्स पे और चलते हैं, कुछ वो नमकीन वगैरह खाते हैं उसके पैकेट फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए. वो सारा रब होता है सड़क पर और फिर उसके पार्टिकल बन के हवा में मिल जाते हैं. ये सारे पार्टिकल जो रोड पर है, रोड डस्ट में है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कहीं कहीं गोबर भी आ जाता है सड़क पर, जिस तरीके से हमारा जानवर भी है. ये सबका जो ये पार्टिकल्स का पूरा एक मजमुआ है, इकट्ठा हो गया, ये बंच बन गया, वो डिवाइस चलते चलते ऑटोमेटिकली बस इसमें सक कर रही है. जब हमारी बसें चलती हैं या कारें या मोटरसाइकिलें तो टायर घिसते हैं. आपको हैरत होगी कि दिल्ली दिल्ली में 1,00,000 किलो रोज टायर घिसकर हवा में मिल जाता है, 1,00,000 kg. इस रिसर्च के बाद ही इसके डिवाइस के मैंने फिल्टर उसी हिसाब से डेवलप किए हम लोगों ने मिलकर. जो पार्टिकल्स डिवाइस ने अरेस्ट किए हैं, अब तक मेरी नॉलेज में जितनी भी डिवाइसेज हैं मैंने देखी और स्टडी किया है, उसमें जो भी फिल्टर है, जब उसका फिल्टर चोक हो जाता है तो आप उसको बाहर फेंक दो या उसको झाड़ कर हम उसको धोकर यूज कर ले. उसको ख्याल में रखा तो जो भी पार्टिकल एनवायरमेंट से डिवाइस ने कैप्चर किया वो वापस कभी एनवायरमेंट में नहीं जा सकता, नॉट इवन गैसेस. तो यहाँ ये ब्लोवर में पाइप है जहाँ से ये सक करेगा, एयर को कर रहा है. और इस साइड में अगर आप दिखा सके कैमरे से, देखिए बहुत छोटी सी मोटर है, यहाँ से दिखाई देगी. इस बस में यहाँ से पानी डाला जाता है ताकि जो पार्टिकल इकट्ठे हो जाएं ऊपर से, वो यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएं यहाँ पर आके. ये वो जो आपको गंध इसमें कीचड़ दिख रही है, ये सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें धूल मिट्टी राख, जूते जो लोगों के घिसे हैं सड़क पर, जो टायर घिस रहा है, जो ब्रेक शू घिस रहे हैं, वो ये सारी गंदगी निकल कर इसमें आ रही है. आप ये देख रहे हैं जो हवा.

0: और क्लीन करके दे रहा है और पार्टिकल्स ये स्किन में है जो आपने अभी देखे।
1: ये सब जो ब्लैक कलर है ये सारा टायर, ये पार्टिकल जो है ये पॉलीमर पार्टिकल्स हैं और ये तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी कीचड़ अंदर से निकला है। इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक कई लेयर्स हैं फिल्टर्स की, अलग अलग जगह पर, यहाँ से यहाँ तक 7 जगह फिल्टर होता है। एक आखिरी फिल्टर, ये सारे पार्टिकल्स नीचे पानी में कीचड़ में चले जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई धुआं, जिसका धुएं का तो धब्बा आएगा, पार्टिकल तो नहीं है, अगर वो है भी तो उसको हमने ये कि डिवाइस को खोलना ही ना पड़े। ये बिल्कुल नट बोल्ट फ्री एक सिस्टम बना है और इसमें ये आप फिल्टर देख रहे हैं। अब ये 2 जून को डिवाइस लगी थी, आज 27 अगस्त है, तो पूरा जून जुलाई अगस्त 3 महीने बाद भी ये फिल्टर की पोजीशन है कि इस पर कोई डस्ट पार्टिकल ज़्यादा दिखना। ये देखिए, मैं से भी कर रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ये सिर्फ जो सड़क का धुआं था उसका हल्का सा काला धब्बा आया है। तो अभी अगर कभी हमें करना भी पड़ता है 2 महीने या 3 महीने में या मंथली, तो हम सिर्फ हमें ये इसका फिल्टर चेंज करना होगा, वो भी अंदर वाला, ये फिल्टर, ये बॉडी ऐसी रहेगी।
2: हम अपने पैसेंजर्स को अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000, 3,000 से 4,000 लीटर पर मिनट क्लीन एयर दे रहे हैं। अगर एक बस दिन में 12 घंटे चलती है सिर्फ एक बस, तो मोर देन 2 मिलियन लीटर एयर जो है वो साफ कर रहे हैं दिल्ली की और फिर पब्लिक को दे रहे हैं और पार्टिकल और गैसेस को डिवाइस से कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ 10,000 या 12,000 या 8,000 या 10,000 मान लीजिए 10,000 बसें हैं, तो 2 मिलियन to 3 मिलियन लीटर अगर एक बस हवा को साफ कर रही है, तो आप सोचिए कितनी बड़ा एरिया हवा का से साफ हो सकता है। क्योंकि ये दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना बहुत जरूरी है, कि ये है हमारा दिल्ली के लिए सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन।
3: Many of you have highlighted another important factor, that is vehicle idling at signals. Anvesha Singh from Tonk calls it Project Zero Idle Delhi, and Delhi's Chirag Raghuvanshi says Zero Idle aims to turn traffic lights into a system that manages emissions. It uses items already in place like CCTV feeds, signal timings, and even other sensors. Countdown timers also help. The system uses AI to forecast how long a driver may wait. It then estimates how much time a vehicle will stay idle along with fuel use and emissions. The signal plan can be adjusted with this data. One such innovation is Atmos Pole, currently on a testing stage at Delhi's Rajghat. Sanjay claims his innovation not only cleans Delhi's air, acts as a surveillance device, but also adds to the modernization of India's capital, Delhi. Take a look at this report.
4: My name is Sanjay Komera. I'm Axel One American company ka CEO. And Axel One is primarily a climate engineering company focused on solving pollution problems like what we are seeing at Delhi. I come from IT, almost 22 years digital transformation kiya hu US mein, and uske baad started Axel One because I was always passionate about solving bigger problems, and right now around the world the biggest problem is sustainability, primarily on pollution and the water. So founded this company 4 years back. I came to know about India Today's solution or initiative on pollution ka solution, and very happy to kind of talk to you, talk to India Today, and more importantly, aap logon ko solution jo Rajghat mein deploy kar rahe hain, wo solution dikhane ke liye hum log jayenge, we'll go there. Hopefully, whatever India Today is pursuing on pollution ka solution becomes a reality very soon. Delhi has got a lot of greenery, and in spite of that, you know, it is one of the highest polluted cities around the world. So when I've been spending almost 3 months in Delhi, and primarily what I've seen is we need a lot at ground level analytics, ground level information. Hum logon ko chahiye ki kya kya pollutants hai, kyun itna pollution ho raha hai, कौन से स्ट्रीट्स है जिसमें ज्यादा पोल्यूशन है।

अभी हम लोग राजघाट में हैं, ये नया टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन राजघाट में पहली बार हो रहा है, आई मीन दिल्ली में पहली बार, इंडिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार, एंड ग्लैड टू ब्रिंग इट टू दिल्ली। सो अभी टेस्टिंग राजघाट में चालू है, इट्स ऑलमोस्ट लास्ट फोर वीक्स वी आर डिप्लॉयड अबाउट 23 पोल्स। आई वुड कॉल इट एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेट एनवायरमेंटल नोड। Basically, the idea behind that was, you know, we have all these street lights that don't do anything, right, except giving you the light. So what we thought was, primarily cities like Delhi requires pollution control at street level. So what we thought was, why don't we convert the traditional street lights into the urban street lights? So aap jo dekh rahe ho, isme it has got almost 4-in-1 function built into it. The primary biggest function is environmental cleaning. So it actually tells you kitna pollution levels hai, and also it tells you how much of pollution reduction the individual street light has done every day. So you see the metrics every 5 minutes. It's real-time data. हम लोग इसको डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डायरेक्ट एयर लेमन टर्म्स में आपको जो हवा ऊपर से खींच के, इट गोज थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जाके आपको साफ हवा बाहर से निकलता है नीचे। एंड मिस्ट ऑपरेशन वी जस्ट एडेड, लुकिंग एट दिल्ली में जितने भी डस्ट लेवल्स ज्यादा है ना, सो मिस्ट इज डेफिनेटली हेल्पफुल to reduce your dust levels, which is PM10 and PM2.5. We have security surveillance built into the pole, and we have solar. This entire pole is solar powered, in future all the poles will be renewable powered. So technically a net zero pole ho jayega in future. And also this has Wi-Fi. Every pole has got Wi-Fi built into it. In future our goal is to kind of connect people with the infrastructure that we're laying on the ground. So hamara jo initial calculations abhi hai, looking at jitne bhi air flow ho raha hai fan ke saath, so every pole can support clean air to 2000 people per day. So that's a mathematical calculation, and we would be happy to share that with you guys on how we have done the calculation. So that's assume that every pole gives clean air to 2000 people per day. I will show you right now how beautiful it looks in the night.

0: Some of you have also written to us on how pollution hotspots in Delhi should be identified and the work should begin from that point. But others have also said that every nook and corner of Delhi's roads is a pollution hotspot. In our next story, Kolhapur-based Brothers aim to solve the problem by deploying stronger air filters on footpaths, traffic signals and roadsides. Their innovation, Pavan 3, they say is a tried and tested technology straight from Kolhapur, which will strengthen Delhi's fight against its poisonous air.
1: मेरा नाम प्रतिराज कुमार है और मेरा भाई सुमित पवार, हम दोनों फाउंडर्स हैं इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। सिर्फ एक रूम के स्केल के ऊपर या क्लोज एनवायरनमेंट में ना रह के वो ऑन ग्राउंड दिखे, ऑन राउंड वो पोल्यूशन को कम करे, एयर पोल्यूशन को, और वो अच्छे रिजल्ट्स दे। मतलब पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो है, एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट, वहाँ पर वो लगे और रोड साइड डिवाइडर के ऊपर लगे, रोड के ऊपर लगे। तो इस तरह से हमने ये डिवाइस बनाया है पवन 3 करके। ये जो इनोवेशन है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी लग चुका है और जो कोल्हापुर में लगा था वो उसे ये पता चला है कि रिजल्ट जो है वो 29% से ऊपर आए हैं। जो AQI में रिडक्शन कह सकते हो या फिर PM 2.5, PM 10 में रिडक्शन कह सकते हो, वो 29% से ज़्यादा आए हैं। पर वो पवन 1 डिवाइस है, ये अभी पवन 3 सीरीज चल रहा है, तो हमें लगता है कि इसके रिजल्ट जो है वो मे बी 40% पार कर जाए एयर को AQI रिडक्शन के मामले में और PM 2.5 के मामले में। ये जो पवन 3 नामक डिवाइस है ये हाई सक्शन डिवाइस है। इसमें एयर आगे की तरफ से सक होती है, इसके अंदर मल्टीपल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन है। इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हैं, जब अंदर हवा इसके जाती है तो हेपा फिल्टर से पास होके ये हवा मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन में प्यूरीफाई होके ये लास्ट में कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें से पास होके पीछे से निकलती है मशीन के, जिससे AQI में और PM 2.5, PM 10 में रिडक्शन आता है। इसका मेंटेनेंस जो है वो हम बाई वीकली करते हैं, 14 दिन में कोल्हापुर में करते थे, तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन मतलब ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें इसका मेंटेनेंस हमारे हिसाब से हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा। ये जो पवन सीरीज चल रही है इसका कॉस्ट जो है वो 5.5 लाख से चालू होता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बहुत रहता है। पर क्या है कि कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये डिवाइस कौन सा है, उसमें फिल्टर्स कौन कौन से लगेंगे, एक जगह के ऊपर कितने डिवाइसेस लगेंगे, एयर का फ्लो कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इस तरह से हम उसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं कि कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा, कौन सा फिल्टर अच्छा रहेगा, इस तरह से उसका कॉस्ट जो है वो चालू होता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को मतलब बहुत अच्छा चांस दे रही है, तो मेरे हिसाब से जो बाकी के कंट्रीज़ के सॉल्यूशंस हैं वो शायद उनके कंट्री में अच्छे होंगे। ये इंडिया का जो सिस्टम है इसके तहत इसके लिए मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया ऐसा हमारा सॉल्यूशन है। अभी आप ये पवन 3 डिवाइस देख सकते हो, ये दिल्ली में कीर्ति नगर में लगा है, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है कीर्ति नगर में, फिर भी ये चल रहा है, ऐसे ये 3 महीनों से चल रहा है। तो हमने इस डिवाइस को इसी तरीके से बनाया कि जो इंडियन क्लाइमेट को सूट करे और जो रफ एंड टफ हो और जो एंटी थीफ हो, हमने इसको फिट किया है ताकि ये चोरी ना हो सके। दिल्ली के बारे में मेरा यही कहना है कि दिल्ली का पोल्यूशन आपको जल्द ही कम होते हुए दिखाई देगा अगर ग्राउंड इनोवेशंस को वगैरह मतलब चांस अच्छा दिया जाए तो। इंडिया टुडे नेटवर्क को और दिल्ली गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं क्योंकि एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया और हम इस कैंपेन को सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं देखते, या फिर सिर्फ एक मतलब क्लोज आइडिया नहीं देखते, हम इस कंपटीशन को ऐसा देखते हैं कि हम इस कंपटीशन के जरिए, इस कैंपेन के जरिए जो इंडिया टुडे लॉन्च किया है पोल्यूशन का सोल्यूशन, इसके जरिए हम भारत के कोने कोने में पहुँचे और इनोवेशन जो है, जो हमने किया है, वो भारत में पता लगे कि एयर पोल्यूशन कम हो सकता है, ऑन फील्ड ऑन रोड पोल्यूशन के हॉटस्पॉट को टारगेट किया जाए तो कम हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं।
0: And well, everything said and done, we are overwhelmed by how so many youngsters have come up with the solution they thought would prove to be useful. Two such innovators in their early 20s who met at a coffee shop decided to join hands and use science at its best. They claim to build one of India's first indigenous microalgae-based air purification systems. Take a look at this report.

0: हाय नमस्ते, माय सेल्फ सिद्धांत कुमार निषाद और मैं लखनऊ यूपी कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। मैं जो स्टार्टअप है मटियारी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली मटियारी जो है वो गांव से है मेरे, तो मेरा बैकग्राउंड आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मैंने अपनी पढ़ाई जो है अपनी कम्प्लीट यूपी में ही की।
1: आई एम तेजस, आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बीड महाराष्ट्र एंड आई एम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन एंड आई हैव डन बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम पुणे and then I also completed masters from IIT Dhanbad when I met with Siddhant at a coffee shop. It was a very random meetup, but when he explained his startup idea, like he is working from 5 years in this field of algae bacterium for like for sustainability and ecosystem and all, then I got some feeling that okay, this is something about my background or my field, so why can't I join this?
0: वी कम्स फ्रॉम अ टीयर थ्री टीयर फोर कॉलेजेस एरिया, सो जहाँ से इतना इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ कि स्टार्टअप चल जा पाए, स्टार्टअप इतना आगे जा पाए। दिल्ली कंसटेंटली वी लुक एज अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप और यंग स्टार्टअप, वी लुक एज अ अपॉर्चुनिटी।
1: दिल्ली हमारी राजधानी है लेकिन उसका मतलब इससे कहते हैं मतलब कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा दिल्ली में है वर्ल्ड में भी, इसमें भी। सो लाइक हम क्या सोचते हैं अगर हम दिल्ली को क्रैक कर पाए पोल्यूशन कंट्रोल में बाय आवर प्रोडक्ट by support of all the government and all the initiatives, agar hum Delhi ko crack karte it will be a milestone for everyone. We are here in Delhi as in ISBT of Anand Vihar terminal and here is our demo prototype where we are keeping this for like at least 1 month and all, like where we got tested positive for like minimizing the PM2.5 of carbon particle.
0: Not only हम एक हवा को साफ करें बट हम एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। बेसिकली मेरा जो फंडामेंटल है ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो ब्रेन फटीग होती है, जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन होता है, बेसिकली वो उसकी वजह से नहीं होता है कि वो बहुत देर तक पढ़ रहा है, बहुत देर तक वो बैठा है एक जगह। द प्रॉब्लम इज कि ब्रेन हमारा काम मतलब स्लो डाउन हो जाता है जस्ट बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन इतनी मात्रा नहीं होती है। इंडोर के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था ये, बट उसके बाद ये आउटडोर के लिए भी हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इंडोर के लिए जब हुआ था तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करें, ना कि केवल एक ऑक्सीजन एक एयर फिल्टरेशन हो। आपके घर में एसी है वेल एंड गुड, उसको एयर तो साफ हो रहा है, बट वॉट इफ अगर हम एक एड ऑन करें दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही इस चीज़ को लाने के लिए ये काई टेक्नोलॉजी आई, और काई बहुत ही हिंदी नेम है, हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में सुटेबल होती है।
1: हमारा जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिल्टर करता है? पेड़ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी जो है वो भी उसी इस पर वर्क करता है। अगर आप अभी हमारे घर पे एयर प्यूरीफायर रखते हैं इट विल ओनली फिल्टर द एयर, एज सिद्धांत मेंशन किया, वो सिर्फ एयर प्यूरीफायर करेगा नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन लेवल बढ़ रहा है, ग्रीनहाउस आउटपुट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका सोल्यूशन कहाँ पे है? सो हमने ऐसा डिजाइन किया है कि अगर हमको प्यूरीफाई करना है सो वाई नॉट वी एडेप्ट द क्लाइमेट टेक, मतलब जो भी नेचुरल जो उसमें एनवायरमेंट में है उसी को अडेप्ट क्यों ना करें। तो उसमें हमने जो रिसर्च किया देन वी गॉट टू नो डैट मतलब कि एल्गी जो है एल्गी नेचुरली फिल्टर करते हैं और नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है एंड ऑक्सीजन लाइक एक्सहेल करता है जो वाटर है इसमें। हमने उसमें एक स्पेसिफिक एल्गी मिक्स किया है एक प्रॉपर मतलब फॉर्मेशन में,
0: एयर प्रॉपरली नॉर्मली तरीके से आ रही है, हमने पंप लगाया सो इसको फीड कर रहा है इस रिएक्टर में। सो बेसिकली जो रिएक्टर फीड हो रहा है वो गैसेस हैं, जो पार्टिकल हैं वो पहले ही सेपरेट हो जा रहे हैं, तो जब सेपरेट हो गए वो गैसेस अब जा रहे हैं, तो गैसेस फिर उसमें अंदर जाके रिएक्ट हो रहा है। अभी जो एक इन्फॉर्मेशन आपको जो जनरलिटी मिलेगा कि 10-15 पेड़ को बराबर है, दैट कैन नॉट बी क्लेम, अभी ऐसे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इसकी क्या ऑक्सीजन जनरेशन वो पूरी टेक्नोलॉजी टेक अलग है। हार्डली इसका कॉस्ट 50,000 से 1 लाख के नीचे रहता है इसकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड इसको जो सेलिंग कॉस्ट आएगी वो चली जाएगी 1.5-3 लाख तक चली जाएगी एज पर द लॉजिस्टिक। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें मैन पावर देखना होता है। बेसिकली अभी तो हम 8-9 पीपल रन कर रहे हैं जो कोर मेंबर है। आई वुड लाइक टू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन का सोल्यूशन फॉर इंडिया टूडे इनिशिएटिव एंड अगेन दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वंडरफुल जॉब रेखा मैम एंड मजिंदर सिंसा सर और DPCC POC अहम डोले सर डायरेक्टर एंड नरेश सर एंड द सबऑर्डिनेट संदीप सर, दे ऑल आर कोऑर्डिनेट वेरी वेल. हमने इतने बड़े स्केल पे कभी वर्क नहीं किया, ना कि मैंने कभी ऐसा सोचा, बिकॉज एज अ एकदम यूपी ईस्ट एज ऐसे जगह से आना जहाँ पे ऐसे इको सिस्टम नहीं है, और यहाँ तक अचीव करना इट्स वेरी वंडरफुल.
2: Well, it takes a village to solve a problem, and that is what we at Aaj Tak in India Today intend to do. It's a community that can bring a change we desire, and with what we saw today, I'm sure we can all be a little hopeful. Before we go, please do not stop flooding us with your innovative ideas. Be assured our jury is on it, and Delhi government is also waiting to implement them in Delhi. To send us your ideas, do scan the QR code on your screens, and let's bring back the air we all deserve, kyunki Delhi aapki, solution aapka.

0: उनके ऊपर पैलेट गन चला करके, उनके ऊपर गोला और जो है बंदूक चला करके विद्यार्थियों के बीच में जो है विकसित भारत का सपना बेचने के लिए गए थे, मोदी जी आप अशिक्षित रह गए। दुख है इस बात का, देश अशिक्षित नहीं रहेगा और शिक्षित भारत से विकसित भारत बनेगा। फेल विद्यार्थी को बढ़िया टीचर बोल देने से पीआर हो सकता है, उस टीवी कंपनी को सरकार की तरफ से कुछ प्रचार मिल सकता है, एड मिल सकता है, देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा जब इस देश के विद्यार्थी आत्महत्या करना बंद करेंगे, इस देश के किसान आत्महत्या करना बंद करेंगे।
1: हमने देखा कि मोदी जेन जी के लोगों से मिला श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो धक्का पहुंचा सीजेपी का आंदोलन के बाद, जहां उनको शिक्षा मंत्री का पद तक लेने पड़ा। मेरा लगता है कि जेन जी सारा देश में बीजेपी के सरकार का खिलाफ है, दो बार मिलने से ये मेकअप नहीं होगा।
2: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
3: A five-story building right in the heart of the national capital that just comes down collapsing on a Sunday afternoon. And several continue to remain trapped underneath its debris. That is the story, viewers, that we're following for you on India Today. A very good evening to you. However, it's an unfortunate circumstance under which we bring to you this very story. This is me, Sriya Kundu. We'll be taking you through all the developments in this very hour's bulletin. First, let's start with the headlines. The five-story building collapses in South Delhi's Satyaniketan. Two dead, several others feared trapped under the debris. Chief Minister Rekha Gupta reviews on the ground situation where massive rescue operations are now underway. Delhi police registers an FIR against the building owner Anand Bansal. Cops say the five-story building was 40 to 50 years old. A medical shop was running in its ground floor while its upper floors were used as the PG facility. Repair work was underway at the basement at the time of the very collapse. BJP chief Nitin Navin hits out at the opposition over Prime Minister Modi's SRCC address, as the naraz pufas of the opposition were hit hard by the Prime Minister's homeopathy jibe.
4: हम सभी ने देखा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के अंदर, समाज के अंदर असंतुष्ट रहते हैं, जो कभी भी किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। उन्हीं को उन्होंने एक नाराज फूफा करकर संबोधित किया।
3: Right wing goon Swatantra Bhardwaj sent to one day judicial custody. Teen protester claims Swatantra supporters have been abusing and threatening her. Another complaint has been filed against the victim and teen protester, alleging insult to the Hindu gods. Man allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area captured on camera. Eyewitness says victim was attacked with lathis and sticks. Cops launch a manhunt for the suspects. Vijay government in Tamil Nadu shortlists two new sites, Manilore and Cheyur, for the airport. This after the Parandur airport project was dropped. Government recommends two new sites for study to Airport Authority of India.

0: to prevent this from happening in the first place? That is the biggest question. But now,
1: the pillar jo hai wo hila aur wo puri building dheh gayi. PG ke naate ye building kaam kar rahi thi, bacche iske andar the. लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए. रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा. सभी अधिकारी यहां उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूं. मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूं.
0: So, viewers, the Chief Minister now currently, as she has been on the ground for the last 1.5 hours, in fact, 2 hours almost as we speak, she's come out to reveal that she's on her way to the hospital now and she will take a stock of the situation there, the medical treatment that each of those who have been rescued so far are receiving. At, remember, earlier we were bringing to you information about how many of them have been taken to AIIMS Institute, and that's where they are receiving medical treatment. Anmol Bali continues to stay with us. Anmol, one question that we've been harping on and going on and on at this given point, and simply, we'll get that connection rework. But yes, viewers, to finish the point that I picked up here, I know it might sound repetitive at this time as we speak that there is a PG mafia that was in the works. The unfortunate part here, and the reason we're reiterating this, is simply because the question is about what has the cost of human life come down to? Why is there no wake-up call that had served to the authorities when there was a collapse that had taken place in the end of the month of May itself, which had claimed 6 lives in it? Why is it that Delhi has to witness another such deadly collapse and then only hope that this, in fact, turns up to be a wake-up call instead of another disaster in the making taking place a few months from now? These are the questions that continue to remain. Of course, there is no doubt that those who are responsible will be punished. This man, Anand Bansal, but there are the number of Anand Bansals who are out there right now in Delhi, that is the point that needs to be focused upon here. How many Anand Bansals do you know of who do have their homes in different parts of NCR, but they run such paying hostels in such...
2: कड़ी मशक्कत की जा रही है. जो तमाम जो यहाँ पर आला अफसर है वो यहाँ पर मौजूद है और आधा मलबा लगभग निकाला भी जा चुका है. आधा मलबा निकाला जाना बाकी है. 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है. दिल्ली की सीएम वो यहाँ पर आई थी. उन्होंने कहा कि जो आनंद बंसल मालिक है वो भागा हुआ है. वो बिल्डिंग जब गिरी तब वो भाग गया. जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस, रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा. तो क्या एक्शन के नाम पर जो एमसीडी का इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उसको सस्पेंड करके खाना पूर्ति की जाएगी? क्योंकि सस्पेंड होने के कुछ दिनों बाद तो वो फिर से वापस नौकरी पर आ ही जाता है. कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई ऐसा ड्राइव चलाएगा, दिल्ली सरकार चलाएगी, जहां स्टूडेंट हो, जो अवैध निर्माण हो, जो अवैध पीजी हो, जो अवैध कोचिंग हो, जो अवैध होटल हो, जो एसएचओ रिश्वतखोरी करते हैं, जो एमसीडी के अधिकारी रिश्वतखोरी करते हैं और धड़ल्ले से इस तरह का अवैध निर्माण चलने देते हैं जिसमें जब हादसा हो जाता है तो लोगों की मौत हो जाती है, क्या उन पर एक्शन हो गया? क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है राजीव.
0: So Arvind Oja bringing us those reports and insights into this very story. And as we speak, viewers, you can see the cops and the coordinated efforts of the rescue teams continue. There are several teams at that very spot as we've been speaking for the last couple of hours, 6 hours since the incident has come about, and roughly 4 hours since we've seen, 4 to 5 hours since the rescue operations have been working. What Arvind Oja was also pointing out at is from the heap. Let's listen into the cops first, viewers.
3: रफली 1:30 बजे के आसपास हमारे पास PCR कॉल आती है कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है शांति निकेतन के एरिया के अंदर. हमारी इमिडिएटली जो SHO हैं और जो उनके साथ जो स्टाफ था उसने रश किया. यहाँ पे आके पता चला कि ये बच्चों का PG था जिसकी बिल्डिंग एक कोलैप्स कर गई थी. उसको इमिडिएटली देखते हुए सिचुएशन को NDRF को वो बुलाया गया. बाकी जो फायर सर्विसेज की टीम थी, बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कैट्स की एम्बुलेंसेज, सबको एकदम इमिडिएटली इन्फॉर्म किया गया. उसके बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें 9 बच्चे जो थे उनको अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया अलग अलग. 3 बच्चे उसमें से अनफॉर्चुनेटली ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए हैं, तो 6 बच्चे अभी उसमें बचे हुए हैं. उनसे स्टेटमेंट ली जा रही है कि क्या इंसिडेंट हुआ.

0: हुआ था क्या हुआ था, बाकी जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें लिया जाएगा और उस पर आगे कार्रवाई चल रही है। ओनर की डिटेल्स अभी निकाली जा रही हैं, सब चीज हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और जल्दी उसको इसमें अरेस्ट कर
1: दिया जाएगा।
0: वो एक बार हम अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, हम उसमें आइडेंटिफाई करके आप लोगों को बता
2: रहे हैं। अभी हो सकते हैं आशंका है,
0: अभी रफली जो बच्चे थे एक दो जिन्होंने बताया उन्होंने 15-16 के आसपास शायद बताया था, अभी एग्जैक्टली पर किसी को इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसलिए बताना वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं होगा कि कितने अंदर थे कितने नहीं थे। टोटल 9 बच्चे थे जिनको अभी तक हमने रेस्क्यू कर लिया है, फर्दर अभी आपके सामने ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें चले। हाँ, FIR हम इसमें रजिस्टर करवा रहे हैं और जो एक्शन लेंगे वो उसमें नेग्लिजेंस के अगेंस्ट हो जाती है, उसके अंदर जो FIR होती है।
2: ठीक है, जिस समय बिल्डिंग गिरी है बताया जा रहा था नीचे काम चल रहा था, लेबर भी थी तो कुछ में लेबर दबे होने की
0: बात, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है सारा का सारा, तो एक बार हम उसमें इन्वेस्टिगेट करके बता देंगे आप सब लोगों को जैसे भी फर्दर अपडेट होगा। ठीक है, थैंक यू,
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: So that is the police coming out to, in fact, give us the latest updates with regards to this rescue operation continuing. They've said that they got an idea from those who've been rescued so far that around 15 students were in the PG, but at this given point, it's still difficult to ascertain the number of people who still continue to remain stuck underneath the debris. Because remember, the collapse has taken place. There could have been people walking by that very house who've also come underneath the very debris itself. So there are several aspects being looked at. The prime importance and the priority is all eyes are on the rescue operation at this given point. Several questions mounting that we'll also be bringing to you. Right now, let's listen into the Chief Minister's first response as we speak.
4: एजेंसीज काम कर रही है, हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों की जान बचाना जो हो सकता है अभी भी अंदर फंसे हो। 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, उनमें से सबकी हालत जैसी है उसको समझने की जरूरत है। और इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
3: On that note, Sushant Mehra joining us on the broadcast with more details as our team of our reporters are currently on the ground bringing us these latest updates. Sushant, very good evening to you. सबसे पहले अभी कुछ देर पहले जो पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हमें बात करते हुए बता रहे थे कि मलबा काफी हद तक हट गया है, और अरविंद भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि मलबा जो है वो ऑलमोस्ट हाफ जो लेवल है मलबे का वो हटा दिया गया है, अभी भी और एक हाफ हटाना बाकी है। तो अभी इस मुकाम पे और कितने लोग एस्टिमेट लगाया जा सकता है अभी भी उस मलबे के नीचे दबे पड़े हैं?
5: देखिए, मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि ये 5 मंजिला इमारत थी, लगभग 50% के आसपास मलबा जो है वो हटाया गया है, जो कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है लगभग अगर माना जाए तो 50%, यानी 2 से 2.5-3 मंजिल के आसपास मलबा जो है वो अब तक हटाया जा चुका है, लेकिन अभी 2 मंजिल के आसपास मलबा अभी और दबा है। और अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 3 की कैजुअल्टीज पूरी मामले के अंदर हुई है। इसके अलावा अभी और भी कई सारे लोग जो हैं वो दबे हो सकते हैं, क्योंकि नीचे मेडिकल स्टोर चलता था, बेसमेंट थी, बेसमेंट में मजदूर थे। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ जो मजदूर थे उनको जब ये हादसा हुआ 1:30 बजे के आसपास वो खाना खाने के लिए गए थे। हालांकि इस तरीके की जब चीजें चल रही होती हैं तो उस दौरान कुछ मजदूर ही बाहर जाते हैं, कुछ मजदूर अंदर ही रहते हैं, यानी मजदूर भी अंदर दबे हो सकते हैं और कई सारे स्टूडेंट भी, क्योंकि पर फ्लोर पर 3 से 4 कमरे बने होते हैं और एक कमरे के अंदर 2 के आसपास स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर रहते हैं। यानी अगर लगभग बात की जाए तो 5 मंजिला इमारत थी और उस 5 मंजिला इमारत में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो रह रहे होंगे, इन सब की अभी पूरी तरीके से एग्जैक्ट फिगर बताना ये आसान नहीं होगा, लेकिन 9 लोग अभी रेस्क्यू किए गए हैं, 3 लोगों की जिसमें पूरे हादसे में जान गई है। जो 6 लोग अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है ट्रॉमा सेंटर के अंदर, वो भी गंभीर स्थिति के अंदर जो है वो बने हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची थी, लगभग 2.5 घंटे वो यहाँ पर रही। तमाम अधिकारियों को इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्होंने बताया किस तरीके से करना है, किस तरीके से गाइड करना है, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसको लेकर के अब सवाल भी निश्चित तौर पर उठ रहे हैं, सरकार से भी पूछे जा रहे हैं और MCD से भी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी MCD की है कि आखिरकार जब 5 मंजिला ये इमारत की बेसमेंट थी और उस बेसमेंट के अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर के अब MCD के तमाम अधिकारियों पर अब गाज गिरनी तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अधिकारी को इस पूरे हादसे में जो जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री जो है वो घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे, उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली BJP के तमाम नेता, कैबिनेट के तमाम मंत्री भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। एक बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि मालवीय नगर उसके बाद अब ये हादसा, कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में जो सवाल खड़े होते हैं वो MCD पर, क्योंकि जब मालवीय नगर का हादसा हुआ था उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट जो एक कॉन्सेप्ट था उसकी भी पूरी तरीके से लापरवाही जो है वो हो रही थी, उसको अनदेखा किया जा रहा था अधिकारियों की तरफ से, MCD के कर्मचारियों की तरफ से, और वही स्थिति अभी भी कमोवेश इसी हादसे के अंदर भी नजर आई कि MCD के जो कर्मचारी है उनकी एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है कि आखिरकार इस तरीके के कई सारे PG और कई सारे जो इंस्टीट्यूट चलते हैं और किस तरीके से छोटे छोटे कमरों के अंदर दो दो बच्चे उसी कमरे के अंदर बिजली का मीटर हादसे को न्योता देता है वो नजर आता है। जब हादसे होते हैं तो सब सवाल खड़े करते हैं एजेंसियों पर, प्रशासन पर, लेकिन एक जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर जिम्मेदारी तय होती तो शायद इस तरीके के हादसे दिल्ली में ना हो।
3: जी जी सुशांत, जो एक और सवाल अभी उठ रही है ये है, जो लोग अभी भी उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनका अभी स्थिति क्या होगी? ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाया गया है उनको ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए, ताकि उनको थोड़ी और आसानी हो, जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में थोड़ा सा अगर थोड़ा भी कंफर्ट दिया जा सकता है तो वो उसका पूरा व्यवस्था किया गया है। पर ये जो लेटेस्ट लोग कुछ रेस्क्यू हुए हैं लास्ट एक घंटे में, अगर हम उनकी हालत के अनुसार अगर हम एनालाइज करें तो जो लोग अभी भी दबे हुए हैं उनकी हालत क्या होगी, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि डेथ टोल भी अभी बढ़ते जा रहा है, इसीलिए
5: देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि रात का वक्त हो चुका है, दिन ढल चुका है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में निश्चित तौर पर अब चुनौतियां होंगी। NDRF की टीम की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो नीचे की तरफ भेजे गए हैं, जो लोग दबे हुए हैं उनको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, उनको सांस लेने में परेशानी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे छोटे जो है वो अंदर भेजे गए ताकि ये लोग सांस प्रॉपर ले सके अगर कोई अंदर है, क्योंकि डॉग स्क्वाड्स की मदद ली जा रही है कि अंदर और भी कितने लोग दबे हो सकते हैं। क्योंकि लगभग अगर कहा जाए तो 1:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, और उसके बाद से भी अगर कहा जाए तो लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है, और 5 मंजिला इमारत इस मलबे के नीचे किस तरीके से अभी भी बच्चे जो है वो दबे हो सकते हैं। एक वीडियो भी जो है वो अंदर से बेसमेंट से बाहर आया कि किस तरीके से एक बच्चे की एक वीडियो सामने आई है, वो किस तरीके से मलबे के नीचे दबा हुआ है। ये समझने की जरूरत है कि जो लोग अभी भी दबे हुए हैं उनकी जान बेहद अगर कहा जाए तो जोखिम में है इस वक्त। जो लोग 2 से 3 घंटे बाद रेस्क्यू करके निकाले गए हैं उनकी भी हालत गंभीर जो है वो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर के अंदर बनी हुई है, उनका ट्रीटमेंट जो है वो लगातार चल रहा है। जो तस्वीरें सामने आई किस तरीके से जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई आसपास की जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गाड़ियों की स्थिति है तो आम जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अंदर कमरे के अंदर रह रहे थे उनकी स्थिति क्या होगी, किस तरीके से उनकी जान जो है वो जोखिम में थी। फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, मुझे लगता है कि कल सुबह तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलेगा, और उसके बाद ही पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी कि कितने लोग अंदर मौजूद थे, कितने लोगों की जान इस पूरे हादसे के अंदर गई है।
3: जी बिल्कुल, एक और समस्या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं उनको हो सकती है वो है IMD से जो आई हुई येलो अलर्ट और रेड अलर्ट, हमने पहले अपने बुलेटिन में बताया था व्यूअर्स को भी, अगर और एक स्पेल ऑफ बारिश आ गई तब ये जो मलबा अभी तक जो हटाया गया है वो ठीक है, बट जो मलबा रह गया है उसको हटाने में काफी दिक्कत हो सकती है। बारिश की कोई आशंका है रेस्क्यू ऑफिसर्स को अभी फिलहाल?
5: देखिए IMD की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन वो जो येलो अलर्ट था शनिवार और रविवार के लिए था, लेकिन आज भी अगर इस तरीके से बारिश अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर टीम जो एनडीआरएफ की है, एमसीडी की टीम है, उन टीमों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है और जो लोग अंदर दबे हो सकते हैं उनकी जान का जोखिम भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बारिश होती है निश्चित तौर पर मलबा जो है उसको हटाने में और ज्यादा दिक्कत और तकलीफ जो है परेशानी होगी पूरी टीम को। ये उम्मीद है कि शायद अगर बारिश ना हो तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट जो है वो किया जाए। और यही वजह थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी लगभग 2.5 घंटे यहाँ पर खड़ी रही अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। दिल्ली के उपराज्यपाल भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने वक्त यहाँ पर बिताया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और पूरी तरीके से ये निगरानी रखी जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बारिश आने से पहले ही जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाए, ताकि अगर बारिश आती है तो उसके बाद मुसीबत और परेशानी और बढ़ेगी रेस्क्यू ऑपरेशन में।
3: जी सुशांत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास आते रहेंगे नेक्स्ट कुछ घंटों में भी ये जानने के लिए कि क्या हालत है और किस मुकाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंची है। व्यूअर्स, एज यू कुड अंडरस्टैंड द एंटायर डिटेल्स ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन एंड वेयर इट स्टैंड्स, ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी क्लोजली फॉलोइंग इट ऑन द पैरेलल ट्रैक। वी हैव आल्सो बीन रेजिंग द क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हु इज इट हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस डिजास्टर दैट कुड बी सीन टेकिंग प्लेस एंड अनफॉर्चुनेटली डिड नथिंग अबाउट इट एंड लेड टू द लॉस ऑफ 3 lives सो फार। अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन रिमेन्स सो ग्रिम एंड गोरी दैट द डेथ टोल मे माउंट इवन एज वी स्पीक बिकॉज द रेस्क्यू ऑपरेशन आर फार फ्रॉम ओवर। इट्स अ चैलेंजिंग ऑपरेशन दैट द रेस्क्यू टीम हैज टेकन अप एट दिस गिवन पॉइंट बिकॉज ऑफ द एंटायर लोकेशन, the green corridor that also took time to be established, as well as the fact that now it's night time, it's evening time, sun has set, so in the dark it's even more difficult to in fact bring out all of those still continuing to be trapped underneath the debris. Very serious questions. We'll end it on that note this hour, but do stay tuned as we come back after the break, tracking the same story for you with every detail as we have been bringing it on India Today for the past 6 hours. Thank you for watching.
6: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Watching India Today with me, Shriya Kundu. Welcome back. We're tracking a tragic story this entire evening as we speak. It's a building that's collapsed in the heart of the national capital, one where rescue teams continue to be racing against time to bring out all those who are still trapped underneath the debris. Several lives already being lost, those injured in the hospitals, and an authority over whom the questions have only been mounting with regards to their negligence and with regards to the fact that exactly what and when will serve as a wake-up call for them to take action finally. Take a look at the headlines as we begin with that at the very top of the bulletin. Five-story building collapses in South Delhi's Satyaniketan. Three dead, several others feared trapped under the debris. Massive rescue operations underway. Chief Minister Rekha Gupta reviews the situation on the ground. Asserts culprits won't be spared.
2: Agencies काम कर रही हैं. हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों की जान बचाना जो हो सकता है अभी भी अंदर फंसे हो. 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा. ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ.
1: Delhi police registers FIR against building owner Anand Bansal. Cops say the five-story building was 40-50 years old. A medical shop was running in its ground floor, while its upper floors were used as PG facility. Repair work was underway at the basement at the time of the very collapse. BJP chief Nitin Nabin, who's hit out at the opposition over Prime Minister Modi's SRCC address, says the Naraz Hoofas of the opposition were hit hard by Prime Minister's homeopathy jive.
3: परिवार
4: हम सभी ने देखा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के अंदर समाज के अंदर असंतुष्ट रहते हैं जो कभी भी किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते सोच ही नहीं सकते उन्हीं को उन्होंने एक नाराज फूफा करकर संबोधित किया.
1: राइट विंग गूंस स्वतंत्र भारद्वाज सेंट टू अ वन डे जुडिशियल कस्टडी. टीन प्रोटेस्टर इन फैक्ट क्लेम स्वतंत्र सपोर्टर्स हैव बीन अब्यूजिंग एंड थ्रेटनिंग हर. अनदर कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट द विक्टिम एंड टीन प्रोटेस्टर एलिजिंग इंसल्ट टू द हिंदू गॉड्स. Man allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area captured on camera. Eyewitnesses say victim was attacked with lathis and sticks. Cops launch manhunt for suspects. Vijay government in Tamil Nadu shortlists two new sites, Manalore, Cheyur for airport. This after the Parandur airport project was dropped. Government recommends two new sites for study to Airport Authority of India. From the world of sports, this is finally some good news for the day that we bring to you. Third time lucky for Sathwik and Chirag, the duo that's defeated China's Yi Jiting and Renxiang Yu to clinch the men's double title at the China Masters. As we speak, viewers, this is the Prime Minister now coming in to react on the Delhi tragedy that we have been reporting about so closely. The collapse of a building at Satyaniketan, Delhi is distressing. Condolences to those who've lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured, authorities are working at the site and assisting those affected in the mishap. This is the message that's come in from the Prime Minister at this given point. Remember, several other political leaders, including the Home Minister as well, who in fact went ahead and cancelled an event of his that was to be held in Goa, that he was travelling for. It was a BJP headquarter office that was being inaugurated in Goa. He cancelled his visit instead, chose to remain back in Delhi and closely monitor the rescue operations that have been underway for the past 4 to 5 hours now. And as we speak, Chief Minister Rekha Gupta herself has also been on the ground itself for the past almost 1.5 hours, and now she has headed towards the hospital where all of the injured have been admitted. As we speak, 9 have been rescued. The death toll stands at 3. Rescue operator officials, in fact, have been racing against time to bring out all of those who continue to be trapped. Other political leaders would also reach the very site, closely monitoring the situation, the rescue operations from the ground itself. The Delhi mayor, in fact, if you remember a little while back, we bring to you that very reaction of his as well, where he's strictly said that yes, there are, he's accepted that there are several gaps and areas that need to be worked upon, fallacies in the system, but at this given point the focus needs to be on the rescue operation, and there are no doubts with regards to that. The first priority at the hour of this distress and disaster remains to be rescue operations, but at the same time, the parallel attention that we have been, the focus that we have continued to maintain on, is also the mounting questions on the authorities who allowed this entire disaster to come about in the first place. This is, in fact, a locality that has for years been a student locality, and for years students have been living under some of the most unfortunate of circumstances simply because it's very close to the Delhi University South Campus. Questions go out to each of these authority figures. The university for not having enough accommodations or at least regulations in place to keep a check of where the students are staying and under what conditions. Of course, on the MCD and those authorities who are supposed to be giving permits and monitoring these very localities to check on renovation works that are going on. And of course, at the same time, on the building owner, who in fact now faces an FIR lodged against him because there was an entire renovation that was going on in his building and he was nowhere in the scene, even after the collapse that happened today, while he's a resident of Gurugram itself, which is within the NCR. So all of this we're focusing upon in all depths and details. Let's first take a look at the eyewitness accounts that have come in from the neighbors and the other students who live in this very region.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
5: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
6: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है, और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
8: There will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
3: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ के अंदर सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
8: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत। और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे, अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती
10: है? हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में। और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की?
10: बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को। अच्छा,
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा
11: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
11: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे और एक पीजीज में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
11: पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें और बेसमेंट में काम चल रहा था। सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
1: On that note, viewers, there's more breaking news coming in as we speak. This is Chief Minister Rekha Gupta, who a little while back was at the site where the mishap took place. Now she is, as she'd said, she will be visiting the hospital. She's reached the hospital. This is the AIIMS Trauma Center that she's currently at, speaking with the doctors and health officials as she arrived at the very trauma center. Remember earlier we were bringing to you news about how 3 of the first people who were rescued from underneath the rubble and ruin, they were taken into the hospital, but unfortunately AIIMS has come out to declare them dead now, and that's why the death toll currently stands at 3. The rest of the 9 who've been rescued is still undergoing treatment at the medical facilities itself. Now, the individuals who've been rescued from Satyaniketan building collapse site have all been brought in to AIIMS to, in fact, give them treatment. The Chief Minister taking a stock of the situation here as well as we speak with regards to how and what treatment each of them require. When we speak of the impact of a building collapse, it might seem a little unfortunate here, of course, the comparison that I'm going to make, but it just gives you an idea of the amount of destruction and the impact that can be seen from this collapsed building. There were certain cars that were being pulled out from underneath the debris initially. These cars, these metallic structures that remained a hole underneath the impact of those five stories that came tumbling down on them, completely flattened out. An entire vehicle, imagine a car that's completely been flattened out. Those were the visuals we were getting from the rescue operation site itself, from the very site of the mishap itself, just giving us an idea of the extent of damage caused in this entire case itself. And this is what describes what each of those who remain trapped underneath the debris, who have been rescued but were trapped underneath the debris a little while back before they were rescued, the condition, the amount of injury they have suffered from the impact of five stories that came completely crashing upon them. It just gives us an idea, viewers. It is unimaginable, the plight of each of these students or people, even passers-by, if any, or the laborers who were working in the very basement. Those details of who all continue to remain trapped underneath the debris, that's something we've been trying to ascertain since the very first hour that this story had come to light. But it has been impossible to do that. We can only be bringing you the numbers of those being rescued. But eyewitnesses have given us a range from between 15 to as many as 40. Now, we only hope the number is not as high as 40, but right now just look at the struggle that the rescue team is facing to just remove the entire rubble and ruin. Now, a little while back, one of our colleagues was giving us information about how 50% of the debris has already been removed from the very location. They've been successful. But let's give you an idea of what this 50% means. If it's a five-story building that's come collapsing down, 50% only means 2.5 floors, 2.5 floors, that is. There is still 2.5 floors that remains. And the bigger the chunks, it is getting more and more difficult for the rescue operators to, in fact, bring it out and remove them from blocking the path as well as the entire heap of the rubble underneath which there are several still trapped. Anmol Bali joins us on the broadcast with more details as he's been tracking the story amongst the other team of our reporters who are at the very site, bringing us an all-round view of what's happening there. Anmol, it's close to now. It's in fact, as we see, it's 8:13 by the clock. It's been 7 hours since the entire incident took place. 9 rescued, 3 have died. Several of these 9 still, in fact, being treated at the AIIMS hospital where the Chief Minister has just, in fact, reached.
12: We have just seen visual of CM Rekha Gupta, who has reached the AIIMS trauma center where all the rescued, injured, and the people, those who were trapped inside, those who were brought dead at the AIIMS hospital were brought there. But on the other hand, I'll also show you another visual of the rescue mission. Here in the visual, I'll show you that how Delhi fire brigade vehicles have been parked here, which clearly shows how the manpower and the machinery which has been now used by the Delhi government, by the administration, by the municipal corporation of Delhi, and even NDRF forces, those who are using gas cutters, oxygen cylinders and cranes and other machines, heavy machines inside the rescue area where the current rescue operation is going on. Around 9 people have been rescued and 3 are dead. But still the rescue operation is going on. Even we have seen that various of the leaders, top brass of the Delhi BJP, we have seen that BJP President, Delhi CM Rekha Gupta, LG Taranjit Sandhu and Mayor Pravesh Wahid, they all have reached there. And even we have seen in the afternoon
13: MP Dipinder Hooda has also reached there, where we are seeing that politics is now escalating. Even we have seen that NSY and even AVVP, both student organizations, have protested because only 2 weeks are left for the upcoming Delhi University Student Council elections, and this will be one of the main issue, because now we are seeing that both NSY and AVP are trading charges at the at each other. NSY is blaming the BJP and the ABVP and the Delhi administration, Delhi University administration, behind this devastating incident where 3 people have lost their life. But still, at the one hand, the politics is continuing. On the other hand, I'll show you that how these heavy machines are used by the fire brigade and Delhi NDRF. I'll show you these heavy machines are brought here by the Delhi Fire Services and as well as NDRF to use them in the rescue mission. And clearly, many of the fire tenders and many of the ambulances have been placed here, but still the rescue operation is going on, and still top leadership of the Delhi BJP and other opposition party leaders are here on the ground. At the one hand, politics is escalating. On the other hand, the rescue operation is continuing here in the south.
1: Right, Anmol, I'd request you to stay back with us. There is more news that we are bringing to our viewers, and we will take your details and insights on the same. Students and Teachers Association and organizations, viewers, have now demanded a thorough investigation after a paying guest accommodation in the Satyaniketan region collapsed, and called for a comprehensive audit of the student housing across the city. In fact, the director of the Delhi University South Campus had a little while back come out to respond and say that all of the students, they will assess all of the students who live in this very locality, and they will be all called back to the college campus and accommodated there itself. Now, the National Democratic Teachers Front, the ABVP, the NSUI, in fact, members of who had all come in and joined hands, they still continue to do so at the with the rescue of officials itself. They've all been helping out to take out all of those who still remain to be trapped. They've all, in fact, at this given point of time, coming to voice the same concern with regards to the students who've been living in these localities, and have promised that they will look into this and they will ensure that there is proper auditing that's done and proper accommodation facilities that's given to the students. On that note, as we speak of the ABVP, viewers, there is a protest that's been staged outside the Delhi Civic Body office. The ABVP has staged a protest outside the MCD office with 3 dead so far. They have come out to demand accountability as well. This is the first protest that we are now looking at that's come out and is being held right outside the Delhi Civic Body office, that is the MCD office. And they come out to demand accountability that is much needed in this very case, especially with the glaring lapses, the negligence with which this locality in itself and several such other localities in the national capital are, in fact, looked at with a blind eye. They're overlooked. Permits given to unauthorized buildings to go ahead with renovations, approvals given over bribes that are taken in. Several allegations of this kind have come in over the years, and yet there is zero action on the ground that we see. And at the end of the day, every few months, there's only human life that is paying the cost of their negligence. Let's quickly take a look at the responses that have been coming in from these protest sites before we proceed with more details and a discussion.
14: ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रॉमा सेंटर में, अंदर आईसीयू में है, इमरजेंसी वार्ड में है, और डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है. अभी जस्ट एक स्टूडेंट गया नीरज, जिसको भी इंजरी है, उसको भी मतलब ज़्यादा मुझे बताना, रिवील करना ठीक नहीं है. अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. एक स्टूडेंट को ओटी में भी लेकर गए हैं, और एक स्टूडेंट है उसका, 2-3 का ट्रीटमेंट चल रहा है. एक को ओटी में ले गए, एक अभी जस्ट गया है, एक सफदरगंज में भी है. तो हालत तो थोड़ी गंभीर ही है. इंजरी है उनको, कहीं किसी को हिप पर इंजरी है, किसी को शोल्डर पर, किसी को नेक में हेड इंजरी भी है, किसी को लोअर रीजन में भी इंजरीज हैं, तो उनका पूरा जो भी इंजरीज है उनका ट्रीटमेंट यहाँ डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है.
1: Anmol Bali continues to be with us. Anmol, the protest that we now see from the ABVP, from the entire incident and assessing the situation, this is perhaps the first of such protests we'll see in the upcoming days. Political blame game already taking place. You know, the biggest concern here is one can only hope this serves as a wake-up call to the authorities. It really opens their eyes and they start taking action as a preventative measure. Basically do what they're supposed to do in the first place instead of them consistently reacting and responding to incidents like this.
13: As I've told you earlier that the Delhi University Student Council elections are coming, and keeping all that in mind, we have seen that NSY workers have gathered here at the initial time when the building have collapsed, when the building has collapsed, and later we have seen that many of the ABVP workers and ISA workers also joined for the rescue operations. But later we have seen that NDRF and Delhi fire services teams have reached here. But now the both student outfits of the Congress as well as RSS are blaming each other. At the one hand, we are seeing that Akhil Bharati Vidyarthi Parishad, the Rashtriya Swayam Sevak Sangh's student wing, is protesting outside the Civic Center. And few hours ago, we have seen that NSUI, National Students Union of India, Congress Party student wing, has protested here outside the nearest metro station, Motibagh metro station. And both are accusing each other. We have also talked with a few officials of NDRF and Delhi Fire Services. They have clarified that this operation could take more, few more hours because of the heavy debris, because it is a four-story building and all the four roofs have collapsed, which is making hard for them to clean and the whole area because of the huge roofs. So they are using cutters to kind of fragment this whole roof and then clean the area. So clearly, at the both hand, we are seeing the politics escalating. On the other hand, the NDRF and Delhi Fire Services working round the clock, and 7 hours have passed to clean the debris. Even we have seen that one of the car was pulled out, and even 9 people have been rescued and 3 people have lost their life in this tragic accident. Shreya.
1: Right, Anmol. Thank you for bringing us those details. We will keep coming back to you every hour to bring us these updates. And as we speak, viewers, there are certain ground reports that we will be bringing to you that, in fact, will be showing you one after the other how the entire situation unfolded at the ground, right from the collapse to the rescue officials, in fact, establishing a green corridor, how they've been trying to clear out the area, and then finally, so far, having rescued 11, out of which 3 have unfortunately passed away. More continue to be trapped under the debris, but we will bring you all of those details in these ground reports brought to us by our team of reporters who are at the ground.
15: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं. करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी. 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं. बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए. ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए. मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा. यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं. अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे. उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से. ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं. एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है. और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है. पैन करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं. करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी. 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं. बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए. ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए. मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा. यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे.
16: सर, इस बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा?
14: बेसमेंट में काम चल रहा था. 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक. और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे. संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं. ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे
11: प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा,
11: काम चल रहा था पानी।
9: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है, ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
1: On that note, viewers, we have more reactions that have come in from the political arena. Of course, the blame game already having begun, of each party leader raising questions to the others. And of course, at the end of the day, to the authorities as well. Perhaps a blame game that if would have come in much earlier and would have forced the authorities to act, then would have prevented a situation like this. Listen in to the reactions.
17: बहुत ही दुखद और पीड़ादायक हादसा है। मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
18: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूं कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का नहीं है, रेस्क्यू का टाइम है।
19: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
20: देखिए हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके इस समय, सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
21: देखिए बेहद दुखद है, और जैसे उसकी सूचना मिली तुरंत हमारे विधायक अनिल शर्मा जी वहां पर पहुंचे हैं और मामले की जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की।
22: इलेक्शन से बड़ी बात है कि किस तरीके से यहाँ बच्चों की मौत हो रही है, और लगातार दिल्ली में बिल्डिंगें इस तरीके से गिरती रहती है। एमसीडी मतलब महाभ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन, लगातार अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है बड़ी दुख की बात है। सरकार को तुरंत इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, परिवार की मदद करनी चाहिए, और ऐसा हादसा आगे ना हो इस तरीके की पूरी कोशिश का काम करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, 4 इंजन की सरकार दिल्ली में फेल हो चुकी है।
23: जो बच्चे यहाँ पर अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं, जो यहाँ पर पीजी में रह रहे थे, एक बिल्डिंग वो कलेप्स कर गई है और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है, बल्कि कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं अंदर से, और अभी बच्चे काफ़ी ऐसा लगता है कि बच्चे अंदर भी हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरी टीम भेज दी है, माननीय सांसद जी, माननीय हर्ष मल्होत्रा जी लगातार फोन पे टच में हैं, वो पूरी सरकार इसकी से संवेदनशील है, इसको देख रही है कि कैसे भी करके बच्चे बचाए जाएं, पहला हमारा टारगेट ये है।
1: Now we are getting more breaking news from the very mishap site. According to the Delhi Fire Service and the NDRF service and sources, that is, the rescue operation could take several more hours due to the heavy debris at the site. Now let's take you through a quick timeline here. Of course, before that, officials have said that the roofs have completely collapsed, making it difficult for the NDRF and the DFS systems to teams, that is, to clear the rubble and carry out the rescue operation. Now, we're talking about a major chunk of a roof that's fallen. Five stories, that's the height from which it's completely collapsed. Once it's collapsed, it's broken into big chunks, which has, in fact, initially it had come out to block the very entrances to this entire area at each end of the road. But now they have been cleared out from those entrances so that more aid and assistance can come in from those roads. But at the same time, since these are large chunks, they need to be broken down before the JCB can pull them out of the very mishap site, that is. So this is the entire struggle that the rescue team currently is grappling with, which is why this might continue. The rescue operations will, in fact, continue for the next couple of hours. Whether it will continue overnight or not, that news still is something we are awaiting for. But on that note, viewers, we're wrapping up the bulletin this hour right here. Do stay tuned to India Today as we are covering this story very, very closely with our team of reporters relentlessly bringing us every little development from the very collapse site at Satyaniketan. Thank you for tuning in. Do stay tuned.
0: You are watching India Today.

0: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today. India's only democratic newsroom.
1: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
2: अब देखिए, नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।
3: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: Viewers, we're beginning the bulletin with our focus on that story, a tragedy that we have been tracking so closely for the past 6 to 7 hours now. At least three people have died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near Delhi University. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed amid heavy rains. An eyewitness saying that it was a five-story structure in another adjacent building also had collapsed. Rescue teams from the Delhi Fire Service and the police reached the spot, and operations are underway. At least 11 people have been rescued so far, but several others are feared trapped under the debris. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, in fact, visited the site to take a stock of the situation and assured that no culprits will be spared. The Chief Minister has confirmed that the structural changes were being made to the building, and this repair work was in fact being done at the basement where the entirety of the region was dug up, due to which the load-bearing pillar dismantled and caused the whole building to collapse. Delhi police have registered an FIR against the owner of the PG, Anand Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had five floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the very basement at the time of collapse. The lens is now on possible lapses that led to the collapse, including unauthorized construction, ignorance of overload on the structure, as well as damage due to rain not being considered and repaired timely.
1: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है. हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
2: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया.
3: सर ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है, और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
4: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, हम फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
5: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
6: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ कैंप के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की.
5: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
7: यहाँ पर कई ऐसे पीजी हैं जिसमें छात्राएं रहती हैं, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं, और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है, और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत, और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है। अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे, अपना नाम बताइए।
8: पूजा अग्रवाल।
7: पूजा अग्रवाल, आप यहाँ क्या पीजी में रहती
8: है? हाँ जी।
7: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
8: सर यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है, और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रूपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
7: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की? हमारा जैसे
8: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
7: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी ही थी?
8: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
7: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
8: हाँ नीचे।
7: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं, एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000,
8: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रूपए या 2,000 रूपए कम कर देते।
7: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
9: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
7: अच्छा।
9: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
7: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
9: पानी।
7: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है, ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
10: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे? उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: On that note, viewers, there's more breaking news coming in. This is according to the Delhi Fire Service and the NDRF sources that we are bringing these details now to you. The rescue operation could take several more hours as we speak due to the heavy debris at the site. One of the biggest challenges for the officials here who have been working against time, racing against time, working round the clock for the past 6-7 hours now, have come out to say it's the roof that's completely collapsed. And that's made it difficult for the NDRF and the DFS teams to clear the rubble out and carry out the rescue operation. On that note, we have Anmol Bali, who's been tracking, who's been among the reporters we have on the ground at the mishap site, tracking all of these developments, bringing us each of these updates every hour. Anmol, at present, how far has the debris clearance operation been successful? And the challenge that this roof that's in fact had a fall of 5 floors, that has been one of the major challenges to clear out that rubble, still is a challenging task for the rescue officials there. Help us understand Where does that aspect stand so far?
11: Shreya, currently I'll show you the live visuals of the rescue operation which is taking place here in the South Delhi near the South campus of the Delhi University, where the building has collapsed which resulted into death of three people. And clearly here in the visuals I'll show you now once again another ambulance is moving towards the building collapse site where the rescue operation is taking place. And we have also talked with the Delhi Fire Service and NDRF sources, though they have clearly mentioned the rescue operation could take several more hours due to the heavy debris. Officials have said the roofs have completely collapsed, making it difficult for NDRF and Delhi Fire Services team to clear the rubble amid this rescue operation. But on the other hand, we are seeing that heavy deployment of man and machinery. NDRF forces, Delhi Fire Services, Delhi Police Forces, paramilitary forces have been deployed here to manage, because at, there are many challenges for the administration here, because at the one hand, the heavy rubble, the heavy debris which they are trying to clean with the cranes, the JCB machines and other heavy equipments like cutters. But on the other hand, crowd, because this is a student area where this incident took place. This was a PG, a four-story PG which collapsed, which resulted in death of three people, and still the rescue operation is going on and several more hours will take place in this operation. On the other hand, we are also seeing that political leaders from the Bharatiya Janata Party and the Congress both came here, from Delhi CM to Taranjit Sandhu, LG of the national capital. They came here. Even we have seen a statement coming from Delhi CM Rekha Gupta that officials and the people, the owner, those who are behind this incident will not be spared. But on the other hand, we have also seen Dipender Hooda, Congress MP, coming here targeting the BJP government. At the one hand, we are seeing politics escalating on this issue, where both Congress and BJP, and on the other hand, student organizations like ABVP, NSY have locked their homes. But on the other hand, we are seeing rescue operation by the NDRF and Delhi Fire Services.
0: There's lots happening even now at the ground, 7 hours after this incident has come to light. Anmol, I'd request you to stay back with me. There's more news that we are getting at this given point that we would want to bring to our viewers' highlights before we proceed with our discussion. This is the NDRF now intensifying rescue operations as we speak at the collapse site. As Anmol was also pointing out, the NDRF has deployed 70 rescuers for the rescue operations. And the teams are leading a multi-pronged search and rescue operation as we speak. It's not just the 70 NDRF officers who've been deployed. Remember, there's Delhi Police, there is the civil teams, civil bodies, there is student union members, student groups, organization members that have come in. Of course, there is the RAF, there is the CATS. All of them have been deployed. All of them have and of course, the fire teams, at least 12 tenders were rushed into the spot when the entire collapse came to light. So this is a mammoth task that they've taken up, and the team that's been deployed on the ground is equally large as we speak. The NDRF uses an advanced equipment. They have been using advanced equipment to locate the survivors, deployed canines as well, live detectors for searching them. NDRF teams have been rotating operations to sustain this rescue and conduct breaching, cutting operations at the very site using high-tech equipment. Now, we continue to track some of the responses from the ground. Take a look.
12: और उनकी अभी 12-13 घंटा बाद हम एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको दे पाएंगे. और अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर. एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा. अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे.
11: पंकज जी, कितने जो लोग हैं रेस्क्यू किए गए हैं, क्रिटिकल हैं, कितने जो है नॉर्मल है, कुछ इसकी जानकारी?
12: मैंने बताया ना जी, टोटल 11 थे, 11 में से 3 की कैजुअलिटी हो रखी है, 8 एडमिट हैं. उनकी स्थिति भी 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद वो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर बता पाएंगे.
11: तो ये मेरे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो 11 लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, 3 की मौत हो गई है, कितने क्रिटिकल हैं उस पर उन्होंने बात रखी. और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी जो सरकार का बड़ा ध्यान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, और बाकी जो राजनीति की बातें हैं वो कल की जाएंगी. कैमरामैन इमैनुअल जोस के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट.
0: So Anmol bringing us those reports and reactions from the ground. Right now he was just speaking to the health minister of the national capital, Pankaj. Singh, who's come out to say that while 11 have been rescued, 3 have unfortunately passed away. They've, in fact, succumbed to their injuries from the impact of this collapse. The rest continue to be receiving treatment from them. Now, this is from what we've gathered in terms of details, viewers. There are several labourers as well as students who were stuck underneath the debris. So right now, how many on either sides, that needs to be still ascertained as the identities still are being tracked down. But for now, these are the details we have. More news coming in. Let's quickly take a look. More political reactions come in as we speak. This is Congress President Mallikarjun Kharge speaking about an unavoidable tragedy. The Congress slamming Modi government over the Delhi building collapse. Congress President Mallikarjun Kharge says the building collapse is deeply distressing and an avoidable tragedy. I beg your pardon. That's the quote that's been made by him. Every effort must be made to rescue those trapped and ensure the best possible treatment for the injured. NSUI workers and Congress leaders are already on the ground helping students, victims and their families in every possible way. Congress chief has come out to even add that we stand firmly with them in this difficult hour. This tragedy also exposes the unsafe, overcrowded, paying guest systems that students are forced to live in due to the inadequate hostel facilities. Students come to Delhi to build their future and not risk their lives for a roof over their heads. Every student's life is precious. This is what the Congress president has had to say. On that note, Anmol Bali back with us on the broadcast. Anmol, more reactions coming in from opposition sides with the political blame game only snowballing as we see. While the ministers and the leaders from the BJP have maintained that right now the focus should be and is on only rescuing those who have been trapped underneath the rubble. That is the priority at this given hour. But at the same time, opposition hasn't backed down from mounting their attacks at the authorities. Anmol, if you can hear me. We'll get that connection reworked, viewers. But yes, as I was also mentioning, there has been comments coming in from the opposition leaders. In fact, Rahul Gandhi had come in quite at the early hours itself after the entire incident had come to light. He'd spoken about the entire issue and he had come out to say on his platform X that this is the state and the struggle that the students in the country are going through. Mallikarjun Kharge only adds to that now, saying that this was completely an avoidable tragedy. Students coming in from different parts of the country to the national capital to study and not risk their lives for a basic need and an amenity like a roof on one's head. Now, as we speak, there are more political reactions. Aam Aadmi Party has spoken on it. Congress leaders have come out to speak on it. And meanwhile, there are party members from the BJP as well as the government that have come out to, in fact, speak on the matter. Take a look at all of it.
13: बहुत ही दुखद और पीड़ादायक हादसा है. मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए और ऐसे हादसे दोबारा ना हो. आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए.
14: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो, कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है. एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी. सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी. आप चेक कर लो. उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां आप लोगों के सामने. हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो. स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी. ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है. और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता. इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का नहीं है, रेस्क्यू का टाइम है.
15: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है, तो और वो वही छत गिर जाती है, तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
16: देखिए हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं, पहले पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके इस समय, सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
17: देखिए बेहद दुखद है, और जैसे उसकी सूचना मिली तुरंत हमारे विधायक अनिल शर्मा जी वहां पर पहुंचे हैं, और मामले की जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की।
0: On that note, viewers, there are more reactions coming in as we speak. This, in fact, is a conversation that BJP MP Basuri Swaraj has had while speaking to India Today. Now, remember, she was amongst the first political leaders to have reached the very site of collapse, and she'd been monitoring the entire situation the entire afternoon. In fact, she was there for hours alongside the Chief Minister. In fact, Chief Minister had come in a little later, but she was amongst the first leaders from the BJP to reach the very area. Now, she has spoken to India Today. Listen in to what she has to say.
18: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
19: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
18: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका अभी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
0: On that note, viewers, this is the breaking news we have for you as we speak. That was Basuri Swaraj, in fact, who represents the New Delhi parliamentary constituency in the Lok Sabha. She had come in as well, and she had been monitoring the situation along with the MLA from that very region. Both of them closely monitoring the situation since the very afternoon. Let's now take you to another story, viewers, as we speak. This is also from the national capital. Delhi has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
20: The pieces of wood that you are seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here, at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
1: मेरे को दिखाए तू भी मार खाएगा फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा
20: अच्छा उधर कितने लोग थे
1: दो आदमी थे
20: दो आदमी आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी
1: नहीं मेरे नहीं भागे मेरे को डंडा दिखाएगा तुझे वो करूंगा
20: अच्छा तो आपको डंडा दिखाया हाँ आपको भी मारूंगा
1: हाँ तो फिर मैं अंदर चला गया फिर मैं फोन किया था
20: किसको पुलिस को फोन किया पुलिस कितने देर में आई
1: हमारे अंदर चला गया तो
20: फिर कितने बजे की घटना होगी
1: ये 4 बजे का
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स स्वतंत्र भारद्वाज Police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
21: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
22: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा
21: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
23: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं
21: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
24: देखिए स्वतंत्र भारद्वाज ने जो admit किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया गया है उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है
25: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा
21: दिस इश्यू हैज वंस अगेन रीइग्नाइटेड द डिबेट ओवर प्रेजेंस ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द प्रोटेस्ट एंड मोर स्केलेटन्स आर एक्सपेक्टेड टू टंबल आउट ऑफ द क्लोजेट ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे.
0: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
2: You are watching India Today.

0: Death toll that's only been mounting with each passing hour. At least 4 people have died in this major building collapse in South Delhi's South Campus Delhi University, that is the Satyaniketan area. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed amid heavy rains. Eyewitnesses say it was a 5-story structure, and another adjacent building also collapsed subsequently. In fact, rescue teams have been relentlessly working from the Delhi Fire Service, and the police have reached the spot. Operations still continuing to be underway. 11 people have been rescued so far, but several others continue to remain trapped under the buried debris. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, who herself visited the site and stayed there for hours to take a stock of the situation, assured that none of the culprits will be spared. The Chief Minister confirmed that the structural changes inside the house were being made to the building, and a basement was dug, due to which the load-bearing pillar inside the very house got dismantled. Delhi police have registered an FIR against the owner of the PG, Anand Bansal, who lives in Gurugram. The collapsed building was around 4 to 5 decades old, and the building had 5 floors, along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse. The lens is now on possible lapses that led to the collapse, including unauthorized construction, ignorance of overload on the structure, as well as damage due to the rain not being considered and repaired timely.
1: एजेंसीज काम कर रही हैं हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों की जान बचाना जो हो सकता है अभी भी अंदर फंसे हो 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है मैं अस्पताल जा रही हूं उनमें से सबकी हालत जैसी है उसको समझने की जरूरत है और इतना कह सकती हूं कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ
0: Same time, viewers, as we speak, there's breaking news coming in. This is the ABVP members who have come out to protest at the Delhi Civic Body Office. Remember earlier, we were bringing to you news about how the ABVP members were in fact a part of the rescue operations. They'd come in numbers to help out the rescue teams to in fact bring out as many people as possible from under the debris. At such times, manpower indeed comes to be of very crucial importance, and coordinated efforts is what it takes to indeed make the operation successful. The ABVP members, however, post that, came out to protest outside the Delhi Civic Body Office, and now we are learning of vandalism that's taken place at the MCD office over this very collapse. Now we see forces have been deployed at the MCD office as well. With 4 dead so far in the collapse tragedy, ABVP now demands accountability. MCD office has been completely vandalized during the protest, and they've demanded the resignation of the civic body chief after the very collapse. Now let's first listen into some of the reactions before we proceed with more details.
2: Delhi प्रशासन की वजह से, भ्रष्ट MCD कमिश्नर की वजह से आज हमने अपने साथियों को खोया है एबीपी इस कमिश्नर की इस्तीफा लेके रहेगी चाहे इसके लिए रात भर रुकना पड़े खून का एक कतरा अगर बाकी होगा तब तक हम यहाँ खड़े हैं और एमसीडी भ्रष्ट एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा लेके रहेंगे
3: दिल्ली प्रशासन को पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ पर लोग मर रहे हैं स्टूडेंट्स मर रहे हैं मलबे के अंदर दबे हुए हैं वहाँ पर एमसीडी के अधिकारियों को तो अरेस्ट नहीं कर सकते यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों पे अपनी दादागिरी जमा रहे हैं ऐसे दिल्ली पुलिस के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए एमसीडी कमिश्नर को यह होना चाहिए था वो अपने ऐसे कमरे में बैठे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए ये विद्यार्थी परिषद की मांग है
4: एमसीडी जो ये कार्य कर रहा है ये चीजें छोड़ दे अगर विद्यार्थी परिषद अपनी पे आ गया तो ये बिल्डिंग चकनाचूर कर देगा
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
6: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
7: सर ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है, और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
8: हमारे यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
9: There will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
10: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंप के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
9: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
11: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं, और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है, और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत, और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे, अपना नाम बताइए।
12: पूजा अग्रवाल,
11: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
12: हाँ जी।
11: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
12: सर यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे, एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं, एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है, और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको, खाना बहुत सारे पीजी
11: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे
12: बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
11: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
12: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
11: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
12: हाँ नीचे।
11: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं, एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000,
12: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
11: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
13: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक। अच्छा। और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
14: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
13: पानी।
14: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था। सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है, ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
15: तान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहां पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come so far on the tragedy, as the blame game has indeed begun.
16: बहुत ही दुखद और पीड़ादायक हादसा है। मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
14: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का नहीं है, रेस्क्यू का टाइम है।
17: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
18: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
14: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
18: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
19: हमारे साथ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह है। तो सर आप यहां पर पहुंचे हैं, देखा जा रहा है कि तकरीबन 3 लोग हैं उनकी मौत हो गई है, सर क्या है मेडिकल बिहाफ से, आप अगर हमें बता सके हेल्थ बिहाफ से क्या है इस समय?
20: देखिए अभी तक से जो मेरे पास जानकारी है 3 की कैजुअल्टी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, 8 लोग एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है, जो 5 एम्स में है, 1 सफदरजंग में है, 1 प्राइमेस में, 1 आरआर में है, और उनकी अभी 12-13 घंटा बाद हम एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको दे पाएंगे। और अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
1: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके। और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे और कोई कैजुअलिटी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। Delhi has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
21: The pieces of wood that you are seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
22: मार रहे थे आदमी, मैं वहाँ तक आया, डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया, फोन करने लगा।
21: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
22: दो आदमी थे।
21: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
22: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया तो जो वो करूंगा।
21: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
22: हाँ,
21: आपको भी मारूंगा।
22: हाँ, फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
21: किसको? पुलिस को फोन किया?
22: हाँ जी।
21: पुलिस कितने देर में
22: आई? मैं अंदर चला गया था।
21: कितने बजे की घटना होगी ये?
22: 4 बजे का।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स। Swatantra Bhardwaj's police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
23: Hey, Zero! Police ki thana sahi! Hey, Zero! Police ki thana sahi! Hey, Zero! Police ki thana sahi!
2: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POCSO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
3: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
2: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
4: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल. तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियां दे रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियां दे रहे हैं डीएम्स में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
2: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: Look, Swatantra Bhardwaj ne jo admit kiya, uske anusar uske upar karwai honi chahiye. और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
2: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau Report, India Today.
25: Chennai's dream of a second airport is back in the skies. After Parandur was shot down by farmer protests, Vijay government has now shortlisted two new sites, Cheyyur and Manilore. Here is a special report on the same. Take a look.
2: Chennai's long wait for a second airport has taken a new turn. After farmer protests and environmental concerns grounded the Parandur project, the Vijay government has reportedly zeroed in on two fresh sites. Cheyyur in Chengalpattu and Manilore in Tiruvallur.
26: என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு, ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தேன்.
2: But Tamil Nadu's opposition is not convinced and has slammed Chief Minister Vijay over the move to scrap the Parandur airport.
27: எப்படி இந்த அரசு பரந்தூர் விமான நிலையத்தை ரத்து செஞ்சோ அதே மாதிரி இப்ப குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி திட்டத்தையும் ரத்து செஞ்சிருக்குன்னு செய்திகள்ல வந்திருக்கு. இந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி அமைக்க
2: The Airports Authority of India will now conduct a pre-feasibility study before either site is finalized. Cheyyur, roughly 100 kilometers from Meenambakkam, sits strategically between Puducherry Airport and the Kalpakkam nuclear hub. Manilore, closer to the city at 50 kilometers, lies near Sriharikota Space Facility. Chennai's need for a second airport is urgent. Meenambakkam operates near saturation, choking growth for the region's aviation, IT and manufacturing sectors. A second airport could decongest operations, boost cargo capacity and fuel investment. Plus, access to the current airport is difficult due to traffic. As history shows with Parandur, technical feasibility alone will not guarantee liftoff. The project's survival now hinges on navigating local politics, farmer sentiment and shifting government priorities. Bureau Report, India Today.
25: Now from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sathvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sathvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sathvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sathvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sathvik Chirag notched up five straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sathvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
5: You are watching India Today.

0: करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी। 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े।
1: चालीस 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें।
0: करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी। 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े।
1: चालीस 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें।
0: करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी। 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े।
1: चालीस 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था। सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें
2: अगेंस्ट दी अथॉरिटीज अबाउट how this could have easily been prevented right in the heart of the national capital. Our top focus continues to remain on this, but first up, let's quickly take a look at the headlines. A 5-story building collapses in South Delhi's Satyaniketan. At least 5 dead, several others feared trapped under the debris. Massive rescue operations underway. Chief Minister Rekha Gupta, meanwhile, reviews the ground situation, also meets the injured at the AIIMS Trauma Centre and asserts culprits will not be spared. Delhi Police registers an FIR against the building owner Hari Ram Bansal and others. The PG building allegedly collapsed during the renovation work on the ground floor. Multiple teams have been formed to trace the accused. BJP chief Nitin Navin hits out at the opposition over Prime Minister Modi's SRCC address, says the naraz fufas of the opposition were hit hard by Prime Minister's homeopathy jibe.
3: हम सभी ने देखा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के अंदर, समाज के अंदर असंतुष्ट रहते हैं, जो कभी भी किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। उन्हीं को उन्होंने एक नाराज फूफा करकर संबोधित किया।
2: It's a right-wing goon. Swatantra Bhardwaj, who's been sent to one-day judicial custody. Teen protester claims Swatantra's supporters have been abusing and threatening her. Another complaint filed against the victim and teen protester, alleging insult to Hindu gods. Man allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area captured on camera. Eyewitnesses say victim was attacked with lathis and sticks. Cops launch a manhunt for suspects.

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: एजेंसीज काम कर रही हैं हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है उन बच्चों की जान बचाना जो हो सकता है अभी भी अंदर फंसे हो 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है मैं अस्पताल जा रही हूं उनमें से सबकी हालत जैसी है उसको समझने की जरूरत है और इतना कह सकती हूं कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that Sejinder Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue where The National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Now, a team of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है. हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर. पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है. एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है. और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी. इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे. कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं, सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है.
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे. सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है. 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी. और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी. वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे. तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ के अंदर सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की.
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत. और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता. तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है. अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है. तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे. अपना नाम बताइए.
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी.
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे. एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं. एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है और उसमें 2 बेड होते हैं साथ में. और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं. रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको. खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार. सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है. रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी,
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी ही थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग. अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है.
10: हाँ नीचे,
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है. बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते हैं.
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक. अच्छा. और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे. और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं. ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो.
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी.
9: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें और बेसमेंट में काम चल रहा था. सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में. जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा. आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी. तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं.
11: पैन करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं. करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी. 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं. बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए. मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा. यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं. अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे. उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं. एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है. और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है.
0: Amid this, more breaking news that's coming in with regards to the ABVP now protesting at Delhi Civic Body office. Now, just a little while back, ABVP members vandalized the MCD office over the collapse and they've come out to demand accountability. The MCD office vandalized during the ABVP protest itself. There are visuals that have come in of the vandalism that was in fact, that this particular place in fact suffered. During the very protest, ABVP demands the resignation of the civic body chief after the collapse. The police statement has also come in regarding the civic center protest. They've said that around 150 to 200 ABVP students

0: students gathered at the Civic Center to protest against today's incident at Saktiniketan. The protesters entered the Civic Center through gate number 5, sat outside the main building, raising slogans and protesting against the functioning of the MCD. Subsequently, some protesters attempted to forcibly enter the main Civic Center building, resulting in jostling with the police personnel. Around 15 students were detained and taken to the police station at Kamla Market, where action under the Delhi Police Act has now been initiated. Listen in to some of the voices of these protesters.
1: Delhi Prashasan ke wajah se भ्रष्ट एमसीडी कमिश्नर की वजह से आज हमने अपने साथियों को खोया है। एबीपी इस कमिश्नर का इस्तीफा लेके रहेगी, चाहे इसके लिए रात भर रुकना पड़े, खून का एक कतरा अगर बाकी होगा तब तक हम यहाँ खड़े हैं और एमसीडी भ्रष्ट एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा लेके रहेंगे।
2: दिल्ली प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ पर लोग मर रहे हैं, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, मलबे के अंदर दबे हुए हैं, वहाँ पर एमसीडी के अधिकारियों को तो अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पे अपनी दादागिरी जमा रहे हैं, ऐसे दिल्ली पुलिस के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। एमसीडी कमिश्नर को यह होना चाहिए था, वो अपने ऐसी कमरे में बैठे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद की मांग है।
3: एमसीडी जो ये कार्य कर रहा है, ये चीजें छोड़ दे, अगर विद्यार्थी परिषद अपनी पे आ गया तो ये बिल्डिंग चकना चूर कर देगा।
0: Now, let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
4: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए और ऐसे हादसे दोबारा न हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी न हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
5: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी, ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है। और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
6: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
7: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
8: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
7: निश्चित होगा और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
9: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
10: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: On that note, viewers, we are wrapping up the bulletin this hour right here. But do keep tuning in to India Today as we are following this story very closely and will continue to do so through the upcoming days to get to the end of what indeed caused a tragedy of this scale in the heart of the national capital. Thank you for tuning in. This is Riya Kundu.
11: You are watching India Today.

0: He's a pediatrician who left his very flourishing practice to fight for the children of the country. क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूला मिल्क में?
1: कितनी खबरें आ रही हैं यूएसए से, जब फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ा, सीवियर फाइन हुआ है अमेरिका में तो, को कि उन्होंने बताया नहीं कि बच्चों को बीमारी हो सकती है. उस मदर ने जो केस किया जिसके बच्चे की डेथ हुई थी, उसने कहा हमें बताया ही नहीं है, हमें बताते तो हम ना देते.
0: कैसे आया ये फॉर्मूला फीडिंग करे?

0: बस
1: बैड मार्केटिंग से ही आया है. ऑफर्ड आर्किटेक्चरल असिस्टेंस टू हॉस्पिटल्स एंड सेपरेटेड मदर्स एंड बेबीज. सेवेंटीज की बात है. स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों को देखिए.
0: हाँ.
1: कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे अगर मदर है तो बच्चे सिक्स फ्लोर पे हैं. वो इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है वो कई काम नहीं होने देती. ये वर्ल्ड वाइड नोन है.
0: He fought the biggest food company, not in India, but in the world, to protect the health of kids and children of India.
1: जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था छोटे बच्चे बहुत आते थे टू थ्री मंथ्स के. तो मुझे लगा ये इतने बीमारी आ रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी बॉडी हैड ए पाउडर मिल्क इन देयर हैंड्स. अस्पतालों में वो डिब्बा उनको दिया गया. फिर मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन करी. आप पांच डिब्बे खरीदते थे तो पांच फ्री मिलते थे. ये भी ऐसे ही अब डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रही है कंपनी और उनसे रीलें बनवाती है. जैसे ये कॉन्फ्रेंस है अभी
0: Confluence 2.0 International Speaker Program. So under the law, all of this is illegal.
1: Under the law, it is illegal.
0: A lot of mothers gravitate towards formula milk because they think ki, I'm not able to make enough milk.
1: If there is a surgical removal of the breast because of the reasons, so those are the only mothers who physiology cannot breastfeed. Normal or cesarean, that doesn't matter. Breastfeeding has to succeed. Cesarean doesn't mean that You have to give formula because it was a cesarean. If a health system doesn't support a mother, she is likely to fail. Because this failure occurs in the hospitals. In Hindustan, 90% women deliver in the hospitals now. But only 41% start breastfeeding within an hour of birth.
0: It is because of doctors like him that my trust in doctors has risen.
1: जब फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया 60s 70s में तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है इसको इंट्रोड्यूस करने का. कि जब कुछ इंट्रोड्यूस होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से चाहे वो फूड है चाहे फार्मा है तो कोई पूछता नहीं है. जब उसके अगेंस्ट बात खड़ी होती है
0: उसका आपको
1: एविडेंस देना पड़ता है.
0: आपको डर नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट जाने में? Hello and welcome. This is Dr. Versus Internet. I am particularly very, very humbled with the guest we have for you on the podcast today. He is a pediatrician. He is a pediatrician who left his very flourishing practice. He had a 30-bed hospital. He left that practice to fight for the children of the country. He fought... मैं नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का बिकॉज दैट केस इज स्टिल गोइंग ऑन. बट ही फॉट द बिगेस्ट फूड कंपनी नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ किड्स एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट कंपनीज कैन नॉट एडवर्टाइज फॉर्मूला मिल्क इन इंडिया. दैट लॉ इज नाउ इन प्लेस. इट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स लाइक हिम दैट माई ट्रस्ट इन डॉक्टर्स has risen. So I'm very, very delighted to have Dr. Arun Gupta here with us on the podcast.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much for being here.
1: This is a pleasure meeting you as well as being on this podcast. I love this work.
0: I am sure you do because aapke jaisa kaam koi aur nahi kar sakta hai. Main agar bahar jaake kisi doctor se baat karun aur unse bolun ki kya aap apni flourishing practice chhodkar एक छह लोगों का एनजीओ चलाएंगे और 20-30 सालों तक उसको लड़ते रहेंगे कंपनी से उसके लिए, तो मुझे नहीं लगता कोई और मिलेगा.
1: मुश्किल है ऐसा. बट देयर आर पीपल, यू नो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल व्हिच हैव टू डू समथिंग और द अदर. सो आई एम वन ऑफ देम. सो वी डिसाइडेड टू डू दिस वे बिकॉज मेडिसिन डजंट मीन दैट यू हैव टू बी क्लिनिकल. Medicine and especially pediatrics. If you look into the history of pediatrics, 90% and above pediatrics is actually preventable pediatrics.
0: Yeah.
1: So that teaches you a lot when you were a student. So probably that thing stayed with me एंड आई हैड टू जंप इनटू दिस वर्क.
0: हम आज पूरी बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में. आपने कैसे डिसाइड करा इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क के अगेंस्ट एक मुहिम निकालने का. आपने कैसे इन बड़ी बड़ी कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट तक आप लेकर गए. आपने कैसे नए लॉज इन्फोर्स कराए. पर सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए जो बहुत अवेयर है, हेल्थ अवेयर है, अच्छा करना चाहती है बस जानती नहीं है कैसे,

0: ठीक है, उनको आप मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूला मिल्क में।
1: आई थिंक द फॉर्मूला मिल्क में पर से अगर पाउडर मिल्क हो उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि वो पाउडर मिल्क जो है वो स्टेराइल नहीं होता। WHO ने 2005-06 में ये एनालिसिस करके नटशेल में निकाला कि इट्स नॉट ए स्टेराइल प्रोडक्ट बाई द प्रोसेसिंग इटसेल्फ। उसकी प्रोसेसिंग ऐसी है कि वो उसको जो भी एनिमल की इंटेस्टाइन से कुछ बैक्टीरिया ट्रेवल करते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं। जब हम उसको पानी में घोलते हैं वो कुछ उसमें फ्लरिश करने लगते हैं। फिर उसके बाद WHO ने गाइडेंस जारी करी कि जी उसको 1 घंटे में, फिर अब 2 घंटे में, एक बार आपने डिसॉल्व कर लिया पाउडर को उसके बाद आप उसको इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। पर अगर आप कर रहे हैं, जैसे रख दिया, कई बार ऐसा होता है फैमिली में मदर्स के साथ काम में है, इधर से इधर गए तो बोतल रख दिए इधर, तो घंटे बाद फिर वही पिला दिया, तो देर इज ए अमाउंट ऑफ रिस्क विच इंक्रीजेस फॉर गेटिंग एन इन्फेक्शन, एंड दैट टू वेरी डेडली इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली इन द न्यू बॉर्न बेबीज। सो दैट वॉज द अलर्ट WHO इशूड इन 2006-07 टू अलर्ट दैट दिस इज नॉट ए स्टेराइल प्रोडक्ट। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एडवाइजरीज वेंट आउट टू द पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट के भी, ऐसे नर्सरीज में भी, जैसे यूज करो तो इसको एक बार डिजोल्व करो तो आप थोड़ी देर के लिए ज़्यादा इसको मत रखो, कोशिश करो कि फटाफट जो भी यूज हो गया उसको
0: महंगा
1: बाकी को
0: होता है
1: थ्रो
0: सर,
1: कर
0: कई
1: दो।
0: लोग इसलिए करते हैं
1: आई
0: क्योंकि उनको
1: एग्री,
0: लगता है
1: उनको
0: वेस्ट हो
1: अपनी
0: गया।
1: पता भी नहीं है ना, बीमारी का, बीमारी तो बहुत महंगी है, वो पाउडर से बहुत ज्यादा महंगी बीमारी। सो पर से द प्रॉब्लम इज नॉट मोस्टली विद द फॉर्मूला इटसेल्फ बट इट्स बैड मार्केटिंग। सो व्हाट वी फॉट वाज द बैड मार्केटिंग पार्ट। ये अवेयरनेस इशू है कि फॉर्मूला बैड है या नहीं है, बिकॉज बोतल आती है बीच में, फिर हाइजीन इश्यूज आते हैं, वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं। मतलब आजकल हम मानते हैं कि पीपल आर अवेयर ऑफ दैट, कि वो सेफ्टी, मुझे लगता है कि सेफ्टी इश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर ये इनहेरेंट कंटेमिनेशन किसी को पता ही नहीं है। हम बोतल को साफ कर लेंगे बट ये तो इंश्योर नहीं ना कि हमें याद है कि हमें किसी ने बताया है। मुझे नहीं लगता कहीं एडवाइजरी इशू हुई है यहाँ पे भी,
0: सर डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं।
1: मैंने उनको भी नहीं बता, उनको कोई एडवाइजरी इशू करे तो पता चले। तो इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है वो कई काम नहीं होने देती है, ये वर्ल्ड वाइड नोन है ये फैक्ट, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा पता चले कि ये। अभी अभी आप देखिए कितनी खबरें आ रही हैं यूएसए से, इधर से, जब फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ा, बच्चे बीमार
0: एबिट
1: हुए।
0: का।
1: हाँ, एबट का भी है और दो कंपनियों का हुआ है, अभी फाइन हुआ है, बहुत सीवियर फाइन हुआ है अमेरिका में तो एबट को, कि उन्होंने बताया नहीं कि बच्चों को बीमारी हो सकती है। वो बड़ी सीरियस बीमारियां होती हैं, जैसे फार्मूला से वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, एक बड़ी टेक्निकल टर्म है बट इट्स ए वेरी डेडली डिजीज। तो उस वजह से उस मदर ने जो केस किया जिसके बच्चे की डेथ हुई थी, उसने कहा हमें बताया ही नहीं है, हमें बताते तो हम ना देते, कि रिस्क है चाहे 1% है चाहे नहीं है, चाहे 0.11% है, तो बताना तो चाहिए ना मार्केट। तो दैट कम्स अंडर बैड मार्केटिंग। सो
0: करेक्ट।
1: मार्केटिंग में आप बताते हो कि बच्चे का ब्रेन बढ़ेगा, इसकी आंखें शार्प हो जाएंगी, इसका यू नो बॉडी अच्छी बनेगी, स्मार्ट बनेगा, कई कुछ, मतलब कई कुछ क्लेम आप जोड़ देते हैं, क्योंकि वो बेचना उनको ज्यादा, जरूरत से ज्यादा है। सो वहां पे
0: पर ये
1: मुझे
0: नहीं बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है उसके
1: क्या
0: साथ,
1: क्या नहीं
0: ट्रांसपेरेंसी नहीं
1: करना,
0: है।
1: ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट फिर आप जो जितनी नीड है उतना तो ठीक है, पर आप उसको एक्स्ट्रा नीड नहीं ना क्रिएट करना चाहिए, वो तो लॉजिकल भी नहीं है और एथिकल भी नहीं है।
0: पर डॉक्टर अरुण, आज की अगर हम बात करें तो आजकल की जो माएँ हैं, और ये सिर्फ दिल्ली बॉम्बे का प्रॉब्लम नहीं है, कानपुर लखनऊ जैसी
1: जी
0: जगहों पर भी ऐसा होता है कि बिफोर यू हैव इवन हेल्ड योर बेबी,
1: जी
0: बिफोर यू हैव इवन अंडरस्टूड वॉट इज हैपनिंग, समबडी एल्स इज टेकिंग अ कॉल दैट योर चाइल्ड, द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव व्हेन दे एंटर दिस वर्ल्ड विल बी फॉर्मूला। आपसे बिना पूछे, अगर एक
1: जी
0: सिजेरियन मदर है समझ लीजिए,
1: जी
0: ठीक है, उनका सी सेक हुआ है, वो थकी बैठी हुई है, कई केसेस में शी स्टिल नॉट बैक टू हर सेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट एटसेट्रा, उसमें मदर से बिना पूछे, बिना उनको इन्फॉर्म करे, बिना उनको बताए कि इसके क्या ड्रॉबैक्स है या नहीं है, हॉस्पिटल्स बच्चों को सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं,
1: हाँ, बिना पूछे देते हैं।
0: क्या ये लीगल है?
1: इसमें इलीगैलिटी नहीं है, बिकॉज मेडिकल एडवाइस के ऊपर अगर दिया जाता है वो इलीगल नहीं है, बट इसमें

0: या नहीं है, हॉस्पिटल्स बच्चों को सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं,
1: हाँ बिना पूछे देते,
0: क्या ये लीगल है?
1: इसमें इलीगैलिटी नहीं है, बिकॉज मेडिकल एडवाइस के ऊपर अगर दिया जाता है वो इलीगल नहीं है, बट इसमें एथिकल कंसर्न बहुत बड़ा है कि विदाउट दैट नॉलेज ऑफ अ पेरेंट, विदाउट गिवन द फुल नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, तो आप उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं कह सकते। सो हमने एक बार मुहिम चलाई थी, ए फ्रेंड इन मुंबई, शी इज़ ए इंजीनियर, जिंसी वर्गीज, शी स्टार्टेड एक, अभी भी वो change.org पे पिटिशन चली हुई है, 1 लाख से लोग ऊपर साइन कर चुके हैं कि भाई कम से कम फैमिली को और मदर को और फादर को किसी को भी कंसेंट साइन तो कराओ कि फार्मूला देना है। तो वो मैंने और उसने ज्वाइंटली चलाई हुई है, बट पॉइंट इज के सुनने वाले कम है लोग, सुनने वाली सरकार नहीं है हमारे पास। वो जब तक नहीं होंगे वो रियलाइज नहीं कर पाते, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर या प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं फार्मूला, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस चीज का के बताना चाहिए। प्रोबेबली
0: तो
1: द
0: क्यों नहीं
1: हाइंडसाइट दे
0: बताते हैं?
1: बिलीव दैट के ये ठीक है, एक ही बात है।
0: मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों है? डॉक्टर्स भी इसके बारे में नहीं बताते हैं, नर्सेस भी नहीं बताती हैं, इकोसिस्टम में हमारी माएं नहीं बताती हैं इसके बारे में.
1: देखो एक तो बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर है उसकी मेकिंग में ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं उसमें। वो डॉक्टरों को बनाने के बाद जैसे फार्मा इंडस्ट्री के हाथ में छोड़ दिया जाता है, तो वो जो दवाइयाँ बताते हैं, तो होल थिंग इज ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। तो ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन में ये प्रिवेंटिव पार्ट जो है, ये कोई कोई डॉक्टर जो अपने आप सीखना चाहता है वो सीख जाता है, प्रैक्टिस में जैसे कोई स्किल
0: पढ़ाई
1: ट्रांसफर
0: में
1: नहीं
0: ही
1: आ रही।
0: नहीं.
1: नहीं पढ़ाई में लिखा होगा कहीं अच्छा है बुरा है, बट वो बात है कि इतनी अच्छी स्किल्स पढ़ाई में ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, जो कि नर्सेज में बेटर है थोड़ा। हमने सिलेबस एक बार चेक किए थे स्किल्स के। उसके बाद जो डॉक्टर्स की किताबें हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, ये लैक करती हैं स्किल वाले काम में। नॉलेज दे रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज गुड, वो तो बच्चे को भी पता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज गुड। अगर आपको किसी को पूछ लीजिए डिब्बा
0: नहीं,
1: वर्सेस
0: सबको
1: ब्रेस्ट
0: नहीं पता है सर.
1: ब्रेस्ट
0: सबको
1: मिल्क इज गुड फिर
0: सबको
1: भी
0: नहीं,
1: पता है।
0: सबको ये नहीं लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क से तो पेट नहीं भरता है, बच्चा ठीक से नहीं सोता है, टॉप
1: नहीं
0: फीड तो देनी पड़ेगी.
1: वो एक और बात है, मेरा कहने का मतलब ये था कि व्हेन आई से गुड मींस इन टर्म्स ऑफ हेल्दी, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल फीडिंग, कंपेयरिंग आर्टिफिशियल फीडिंग
0: यू
1: जितनी
0: कॉलिंग इट
1: रिसर्च।
0: आर्टिफिशियल फीडिंग है.
1: यस इट इज, वी हैव बीन सेइंग इट फॉर एजेस। आर्टिफिशियल फीडिंग इज आर्टिफिशियल फीडिंग, और इसमें कोई वो नॉन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकली आर्टिफिशियल है। तो वो जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में 80s में, साइंटिस्ट वर चैलेंज्ड कि भी आप प्रूव करके दिखाइए कि ब्रेस्ट मिल्क बेटर है, राइट? बिकॉज जैसे आपके पास एविडेंस नहीं है। जब फार्मूला इंट्रोड्यूस किया 60s 70s में, तब तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है इसको इंट्रोड्यूस करने का। वो स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है हर चीज पे, कि जब कुछ इंट्रोड्यूस होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड से, चाहे वो फूड है चाहे फार्मा है, तो कोई पूछता नहीं है। जब उसके अगेंस्ट बात खड़ी होती है तो फिर बात जो अल्टरनेटिव आना चाहिए उसका
0: जो नेचुरल
1: फिर
0: ऑल्टरनेटिव
1: आपको
0: है उसका आपको एविडेंस देना
1: एविडेंस
0: है.
1: देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेनस्ट्रीम नहीं होती। एजुकेशन में भी ले लीजिए, मेडिकल एजुकेशन या उसके बाद हायर एजुकेशन जो पीडियाट्रिक्स की है, ये न्यूटोलॉजी, डे बाई डे दे आर गेटिंग मोर इन टेक्निकल, जैसे गैजेटरी बेस्ड। आपके अस्पताल में कितने इनक्यूबेटर हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ये हैं, आप उस तरफ ज़्यादा वो हाई एंड है। नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट नेसेसरी, बट आई आई आई थिंक द मेडिकल डॉक्टर हैज़ टू पुट हिज माइंड इन टू दिस एरिया ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू।
0: अ लॉट ऑफ मदर्स ग्रेविटेट टुवर्ड्स फॉर्मूला मिल्क बिकॉज दे थिंक कि आई एम नॉट एबल टू मेक इनफ मिल्क,
1: जी
0: मेरा बच्चा भूखा है, मेरे मिल्क से पेट नहीं भर रहा है. ये क्या मिथ है कि मदर्स कांट मेक इनफ मिल्क?
1: ये सोनल, दिस इज अ परसेप्शन, दिस इज अ परसीव्ड रिस्क एक्चुअली। इट्स नॉट ए डिजीज.

0: सो होता क्या है, व्हेन ए मदर सेज दिस टू ए डॉक्टर और ए हेल्थ वर्कर वेयर, तो उसका सफट से जवाब आता है कि ये लीजिए, डिब्बा ले लीजिए। वो एक बीमारी को ट्रीट करता है अंदर से, राइट, कि उसको लगता है अभी दूध पूरा नहीं आ रहा, बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो अपनी तरफ से एक तरह का इलाज करता है उसका। बीमारी जो है नहीं,
1: नहीं है बीमारी।
0: एक्चुअली बीमारी नहीं है ये बीमारी होती तो शायद इसका इलाज भी मिल जाता आज तक। इट इज ए परसीव्ड रिस्क विच इज अ बेस्ड ऑन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। देर आर टू टू हार्मोन्स इन द बॉडी, वन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन, एज द नेम सजेस्ट इट प्रोड्यूसेज मिल्क। इन द ब्रेस्ट में सेल्स होती हैं, उस सेल्स में सिक्रीट होता है, जैसे हमारे आंसू आते हैं तो उसी तरह उन सेल्स में दूध जो है वो बनता है, बन के वो बाहर आता है, छोटी छोटी पाइपों में से नीचे आता है। फिर जो वो सेल्स हैं जहाँ पे वो दूध बन रहा है उसके इर्द गिर्द माइक्रो मसल्स होते हैं, तो वो उनको अब पुश करना है दूध को नीचे। अब पुश करने के लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए। ऑक्सीटोसिन जो है वो जब बच्चा शुरू करता है फीड, प्रोलैक्टिन तो पहले से काम कर चुका होता है प्रेगनेंसी से ही,
1: करेक्ट।
0: जब
1: क्योंकि आपके
0: ऑक्सीटोसिन,
1: ब्रेस्ट
0: हाँ
1: इनलार्ज होते
0: जी
1: हैं व्हेन
0: जी
1: यू आर प्रेपिंग अप।
0: हाँ, तो वो तैयारी हो रही होती
1: थर्ड
0: है
1: ट्राइमेस्टर से शुरू हो
0: जी।
1: जाता है।
0: अब ऑक्सीटोसिन काम उस दिन शुरू करता है जब बच्चा सकलिंग शुरू करता है, तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स ऊपर से चालू होती है, ब्रेन से रिलीज होता है, वो जाता है जाके फिर दूध को आगे बढ़ाता है। द टू मेजर डिफरेंसेस इन दीज टू हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन डिपेंड्स ऑन द हाउ मच बेबी सकल्स, लाइक मोर सकलिंग मोर मिल्क। सो ऑक्सीटोसिन डिपेंड्स ऑन मदर्स स्टेट ऑफ माइंड, इफ इट इज डाउट पेन एंग्जाइटी, तो ऑक्सीटोसिन थोड़ा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन कम है तो फ्लो कम होगा, दूध पड़ा है
1: बट इट्स नॉट
0: बना हुआ
1: फ्लोइंग।
0: है, इट्स जस्ट जस्ट डजंट फ्लो वेल। सो उसका इलाज क्या है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, दैट इज वेयर द रोल ऑफ इलेक्ट्रिशियन पर्सन कम्स, और ए डॉक्टर और ए नर्स, हूसोएवर वांट्स टू हेल्प ए मदर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट मिल्क विल नेवर बी बिलो द नीड ऑफ ए बेबी इवन इफ दे आर टू। इट्स हार्ड वर्क नो डाउट, इवन फीडिंग वन बेबी एक्सक्लूसिवली, बट इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एंड व्हेन आई ऑलवेज से इफ यू डोंट सपोर्ट अ मदर, इफ यू मीन्स द होल हेल्थ सिस्टम, इफ ए हेल्थ सिस्टम डजेंट सपोर्ट ए मदर शी इज लाइकली टू फेल। देन कम्स द रोल ऑफ द फैमिली, बिकॉज दिस फेलियर अकर्स इन द हॉस्पिटल्स, फर्स्ट फेलियर, उसका डेटा भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में 90% वीमेन डिलीवर इन द हॉस्पिटल्स नाउ, बट ओनली 41% स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर ऑफ बर्थ,
1: ओनली फोर्टी
0: ओनली फोर्टी
1: परसेंट
0: वन परसेंट दिस इज द NFHS 5 डेटा, 6 का भी आया नहीं है, पता नहीं क्या इम्प्रूवमेंट, पर NFHS 4 और 5 में कोई फर्क नहीं पड़ा 10 साल में। अभी तक आप देखिए, तब तक अगर 1 in 2 वुमेन यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट, वेदर दे आर नॉर्मल और सजेरियन, दैट डजेंट मैटर, ब्रेस्ट फीडिंग हैज टू सक्सीड। सजेरियन डजेंट मीन दैट यू हैव टू गिव फॉर्मूला बिकॉज इट वॉज ए सजेरियन,
1: नो बट दिस इज द मिथ। पीपल थिंक क्योंकि सिजेरियन हुआ है फॉर्मूला तो देना ही
0: तो
1: पड़ेगा।
0: हेल्थ सिस्टम उसको बिलीव करवाता है। उधर से फैमिली तो फील करती है कि मदर को शायद थकावट है, उसको रेस्ट चाहिए, हम नहीं ये कह रहे कि नहीं है, बट जो जो ये हार्मोन रिलीज होते हैं इनसे भी वो मदर को रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसी को डील करने के लिए, कि लेटे लेटे दिया जा सकता है, और ऐसा तो है नहीं कि लगे ही रहना है। सो देर आर पॉसिबिलिटीज इफ, सो द कंडीशन इज दैट शी शुड बी वेल सपोर्टेड। ऑटोमेटिक नहीं कुछ होता है कि ऐसे बोल के चले जाए, नर्स आई डॉक्टर आई बोल के चले गए दूध पिलाओ अपना, बहुत बोल रहे हैं ऐसे, तो वो भी ठीक है, सिर्फ मैसेज देना भी ठीक है, बट दैट इज नॉट
1: तो
0: इनफ
1: क्या करना
0: टू
1: चाहिए?
0: सक्सेसफुल करने
1: मुझे
0: के
1: एक
0: लिए।
1: सिनारियो बताइए। अगर कोई इस समय मदर्स देख रही हैं जो एक्सपेक्टिंग है, जो डिलीवर करना चाह रही हैं, उनको
0: जी
1: लग रहा है अब सी सेक्शन हुआ तो
0: जी
1: मतलब फॉर्मूला ही मिलेगा। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है,
0: नहीं है ऐसा,
1: तो क्या तरीका है इसका?
0: इसका तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान आई थिंक एक तो मदर को या फैमिली को, मदर फादर कोई भी फैमिली मेंबर हो, उनको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि ये क्या है. अब हमारी जो साइट है ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया की, उस पर हमने दो दो तीन तीन मिनट के 6 वीडियो मॉड्यूल बना के डाले इसके लिए. एक इस तरह की चीज है, एक जैसे
1: कि ब्रेस्ट फीड कैसे करना है.
0: हाँ, उसमें 6 वीडियोस हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो आने चाहिए फॉर सक्सेस, विच इंक्लूड सर्जेरियन सेक्शन, विच इंक्लूड हाउ टू एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, विच इंक्लूड वाई शुड ब्रेस्ट फीड, विच इंक्लूड अगर बच्चा मान लीजिए सर्जेरियन होता है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप. तो वो जो 5-6 चीजें जरूरी हैं उन्हीं की हमने बना के वहां पे डाली है. तो उसको हमने उसका नाम भी दिया था, यू डिसाइड, यू नो, सो आई डिसाइड फॉर फीडिंग माई बेबी, नोबडी एल्स. सो यू गेट द पावर, यू गेट द नॉलेज एंड यू गेट द पावर. So this is a message for the mothers.
1: So the doctor will not decide, the nurse will not decide, the hospital will not decide. No, I will decide if I want to feed my child.
0: Yes, and for that, if a mother sees those 6 videos, and in addition, if she wants to read half an hour, we have a small booklet on our website, you know, guide for parents. For
1: example, I'll put those links.
0: It's available in 9 languages.
1: Yeah, yeah.
0: Right. So any mother can read that.
1: But समय समझ नहीं पा रही हूँ. आप अगर आप सी सेक्शन से निकल कर आए हैं, पोस्ट ऑप में आपको होश नहीं आया है, तो आप कैसे ब्रेस्ट फीड करेंगे?
0: मैं आ रहा हूँ उस पर. अब तो ये तो एक प्रेपरेशन हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेपरेशन हो गई कि आपको क्या है. तो आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए सपोर्ट के. तो आप अपने हेल्थ सिस्टम को बोलिए कि आई वॉन्ट टू ब्रेस्ट फीड. राइट, सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप एज ए मदर. So you need to tell the doctor attending on you, gynecologist है और या फिर मान लीजिए सर्जेरियन होता है तो जो बाकी वहाँ पे anesthetist है, या you have to declare your intent.
1: Okay.
0: I want to breastfeed, kindly arrange whatever support system you have, somebody by the side who can help me. वो ये करेंगे कि बेबी को पैदा होते ही, पैदा होने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, नॉट जस्ट ब्रेस्ट फीडिंग. वो कहते हैं कि 1 घंटे में इनिशिएट करनी चाहिए. ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे फटाफट पीने लग गया बच्चा. उसको बच्चे को लाना है यहाँ पे. जब बच्चा पैदा हुआ उसको स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट देना होता है. और स्वीडन ने बड़े साल पहले डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था, इफ यू पुट द बेबी नेकेड ऑन द नेकेड मदर्स चेस्ट, बेबी क्रॉल्स टू गो टू द ब्रेस्ट. अंदर से ये स्किल्स हैं. नेचर टेल्स देम वेयर टू गो. मे बी दे वर सिंकिंग, देयर इज अ स्मेल देयर, द बेबी गेट्स दैट.
1: या या, दे कैन स्मेल इट.
0: सो बेबी रीचेस, कैचेस द निपल. ये उस वीडियो में दिखाया गया था. आई थिंक मैंने जब शुरू अपने करियर में ये देखी थी फिल्में. व्हाट आई मीन इज के समबडी शुड असिस्ट ब्रिंगिंग दिस बेबी, helping the mother to start, so initiating even, that process.
1: Yeah,
0: she can lie down after the cesarean.
1: Table even pe, if she's unconscious.
0: No, unconscious तो कमी बहुत rare है कि आपको GA में करते हैं. Cesarean section में unconscious नहीं होती मदर. अगर होते भी है, मान लीजिए वो जब आप GA का असर खत्म हुआ, general anesthesia का जब असर खत्म हुआ, तो हम कहते हैं उसी time शुरू कर लो. तो 1-2 घंटे में वो भी खत्म हो जाता है. हम ये कह रहे हैं कि मदर को लाइंग डाउन में ही रखिए. लाइंग डाउन में ऐसे सीधा रखें, ऊपर से भी बच्चा पी सकता है. इफ शी वांट्स टू टर्न होके भी पी सकता है. बैठना कोई जरूरी नहीं होता उस समय कि बैठ के ही पिलाना है या पर्टिकुलर पोस्चर लेना है, ऐसा नहीं होता. वो बच्चा ऊपर से भी पी सकता है. तो हमने देखा है कई बार अपने अस्पताल में जिसमें मैं काम करता था, हम करते थे, पॉसिबिलिटी थी.

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sanjay Sandhu, they have all reached at the site. And now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is there, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर। पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है। एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें सात से आठ लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम आठ दस भी हो सकते, पंद्रह भी हो सकते, तीस भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के चार लोगों को निकाल लिया गया है।
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन ढाई घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, डेढ़ बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी। और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा डिली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी हैं जिसमें छात्राएं रहती हैं, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत। और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, हादसा हुआ है को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे, अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, बहुत बेकार
10: सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को। अच्छा,
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: तान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
13: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
14: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
15: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
14: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
16: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, इंडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सकें, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
17: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे हैं और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
18: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here, at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
19: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
18: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
19: दो आदमी थे।
18: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
19: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे वो करूंगा।
18: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
19: हाँ,
18: आपको भी मारूंगा।
19: हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
18: किसको? पुलिस को फोन किया?
19: हाँ जी।
18: पुलिस कितने देर में आई?
19: मैं अंदर चला गया था। फिर
18: कितने बजे की घटना होगी?
19: ये 4 बजे गए।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स. Swatantra Bharadwaj's Police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
20: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
21: Police ne is mamle mein chupte chupate hue ek bar fir video conferencing ka istemal kara aur unko kehte hain jo court ne ek din ki JC di hai kal ko concern court mein jo hai Swatantra Bhardwaj ji ko pesh kiya jayega.
20: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
22: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
20: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: Look, Swatantra Bhardwaj ne jo admit kiya, uske anusar uske upar karwai honi chahiye. और उसको अरेस्ट किया गया है उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
20: दिस इश्यू हैज वंस अगेन रीइग्नाइटेड द डिबेट ओवर प्रेजेंस ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द प्रोटेस्ट एंड मोर स्केलेटन्स आर एक्सपेक्टेड टू टंबल आउट ऑफ द क्लोजेट. ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे.
0: Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sattvik and Chirag bounced back after initially trailing and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sattvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. holding their nerve at a crucial interval. Satvik Chirag mussed up 5 straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Satvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour, but do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
1: You are watching India Today.

ये सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है, क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा। छात्रों को, सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल मत बोलिए। 13 और 26 में यही फर्क हो गया है प्रधानमंत्री जी, जब हम छात्र थे तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करते थे, आवाज बुलंद करते थे, और हम देश विरोधी नहीं कहे जाते थे। हम पर यूएपीए नहीं लगता था, एनएसए नहीं लगता था। प्रधानमंत्री जी, 13 वर्षों का ये हासिल है। आपकी ग्रोथ स्टोरी कितनी समावेशी है ये मैं आर्टिकल 39 संविधान की धारा के तहत पूछूं तो मैं दिमागी नक्सल हूं, नाराज फूफा हूं। वैसे नाराज फूफा की याद लाइटर वेन में कह रहा हूं तभी आती है जब विदाई का वक्त आता है।

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra, and later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site, and even we have seen that LG Sanjay Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है. हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर. पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है. एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है. और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी. इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे. कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं, सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है.
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे. सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है. 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी. और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे. तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ कैंप तक सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की.
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी हैं जिसमें छात्राएं रहती हैं, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत. और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता. तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है. अब हादसा हुआ है को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है. तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे. अपना नाम बताइए.
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती हैं?
10: हाँ जी.
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे. एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं. एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, हमारा जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को। अच्छा,
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
9: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े

0: 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी। 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है। और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
1: Now, let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
2: एक हादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
3: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी, ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है। और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
4: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो ही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
5: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
6: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, क्योंकि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
5: निश्चित होगा और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
7: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
8: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे हैं और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
1: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली हैज बीन रॉक्ड बाय अ शॉकिंग केस ऑफ मर्डर। अ यंग मैन वाज अलेजेडली बीटन टू डेथ विद स्टिक्स इन ईस्ट दिल्लीज मयूर विहार एरिया अर्ली संडे मॉर्निंग। द हॉरिफाइंग इंसिडेंट वॉज इन फैक्ट कैप्चर्ड इन अ सीसीटीवी कैमरा। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन। The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
9: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon.

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sejinder Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर, पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें सात से आठ लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम आठ दस भी हो सकते हैं, पंद्रह भी हो सकते हैं, तीस भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के चार लोगों को निकाल लिया गया है।
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन ढाई घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, डेढ़ बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा ही करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंप तक सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत। और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, अब हादसा हुआ है को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है, तो कैसे पीजी चलता है कैमरे पर खुलासा करेंगे। अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे, एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं, एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा है?
5: काम चल रहा था पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जो इसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का,
13: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
14: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
15: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
14: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
16: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
17: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
18: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
19: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
18: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
19: दो आदमी थे।
18: दो आदमी आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
19: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे भी करूंगा।
18: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
19: हाँ,
18: आपको भी
19: मारूंगा। हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
18: किसको? पुलिस को फोन किया? पुलिस कितने देर में आई?
19: मैं अंदर चला गया था। फिर
18: कितने बजे की घटना होगी?
19: 4 बजे गए।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स। Swatantra Bhardwaj's Police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
20: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
21: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
20: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
22: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल, तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
20: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: देखिए स्वतंत्र भारद्वाज ने जो एडमिट किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
20: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau Report, India Today.
0: A TVK functionary has been brutally hacked to death in Chennai. The victim, Kannan, a TVK functionary and a history cheater, was chased by an armed gang and attacked with machetes. The attack was even caught on CCTV, with the disturbing visuals now surfacing. Kannan was reportedly a history cheater with a criminal record, according to police sources. He had allegedly been involved in two murder cases and one attempt to murder case in the past. Tamil Nadu police have seized the CCTV footage from the crime scene as the probe into the TVK functionary Kannan's murder has now intensified. Three special teams tracking the killers while five have been detained. Police are now probing whether his criminal background and previous enmity had played a role in the motive behind the attack. But the murder has now triggered a sharp political confrontation over Tamil Nadu's law and order. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the Vijay government, questioning its law and order record and alleging the TVK has become a refuge for criminals. Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sattvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sattvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sattvik Chirag notched up 5 straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sattvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
1: You are watching India Today.

आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो, व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सबको हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सबको हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर जल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, Health Minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sejinder Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है. हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर. पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है. एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है. और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी. इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे. कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है.
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे. सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
6: हमारे यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे. हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनको बस आवाज आई, फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी. और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी. वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा ली करता है यहाँ पे. तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ कैंप तक सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की.
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत. और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता. तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है. अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है. तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे. अपना नाम बताइए.
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती
10: है? हाँ जी.
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे. एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं. एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने से बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को।
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते हैं।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक, और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
9: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार

0: इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे? उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब एक फीट की जो एक फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
1: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
2: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
3: जो पीजी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी? ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का,
4: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
5: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो
6: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
5: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
7: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
8: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे हैं और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
1: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
9: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person.

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. Five died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a five-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire five-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had five floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sejendra Sandhu, they have all reached at the site. And now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर। पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है। एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है, तो इन दोनों में भी पीजीज ही है। और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं, सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी। और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं, सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है, और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत। और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है। अब हादसा हुआ है, उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे। अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है, और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे ही
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने से बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है।
10: हाँ नीचे,
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जो इसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का,
13: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
14: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
15: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
14: निश्चित होगा और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
16: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
17: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
18: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
19: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
18: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
19: दो आदमी थे।
18: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
19: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया तो तुझे वो करूंगा।
18: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
19: हाँ,
18: आपको भी
19: मारूंगा। हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
18: किसको? पुलिस को फोन किया।
19: हाँ जी।
18: पुलिस कितने देर में
19: आई? मैं अंदर चला गया था। फिर
18: कितने बजे की घटना होगी?
19: 4 बजे का।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स। स्वतंत्र भारद्वाज इज Police custody has now been extended, even as Delhi Police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
20: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
21: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
20: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
22: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल, तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं. उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए, कुछ पता नहीं.
20: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: Look, Swatantra Bhardwaj ne jo admit kiya, uske anusar uske upar karwai honi chahiye. और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
20: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau report, India Today.
0: A TVK functionary has been brutally hacked to death in Chennai. The victim, Kannan, a TVK functionary and a history cheater, was chased by an armed gang and attacked with machetes. The attack was even caught on CCTV, with the disturbing visuals now surfacing. Kannan was reportedly a history cheater with a criminal record, according to police sources. He had allegedly been involved in 2 murder cases and 1 attempt to murder case in the past. Tamil Nadu police have seized the CCTV footage from the crime scene as the probe into the TVK functionary Kannan's murder has now intensified. 3 special teams tracking the killers while 5 have been detained. Police are now probing whether his criminal background and previous enmity had played a role in the motive behind the attack. But the murder has now triggered a sharp political confrontation over Tamil Nadu's law and order. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the Vijay government, questioning its law and order record and alleging the TVK has become a refuge for criminals. Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sathvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sathvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sathvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sathvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sathvik Chirag notched up 5 straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sathvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
1: You are watching India Today.
2: Five distinct faces, one common purpose. India informed and ahead, where the South finds a voice. Super 6. Sharp questions, zero distractions.
3: You also speak of poor children. Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
2: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
4: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
2: India first. Where decades of experience speaks.
6: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
2: News Today. Exclusives that shape the headlines.
25: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
2: News Track. Every defining moment. Every story that matters. The team that always speaks for you. Because you matter.

ये सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है, क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा। छात्रों को, सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल मत बोलिए। 13 और 26 में यही फर्क हो गया है प्रधानमंत्री जी। जब हम छात्र थे तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करते थे, आवाज बुलंद करते थे, और हम देश विरोधी नहीं कहे जाते थे। हम पर यूएपीए नहीं लगता था, एनएसए नहीं लगता था। प्रधानमंत्री जी, 13 वर्षों का ये हासिल है। आपकी ग्रोथ स्टोरी कितनी समावेशी है ये मैं आर्टिकल 39 संविधान की धारा के तहत पूछूं तो मैं दिमागी नक्सल हूं, नाराज फूफा हूं। वैसे नाराज फूफा की याद लाइटर वेन में कह रहा हूं तभी आती है जब विदाई का वक्त आता है।

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. Five died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a five-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue. Coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire five-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had five floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूं।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site, and even we have seen that LG Sejinder Sandhu, they have all reached at the site. And now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is there, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर। पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है। एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है, और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा भी करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं, और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है, और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत, और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे, अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है, और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे ही
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने से बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है।
10: हाँ नीचे,
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा है,
5: काम चल रहा था पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जो इसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy as

0: सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
1: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी? ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
2: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो ही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
3: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
3: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका अभी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
5: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे हैं और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
6: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली हैज बीन रॉक्ड बाय अ शॉकिंग केस ऑफ मर्डर। अ यंग मैन वाज अलेजेडली बीटन टू डेथ विद स्टिक्स इन ईस्ट दिल्लीज मयूर विहार एरिया अर्ली संडे मॉर्निंग। द हॉरिफाइंग इंसिडेंट वॉज इन फैक्ट कैप्चर्ड इन अ सीसीटीवी कैमरा। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन। The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
7: The pieces of wood that you are seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not

0: clear that what was the exact reason due to which such a massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
1: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाए तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
0: अच्छा। उधर कितने लोग थे?
1: दो आदमी थे।
0: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
1: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया तो जो वो करूंगा।
0: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
1: हाँ,
0: आपको भी मारूंगा।
1: हाँ, तो फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
0: किसको? पुलिस को फोन किया?
1: हाँ जी।
0: पुलिस कितने देर में
1: आई? मैं अंदर चला गया था।
0: कितने बजे की घटना होगी?
1: एक 4 बजे का।
2: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स। Swatantra Bhardwaj's police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
4: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
3: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
5: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल, तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
3: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
6: देखिए, स्वतंत्र भारद्वाज ने जो एडमिट किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
7: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
3: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau Report, India Today.
2: Chennai's dream of a second airport is back in the skies. After Parandur was shot down by farmer protests, Vijay government has now shortlisted two new sites, Cheyur and Manilore. Here is a special report on the same. Take a look.
3: Chennai's long wait for a second airport has taken a new turn. After farmer protests and environmental concerns grounded the Parandur project, the Vijay government has reportedly zeroed in on two fresh sites. Cheyur in Chengalpattu and Manilore in Tiruvallur.
8: என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு. ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என
3: தெரிவித்திருந்தேன்.
9: எப்படி இந்த அரசு பரந்தூர் விமான நிலையத்தை ரத்து செஞ்சோ அதே மாதிரி இப்போ குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி திட்டத்தையும் ரத்து செஞ்சிருக்குன்னு செய்திகளில் வந்திருக்கு. இந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி அமைக்க அரசுடைய கவனத்துக்கு இருக்கிற ஏன் இந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டுச்சு அப்படிங்கறது இந்த அரசுடைய கவனத்துக்கு கேட்கறேன்.
3: The Airports Authority of India will now conduct a pre-feasibility study before either site is finalized. Cheyur, roughly 100 kilometers from Meenambakkam, sits strategically between Puducherry Airport and the Kalpakkam nuclear hub. Manilore, closer to the city at 50 kilometers, lies near Sriharikota Space Facility. Chennai's need for a second airport is urgent. Meenambakkam operates near saturation, choking growth for the region's aviation, IT and manufacturing sectors. A second airport could decongest operations, boost cargo capacity and fuel investment. Plus, access to the current airport is difficult due to traffic. As history shows with Parandur, technical feasibility alone will not guarantee liftoff. The project's survival now hinges on navigating local politics, farmer sentiment and shifting government priorities. Bureau Report, India Today.
2: Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sattvik, Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sattvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sattvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sattvik Chirag notched up five straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sattvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
10: You are watching India Today.

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूं।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site, and even we have seen that LG Sejinder Sandhu, they have all reached at the site. And now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now We have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर। पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है। एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है, और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे, हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: There will be 20 to 25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं, और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है, और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत, और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, हादसा हुआ है को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है, तो कैसे पीजी चलता है कैमरे पर खुलासा करेंगे। अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है, और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे ही
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते हैं।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा है,
5: काम चल रहा था पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जो इसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी कोई कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
13: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
14: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
15: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, क्योंकि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
14: निश्चित होगा और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
16: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
17: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
18: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
19: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
18: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
19: दो आदमी थे।
18: दो आदमी आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
19: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे वो करूंगा।
18: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
19: हाँ,
18: आपको भी
19: मारूंगा। हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
18: किसको? पुलिस को फोन किया?
19: हाँ जी।
18: पुलिस कितने देर में आई?
19: मैं अंदर चला गया था। फिर
18: कितने बजे की घटना होगी?
19: 4 बजे का।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स. Swatantra Bhardwaj's Police custody has now been extended, even as Delhi Police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
20: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
21: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
20: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
22: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल, तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं. उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए, कुछ पता नहीं.
20: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: Look, Swatantra Bhardwaj ne jo admit kiya, uske anusar uske upar karwai honi chahiye. और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
20: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau report, India Today.
0: Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Satwik, Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Satwik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Satwik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. holding their nerve at a crucial interval. Sattvic Chirag mushed up 5 straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sattvic and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour, but do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
1: You are watching India Today.

आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो, व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सब को हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सब को हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर जल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction.
1: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, Health Minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sandhu, Sajendra Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है. हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर. पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है. एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है. और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी. इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे. कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं, सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है.
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे. सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
6: हमारे यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है 1:30 बजे. हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी. और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी. वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा ही करता है यहाँ पे. तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
8: जितनी भी पीजीज हैं, सब में सिड़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ कैंप के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है. पीजीज की
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी हैं जिसमें छात्राएं रहती हैं, जिसमें छात्र रहते हैं और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत. और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता. तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है. अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है. तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे. अपना नाम बताइए.
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी.
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं, बताइए.
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे. एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं. एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, हमारा जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी ही थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने से बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को।
9: अच्छा, नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है ये देखिए, इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: पैन करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहां पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई

0: अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी? ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का,
1: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
2: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
2: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
5: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे हैं और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
6: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
7: The pieces of wood that you are seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here, at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest,

0: so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
1: मार रहे थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाए तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा.
0: अच्छा.
1: उधर
0: कितने लोग थे?
1: दो आदमी थे.
0: दो आदमी. आप आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
1: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया तो जो वो करूंगा.
0: अच्छा, तो आपको डंडा दिखाया?
1: हाँ.
0: आपको भी मारूंगा?
1: हाँ. फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था.
0: किसको? पुलिस को फोन किया?
1: हाँ जी.
0: पुलिस कितने देर में आई?
1: मैं अंदर चला गया था.
0: कितने बजे की घटना होगी?
1: ये 4 बजे का.
2: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स. Swatantra Bhardwaj's police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
3: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
4: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है, कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
3: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
5: उसे कस्टडी में रखा गया है एंड अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर FIR करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल, तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं. उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं DMs में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
3: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
6: देखिए, स्वतंत्र भारद्वाज ने जो एडमिट किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
7: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
3: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau report, India Today.
2: Chennai's dream of a second airport is back in the skies. After Parandur was shot down by farmer protests, Vijay government has now shortlisted two new sites, Cheyyur and Manilore. Here is a special report on the same. Take a look.
3: Chennai's long wait for a second airport has taken a new turn. After farmer protests and environmental concerns grounded the Parandur project, the Vijay government has reportedly zeroed in on two fresh sites. Cheyyur in Chengalpattu and Manalore in Tiruvallur.
8: என்னுடைய முழு ஆதரவும் உண்டு. ஆனால் பரந்தூரில் இந்த திட்டம் அமையக்கூடாது. இந்த திட்டம் குறித்து அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். குறைவான விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையிலும் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என
3: தெரிவித்திருந்தேன்.
9: எப்படி இந்த அரசு பரந்தூர் விமான நிலையத்தை ரத்து செஞ்சோ அதே மாதிரி இப்போ குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி திட்டத்தையும் ரத்து செஞ்சிருக்குன்னு செய்திகளில் வந்திருக்கு. இந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி அமைக்க அரசுடைய கவனத்துக்கு இருக்கிற ஏன் இந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டுச்சு அப்படிங்கறது இந்த அரசுடைய கவனத்துக்கு கேட்கறேன்.
3: The Airports Authority of India will now conduct a pre-feasibility study before either site is finalized. Cheyyur, roughly 100 kilometers from Meenambakkam, sits strategically between Puducherry Airport and the Kalpakkam nuclear hub. Manalore, closer to the city at 50 kilometers, lies near Sriharikota Space Facility. Chennai's need for a second airport is urgent. Meenambakkam operates near saturation, choking growth for the region's aviation, IT and manufacturing sectors. A second airport could decongest operations, boost cargo capacity and fuel investment. Plus, access to the current airport is difficult due to traffic. As history shows with Parandur, technical feasibility alone will not guarantee liftoff. The project's survival now hinges on navigating local politics, farmer sentiment and shifting government priorities. Bureau Report, India Today.
2: A TVK functionary has been brutally hacked to death in Chennai. The victim, Kannan, a TVK functionary and a history sheeter, was chased by an armed gang and attacked with machetes. The attack was even caught on CCTV, with the disturbing visuals now surfacing. Kannan was reportedly a history sheeter with a criminal record, according to police sources. He had allegedly been involved in two murder cases and one attempt to murder case in the past. Tamil Nadu police have seized the CCTV footage from the crime scene as the probe into the TVK functionary Kannan's murder has now intensified. Three special teams tracking the killers while five have been detained. Police are now probing whether his criminal background and previous enmity had played a role in the motive behind the attack. But the murder has now triggered a sharp political confrontation over Tamil Nadu's law and order. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the Vijay government, questioning its law and order record and alleging the TVK has become a refuge for criminals. Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sattvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sattvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sattvik Chirag notched up five straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sattvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
10: watching India Today.

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue. Coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sejinder Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है. हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर, पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी ये. एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है. एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है. और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी. इसमें सात से आठ लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे. कम से कम आठ दस भी हो सकते, पंद्रह भी हो सकते, तीस भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के चार लोगों को निकाल लिया गया है.
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन ढाई घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे. सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है. डेढ़ बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, हम फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी. और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई ही आधा भी करता है यहाँ पे. तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ कैंप तक सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की.
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत. और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता. तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है. अब हादसा हुआ है को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है. तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे. अपना नाम बताइए.
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती है?
10: हाँ जी.
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे. एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं. एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, मारा जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी ही थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
5: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा है?
5: काम चल रहा था पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है, ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: टान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का,
13: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
14: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
15: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
14: निश्चित होगा, और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
16: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, एनडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सके, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
17: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
18: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here at basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
19: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
18: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
19: दो आदमी थे।
18: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
19: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे भी करूंगा।
18: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
19: हाँ,
18: आपको भी
19: मारूंगा। हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
18: किसको? पुलिस को फोन किया। पुलिस कितने देर में
19: आई? मैं अंदर चला गया था।
18: कितने बजे की घटना होगी?
19: 4 बजे का।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स। Swatantra Bhardwaj's Police custody has now been extended, even as Delhi Police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
20: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
21: पुलिस ने इस मामले में छुपते छुपाते हुए एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करा और उनको कहते हैं जो कोर्ट ने एक दिन की जेसी दी है कल को कंसर्न कोर्ट में जो है स्वतंत्र भारद्वाज जी को पेश किया जाएगा.
20: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
22: उसे कस्टडी में रखा गया है ना, अब वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं. बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की. एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल, तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में. फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है, खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
20: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: देखिए, स्वतंत्र भारद्वाज ने जो एडमिट किया उसके अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट किया गया है, उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
20: This issue has once again reignited the debate over presence of anti-social elements in the protests, and more skeletons are expected to tumble out of the closet. Bureau Report, India Today.
0: A TVK functionary has been brutally hacked to death in Chennai. The victim, Kannan, a TVK functionary and a history cheater, was chased by an armed gang and attacked with machetes. The attack was even caught on CCTV, with the disturbing visuals now surfacing. Kannan was reportedly a history cheater with a criminal record, according to police sources. He had allegedly been involved in two murder cases and one attempt to murder case in the past. Tamil Nadu police have seized the CCTV footage from the crime scene as the probe into the TVK functionary Kannan's murder has now intensified. Three special teams tracking the killers while five have been detained. Police are now probing whether his criminal background and previous enmity had played a role in the motive behind the attack. But the murder has now triggered a sharp political confrontation over Tamil Nadu's law and order. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the Vijay government, questioning its law and order record and alleging the TVK has become a refuge for criminals. Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sattvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sattvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sattvik Chirag notched up 5 straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sattvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
1: You are watching India Today.
2: Catastrophe struck Nepal. Is India prepared for the next Himalayan disaster? Are rising temperatures and melting glaciers making glacial floods more dangerous? Can India's vulnerable mountain states protect lives, livelihoods and critical infrastructure? And what urgent measures can help minimize the impact? The threat, the vulnerabilities, the need for action. India Today investigates the growing risk of glacial floods and what India must do to prepare. Read the full story in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

ये सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है, क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं, उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा। छात्रों को, सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल मत बोलिए। 13 और 26 में यही फर्क हो गया है प्रधानमंत्री जी, जब हम छात्र थे तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करते थे, आवाज बुलंद करते थे, और हम देश विरोधी नहीं कहे जाते थे। हम पर यूएपीए नहीं लगता था, एनएसए नहीं लगता था। प्रधानमंत्री जी, 13 वर्षों का ये हासिल है। आपकी ग्रोथ स्टोरी कितनी समावेशी है, ये मैं आर्टिकल 39 संविधान की धारा के तहत पूछूं तो मैं दिमागी नक्सल हूं, नाराज फूफा हूं। वैसे नाराज फूफा की याद लाइटर वेन में कह रहा हूं तभी आती है जब विदाई का वक्त आता है।

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra, and later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site, and even we have seen that LG Sanjay Sandhu, they have all reached at the site, and now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is here, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Some of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर। पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है। एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है, तो इन दोनों में भी पीजीज ही है। और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें सात से आठ लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम आठ दस भी हो सकते, पंद्रह भी हो सकते, तीस भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के चार लोगों को निकाल लिया गया है।
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन ढाई घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है। और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई, ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है, डेढ़ बजे। हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी। और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
7: There will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा डिली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी है जिसमें छात्राएं रहती है, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन एक कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत। और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है, अब हादसा हुआ है, उनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है। तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे। अपना नाम बताइए।
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती
10: है? हाँ जी।
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे। एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं। एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, बहुत बेकार
10: सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग को। अच्छा,
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
5: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक। अच्छा। और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है, ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
11: तान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
12: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
13: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
14: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
15: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार

अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था, होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है, ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था?

0: A death toll that's only mounting with each passing hour. 5 died in this major building collapse in South Delhi's Satyaniketan area near the Delhi University South Campus. The building, reportedly a boys' PG called Hostel Days, collapsed, and this is amid the heavy rains during the monsoons. An eyewitness says it was a 5-story structure and another adjacent building that also collapsed subsequently. Rescue teams from the Delhi Fire Service and police reached the spot. Operations still continue, coordinated efforts by several teams, with the NDRF having deployed as many as 70 officers at the ground. At least 11 people have been rescued so far, but several others continue to be trapped under the debris as we speak. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visits the site to take stock of the situation and assures that no culprit involved in this very incident will be spared. The Chief Minister further confirmed that the structural changes were made to the building and the basement there was dug up, due to which the load-bearing pillar of the very building got dismantled, bringing the entire 5-story building down with it. An FIR registered against the owner of the PG, Anand Bansal, and this is Hariram Bansal. The collapsed building was around 40 to 50 years old. The building had 5 floors along with a basement, and the upper floors were being used as a PG facility. Repair work was also underway in the basement at the time of the collapse, as we just pointed out. The lens is now on the possible lapses that led to the very collapse, which includes unauthorized construction, ignorance of the overload on the structure, as well as damage due to rain that was not even considered, let alone repaired timely.
1: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: We have breaking news coming in as we speak on this very story. Following an on-site review based on the preliminary assessment that's been done, the Chief Minister has ordered a magisterial inquiry of the incident and an FIR against the building owner. Those found responsible, as she has said in this response just a while back that we were playing for you, those found responsible for this grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. FIR has been registered against the owner, Hariram, and others. The building was a PG. It is alleged that renovation work was being undertaken at the ground floor, which led to the collapse of the building. Multiple teams have been formed to trace the alleged persons. Anmol Bali joining me on the broadcast. He's been tracking the very story from the ground for the past over 7-8 hours now as we speak. Anmol, this is the latest update. We are getting a magisterial inquiry that's in fact been ordered by the Chief Minister into the very case.
2: Shreya, we have seen that Delhi CM Rekha Gupta has reached the site where the building collapsed, and she has stayed there for around 2 hours. And after the following on-site review, she has now called and ordered a magisterial inquiry of the incident, and FIR against the building owner has been registered by the Delhi police. And she clearly said that those who will be found responsible for this grave incident will be held fully accountable. She has clearly given the statement to the media, because we have seen not only Delhi CM Rekha Gupta, but other of her cabinet colleagues like Kapil Mishra. And later we have seen that Pankaj Singh, health minister of Delhi, has also reached the site. And even we have seen that LG Sanjay Sandhu, they have all reached at the site. And now we are seeing that politics is brewing on this issue, where the National Students Union of India and the Congress Party are targeting the BJP over this issue. On the other hand, the BJP and the ABVP are targeting the Municipal Corporation of Delhi. But big question is there, that BJP is the one which is ruling the MCD. So now we have to see that what action Delhi government and Municipal Corporation of Delhi takes against the officers, against the junior engineers, and against the officials, those who are responsible for the audit and investigation of that area under the MCD.
0: Right, Anmol, thank you for bringing us all of those details. Viewers, as you can see, the action now on that very front of asking questions, demanding accountability and holding people responsible, that aspect has also slowly started developing while rescue operations have been continuing for a few hours as we speak. Some of our reporters have relentlessly been bringing us developments from the ground ever since this news came to highlight somewhere around noon this Sunday itself. And as we speak, here is an entire report that we have brought to you. Different reporters bring us all of the different updates that have happened over the last few hours.
3: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है. हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर. पांच फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है. एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है, ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है. तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है. और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है.
4: डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफ़ी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी. इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी. अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे. कम से कम 8-10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं, सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है.
5: सर, ये बिल्डिंग अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये बिल्डिंग गिरी है और इसमें कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है. और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है. इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देख कर इन्हें सील करे. सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है. सरकार को बच्चों से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है.
6: हमारी यहाँ पे दुकान है, हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज़ आई जैसे भूकंप टाइप होता है. 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज़ आई, फटाफट भाग के आए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी. और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी. वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे.
7: There will be 20 to 25 such buildings. जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी. विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे. तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन.
8: जितनी भी पीजीज हैं, सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है. साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की.
7: आगे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं.
9: यहाँ पर कई ऐसे पीजी हैं जिसमें छात्राएं रहती हैं, जिसमें छात्र रहते हैं, और एक फ्लोर पर तकरीबन 1 कमरा और 8 से 10 बेड, यानी कुल मिलाकर एक फ्लोर में 10 छात्र रहते हैं और उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो सालाना 10,000 है और यहाँ पर जो बेड है उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है. और बिल्डिंग की हालत कैसी होती है, 40 साल 50 साल पुरानी इमारत. और अगर इलाके में कोई अवैध पीजी चल रहा है, अवैध होटल चल रहा है, तो लोकल एसएचओ को और लोकल एमसीडी के अधिकारी को जानकारी हो, ये हो ही नहीं सकता. तो सब कुछ अवैध तरीके से और सालों से चल रहा है. अब हादसा हुआ है को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में और भी कई पीजी हैं जो जर्जर हो चुकी है. तो कैसे पीजी चलता है, कैमरे पर खुलासा करेंगे. अपना नाम बताइए.
10: पूजा अग्रवाल,
9: आप यहाँ क्या पीजी में रहती
10: है? हाँ जी.
9: किस तरह की स्थिति है, किस तरह से पीजी चलता है, कितने बेड होते हैं, कितने मकान मालिक का पैसा एक्सपेक्ट करते हैं?
10: सर, यहाँ पर जैसे एक पीजी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स होते हैं हर पीजी पे. एक फ्लोर पे 6 या 7 कमरे होते हैं, एक कमरे में 2 बेड होते हैं. एक बेड का रेंट मिनिमम यहाँ पर 12,000 होता है और उस पीजी का साइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत से घरों में जो किचन का साइज होता है उतना उस पीजी के रूम का साइज होता है, और उसमें दो बेड होते हैं साथ में, और उस एक बेड का रेंट 12,000 रुपए ये लोग लेते हैं। रेंट का टाइम एकदम एग्जैक्ट चाहिए इनको। खाना बहुत सारे पीजी
9: की मरम्मत कैसी होती है बिल्डिंग की, जैसे
10: बेकार, बहुत बेकार सीलन आई होती है, जो दीवारें होती है उसमें पानी दिख रहा होता है कि बिल्डिंग में सीलन है, रूम्स की कंडीशन उतनी अच्छी।
9: ये जो बिल्डिंग गिरी है आपके बगल में, इसकी भी हालत ऐसी थी?
10: सर इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ इसकी हालत कैसी थी, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था इस वाली बिल्डिंग। अच्छा, को
9: नीचे बेसमेंट का भी काम चल रहा है?
10: हाँ नीचे।
9: लेकिन यहाँ जो पीजी चलते हैं एक कमरे में 2 से 3 बेड और 12,000-13,000
10: हाँ इतना ही किराया होता है। बहुत सारे थोड़ा बड़ा साइज का कमरा होगा तो उसमें 3 बेड लगा देते हैं, 3 अलमीरा लगा देते हैं, उनका किराया थोड़ा सा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कम कर देते।
9: सर इस बिल्डिंग की क्या हालत थी, बेसमेंट में कोई काम चल रहा
11: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि लीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
9: अच्छा।
11: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे, और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
9: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
11: पानी।
9: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। जेसीबी मशीन एक एक करके जो मलबा है, ये देखिए इतना भारी भारी मलबा, आप सोचिए कि आप जो आप जब ये मलबा गिरा होगा किसी के ऊपर तो क्या हालत हुई होगी। तो इस तरह के बड़े जो बड़े मलबे हैं वो वहां से हटाकर इस जगह पर लाए जा रहे हैं।
12: तान करके ऊपर दिखाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो यहाँ पे बना दी गई हैं। करीब 25-50 गज का ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, 5 मंजिलें इस पर बना दी गई हैं। बाहर देखिए, बाहर की तस्वीरें देखिए, ये बाहर इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, तार पूरे खुले छोड़े हुए। मैं आपको अंदर भी ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये सारे जो तार हैं, वायर्स हैं, ये पूरे तरीके से खुले छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे स्पार्क हो गया या यहाँ पे कुछ, अनिल जी आप प्लीज अंदर आइए, अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, और ये बच्चे यहाँ पे कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आप ये एंट्री देखिए, ये करीब 1 फीट की जो 1 फीट की एंट्री है यहाँ से, ये खुले हुए तार यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक जो बिल्डिंग्स है वो इसी तरीके से इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर चलाई जा रही है, और ये 3री प्रॉपर्टी हॉस्टल डेज की है।
0: Now let's also listen in to the political reactions that have come in so far on the tragedy, as the mudslinging contest clearly seems to have begun.
13: खादसा है, मैं केंद्र सरकार से और राज्य की रेखा गुप्ता सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए, और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, आपके बयान सिर्फ रस्म अदायगी ना हो, इस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे सोचनी चाहिए और उसको कार्य रूप में लाना चाहिए।
9: जो पीजी चल रहे हैं ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी? सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां, आप लोगों के सामने हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है, और मगर इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय केवल यही है कि ये राजनीति का या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का।
14: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
15: आपके माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो अभी हमारी फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
16: मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो आरोपी है वो फरार है, बिल्डिंग का ऑनर, बिल्डिंग के अंदर 5 मंजिला इमारत थी और उसके नीचे भी काम जो है वो चल रहा था, क्या उस पर कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन जो है वो, कि इस पूरे इलाके में कई ऐसी और बिल्डिंग है, क्या उन पर भी अब एक्शन होगा?
15: निश्चित होगा और जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
17: अभी हम जो रेस्क्यू चल रहा है, इंडीआरएफ की रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं उसके अंदर। एक बार हम जितना लोग को रेस्क्यू करके बचा सकें, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को बयान करना बड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल आज का दिन रेस्क्यू पे लगाएंगे, कल से जो एक्शन करना वो करेंगे।
18: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारा प्राथमिकता है कि जो लोग हैं वो बचे हैं और कोई कैजुअल्टी और ना हो।
0: दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेशनल कैपिटल। दिल्ली has been rocked by a shocking case of murder. A young man was allegedly beaten to death with sticks in East Delhi's Mayur Vihar area early Sunday morning. The horrifying incident was in fact captured in a CCTV camera. The incident took place in the jurisdiction of the new Ashok Nagar police station. The incident has raised concerns in the area, with the police team reaching the spot and beginning an investigation into the circumstances surrounding the very death. Shockingly, a security guard who was near the crime scene has revealed that he saw the attackers. The guard has revealed that he couldn't intervene since the attackers had threatened to kill him too.
19: The pieces of wood that you're seeing lying in front of me are not waste. These are a part of a murder weapon. This morning, a shocking incident happened in East Delhi at Ashok Nagar, where a person was beaten to death by these woods that you are seeing on your screens right now. The accused and the victim, both of them have still not been identified by the Delhi police. Now, what transpired over here, that basically approximately 5 a.m. in the morning, two people were actually seen beating one person over here in Mayur Vihar area. Post that, the guard who was present over here tried to intervene, but the guard was also shooed away by those people and they managed to flee from the spot. At this point in time, the Delhi police has gone ahead and collected forensic samples from this entire spot. And if I could just give you a sense of these visuals, that there are blood stains that are still present over here. There are markings from chalk that has been done over here to identify and mark the exact crime scene. It is still not clear that what was the exact reason due to which such a massive, massive incident has happened out here in the national capital. The Delhi police has gone ahead and seized the CCTV footages from the nearby areas and vicinity, trying to identify the accused and also trying to figure out as to from what direction did the accused come in and what direction did they leave. At this point in time, both the accused have not been identified. Police is trying to identify the deceased as well. Once that happens, it remains to be seen how quickly can the Delhi police can actually go ahead and ensure that both these accused are taken into custody at the earliest, so that somewhere or the other, the sense of fear that is amongst the locals over here, or the confidence on the administration or the police officials that has gone down, that could be reinstilled amongst the people over here, out here in Ashok Nagar.
20: मार गए थे आदमी, मैं वहाँ तक आया डंडा पीटते थे, मेरे को दिखाया तू भी मार खाएगा, फिर मैंने उधर चला गया फोन करने लगा।
19: अच्छा, उधर कितने लोग थे?
20: दो आदमी थे।
19: दो आदमी। आपने जब उन्हें भगाया तो वो तुरंत भाग गए या आपसे भी?
20: नहीं, मेरे नहीं भागे, मेरे को डंडा दिखाया कि तुझे वो करूंगा।
19: अच्छा, आपको डंडा दिखाया?
20: हाँ,
19: आपको भी मारूंगा।
20: हाँ, फिर मैं वो अंदर चला गया, फिर मैं फोन किया था।
19: किसको? पुलिस को फोन किया?
20: हाँ जी।
19: पुलिस कितने देर में आई?
20: मैं अंदर चला गया था। फिर
19: कितने बजे की घटना होगी?
20: ये 4 बजे का।
0: राइट विंग गोन स्वतंत्र भारद्वाज इज बिहाइंड बार्स. Swatantra Bharadwaj's Police custody has now been extended, even as Delhi police registers a second FIR against him. The fresh case invokes charges linked to stalking, criminal intimidation, insulting a woman's modesty, alongside the provisions of POXO and IT Act. The teenage protester has also raised safety concerns, alleging online threats being meted out to her. Take a look at this report.
1: Right-wing influencer Swatantra Bhardwaj is behind bars after he boasted about assaulting a protester's father during the CJP stir. His police custody has been extended for one more day. Delhi police have registered a second FIR against Swatantra Bhardwaj. Delhi police have invoked provisions related to stalking, insulting the modesty of a woman and criminal intimidation. The FIR also invokes Section 12 of the POXO Act for sexual harassment of a child and Information Technology Act.
21: Police ne is mamle mein chupte chupate hue ek bar fir video conferencing ka istemal kara aur unko kehte hain jo court ne ek din ki JC di hai kal ko concern court mein jo hai Swatantra Bhardwaj ji ko pesh kiya jayega.
1: Now the teen protester has raised concerns about her safety and claims that she has been getting online threats since she filed the complaint against Swatantra.
22: उसे कस्टडी में रखा गया है और वो वन डे का पुलिस ऑफिसर जो है वो और टाइम मांग रहे हैं बट नाउ आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से स्वतंत्र के सपोर्टर्स वहां गए और उन्होंने पापा और मेरे अगेंस्ट वहां पर एफआईआर करवाने की कोशिश की एंड और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता फिलहाल तो खतरा है क्योंकि ये लोग मेरे को अभी भी गालियाँ दे रहे हैं उनके सपोर्टर्स इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुझे पर्सनल मेल करके गालियाँ दे रहे हैं डीएम्स में फिलहाल हमको वाकई में अपनी प्रोटेक्शन का डर है खतरा है कि कब कौन कहाँ पर क्या कर जाए कुछ पता नहीं.
1: A complaint has also been filed with the Delhi police against the victim and the teen protester, alleging Sanatan slander. The entire controversy has snowballed into a massive political storm. The BJP claims that the matter should be probed and culprits should be punished. On the other hand, the opposition says that there is an attempt to shield Swatantra.
23: Look, Swatantra Bhardwaj ne jo admit kiya, uske anusar uske upar karwai honi chahiye. और उसको अरेस्ट किया गया है उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है और अपेक्षा करते हैं कि पुलिस जो भी उचित कार्रवाई बनती कार्रवाई होगी वह कार्रवाई करेगी और मूल्यांकन करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है.
24: सारी चीजें पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के लिए गंभीरता का विषय है क्योंकि एक अगर आप टाइमलाइन देखें तो जिस प्रकार एक वीडियो में जिस जुबान से जिस स्ट्रेंथ के साथ बोला गया कि सारे रसूखदार लोग बड़े भाई हैं उसके बाद इसको हल्के में लेना उचित नहीं होगा.
1: दिस इश्यू हैज वंस अगेन रीइग्नाइटेड द डिबेट ओवर प्रेजेंस ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द प्रोटेस्ट एंड मोर स्केलेटन्स आर एक्सपेक्टेड टू टंबल आउट ऑफ द क्लोजेट. ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे.
0: A TVK functionary has been brutally hacked to death in Chennai. The victim, Kannan, a TVK functionary and a history cheater, was chased by an armed gang and attacked with machetes. The attack was even caught on CCTV, with the disturbing visuals now surfacing. Kannan was reportedly a history cheater with a criminal record, according to police sources. He had allegedly been involved in two murder cases and one attempt to murder case in the past. Tamil Nadu police have seized the CCTV footage from the crime scene as the probe into the TVK functionary Kannan's murder has now intensified. Three special teams tracking the killers while five have been detained. Police are now probing whether his criminal background and previous enmity had played a role in the motive behind the attack. But the murder has now triggered a sharp political confrontation over Tamil Nadu's law and order. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi Stalin has slammed the Vijay government, questioning its law and order record and alleging the TVK has become a refuge for criminals. Now, from the world of sports, this is a story that will finally put a smile on all our faces. It was a glorious moment for Indian badminton in China as the deadly duo of Sathvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty managed to create history and win the China Masters 2026 title in a thrilling final. Having lost in the final of the China Masters in 2023 and then subsequently 2025, Sathvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty both were determined to ensure that the third time was the charm in the China Masters. The journey itself was rough for both Sat and Chi. In the quarterfinals, in fact, and the semifinals, Sathvik and Chirag bounced back after initially trailing, and then they went on to win the match under, in fact, severe pressure situation. In the final, after losing the first game against the Chinese duo, Sathvik and Chirag showed their wonderful ability and bounced back yet again with resilience. Holding their nerve at a crucial interval, Sathvik Chirag notched up five straight points to seal the championship and then end their wait for the title. This is the first time an Indian duo has won the China Masters ever since the tournament began in the year 2005. This result will give both Sathvik and Chirag plenty of confidence as they head into an all-important Asian Games that will begin in Aichi, Nagoya on September 19th. On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we very closely keep tracking all of the top stories through the evening. Thank you for watching.
2: You are watching India Today.
3: Five distinct faces, one common purpose. India informed and ahead, where the South finds a voice. Super 6. Sharp questions, zero distractions.
4: You also speak of poor children. Kangana Ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
3: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
5: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
3: India first, where decades of experience speaks.
6: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
3: News Today, exclusives that shape the headlines.
25: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
3: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो, व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सबको हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सबको हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर जल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: You are watching India Today.